FM बैंड 101.4 MHz पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनिएगा हिंदी में समाचार, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 106.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

प्रभु की छवि तो हमारे मन में हर पल बसी है, बस हमें उसे अपने भीतर दर्शन करना है। वो दर्शन हमें हो सकता है जब हम अपने मन के मैल को साफ करें, और मन का मैल साफ करने पर ही हमारा मन उजला हो जाता है, और उस उजले दर्पण में ही प्रभु का दर्शन हो सकता है।

हे प्रभु, हमारा जो ये मन है ये अवगुणों की खान है, लेकिन आपकी कृपा से ये अवगुण हमारे तन और मन दोनों से दूर हो सकते हैं। और अगर हम में ये अवगुण रह भी जाएं, तो आप कृपा कीजिए, हमारे अवगुणों की तरफ ना देखिए, हमें अपनी शरण में लीजिए।

हे प्रभु, इस संसार रूपी भवसागर में हम फंस गए हैं। यहाँ हमें आपकी माया के सिवाय कुछ नज़र नहीं आता। हर ओर अंधियारा है। आप ही प्रकाश किरण बनकर हमारे जीवन को उज्ज्वल कर सकते हैं।

हे प्रभु, आपकी कृपा से हमें ये जीवन प्राप्त है और इस जीवन का लक्ष्य है आपका नाम सुमिरन करना और आपको जानना, आपको पाना। लेकिन माया के विकारों में हम अपने आप को देखते रहते हैं, आपको भूल जाते हैं। और जब आपकी कृपा होती है तभी हमें इस संसार की समझ आती है, इस माया की समझ आती है। तो आप कृपा कीजिए, अपनी शरण में लीजिए।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM बैंड 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। संगीत निर्माण सतीश भाटिया का है और प्रस्तुति स्वर श्रीकांत परगांवकर की।

भरत को श्री राम की चरण पादुका प्राप्त हो चुकी है। सबके चित्रकूट से विदा होने की वेला आ पहुंची है। स्वामी के चरणों की वंदना करके भरत और शत्रुघ्न ने लक्ष्मण को गले लगाया, सीता जी के चरणों की धूलि ली। लक्ष्मण सहित श्री राम ने राजा जनक के सम्मुख सिर नवाकर उनके वहां आने के लिए कृतज्ञता तथा वन प्रवास के कष्टों के लिए क्षमा याचना की। फिर दोनों भाइयों ने सासु रानी सुनैना के पास जाकर उनका आशीष प्राप्त किया। मुनि विश्वामित्र सहित सभी पूजनीय ऋषि मुनियों, कुटुंबियों, अयोध्या वासियों, मंत्रियों आदि को यथा योग्य विनय प्रणाम करके विदा करने के बाद श्री राम माता कैकेयी के निकट आए। निश्चल हृदय से मिल भेंट कर माता कैकेयी का संकोच मिटाया और सुंदर सजी पालकी में बिठाकर उन्हें विदा दी। उधर सीता जी ने मायके से आए कुटुंबियों, माता पिता और सासुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी माताओं को सुंदर सजी पालकियों में बिठाकर विदा किया गया। जब सब लोग विदा होकर चले तो लगा बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु तथा सभी कुटुंबी मन मारे थके हारे चले जा रहे हैं। पर्णकुटी लौटकर श्री राम और लक्ष्मण का मन अवसाद से भर गया। जड़ चेतन, चर अचर सभी उदास हो गए।

अभी आप सुन रहे थे श्रीकांत परगांवकर के स्वर में श्री रामचरित मानस गान, संगीत निर्माण सतीश भाटिया का था। FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आज बृहस्पतिवार है, विक्रमी संवत 2083 के अधिक ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2000, 28 मई सन 2026। तो ये तो बात हुई आज के दिवस की, और आइए अब सुनते हैं ये देशगान।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ।
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।
3: श्रोताओं, इन संदेशों से पहले आपने सुना देशगान। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। शाम 6:20 पर सुनिएगा गीता संदेश के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 से श्लोक 14-17 की व्याख्या, प्रस्तुति डॉक्टर रामचंद्र की रहेगी। शाम 5:30 पर सुनिएगा युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी, समाज निर्माण में युवाओं की भूमिका, भेंट वार्ता, डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार से भेंट करता है महेंद्र मोहन शर्मा। शाम 6:30 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम किसान वाणी और शाम 7 बजे समय रहेगा ग्राम संसार का। शाम 7:30 पर हम लाएंगे कार्यक्रम जय जवान और शाम 7:45 पर होगा कार्यक्रम गुलदस्ता। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत और रात्रि 10 बजे समय रहेगा कार्यक्रम चांदनी रातें का। प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे, जिसमें आज आपको जानकारी देंगे स्वच्छ खान पान बहुत जरूरी और गर्मियों में रखें पशु पक्षियों का ख्याल। प्रातः 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र। तो श्रोताओं, ये थी आज दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानम् 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकताम् उद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूत संरचना निर्माणम् अतिक्रम्य नियमित निरीक्षणेन नागरिक सहभागितया अथ विभिन्न हितधारकाणां समन्वयेन मापन योग्य परिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्याम् 150वें प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्राणि सहैव गोबरधन संयंत्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्ट प्रबंधन सम्बद्धानां आधारभूत परियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु। उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटि रूप्यकाणां सप्त महत्वपूर्ण परियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युत् व्ययं न्यूनीकर्तुं ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुं गृह सामुदायिक स्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौरयोजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षी बलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यति। एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्माननमिदं प्राप्तुं देशस्य 15वें राज्यं तथा उत्तर पूर्व क्षेत्रस्य 3वें राज्यम् अभवत्। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षीबलस्य असाधारण सेवायाः सुदृढ अनुशासनस्य राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चम् औपचारिक सम्माननं वर्तते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्थायै कोइम्ट एड्युटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबंध आवंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः। एकस्मिन् सामाजिक अंतर्जालीय पटलीय संदेशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः भ्रमात्मकः तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबंध प्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,000 वर्षस्य बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्त मासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति। स्वयात्रावधौ गृहमंत्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासं आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृतास्ति। राज्य सर्वकारेण सर्वेषां मंडल आरक्षि प्रमुखाणां कृते संचेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतन परंपरायाः आरम्भः न भवेत्, निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट क्रीडायां IPL क्रिकेट स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चंडीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वंद्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44.2 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96.1 धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थी। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlines that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
4: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं.
5: 3 मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे. फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स. सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड अ डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल. थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी.
4: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?
3: Union Home Minister Amit Shah has directed authorities to strictly enforce zero tolerance policy towards illegal constructions within 15 kilometers of the country's borders and demolish all such structures that have come up over the years. Chairing a security review meeting in Bikaner, Mr. Shah assessed security-related issues concerning the border districts of Rajasthan along the India-Pakistan border. The Home Ministry has assigned enhanced responsibility to the district magistrates to ensure legal and financial compliance of banking transactions in the border areas by all banks, verify big business establishments, examine their funding sources, track mule accounts and false companies, identify fake Aadhaar cards and control cross-border smuggling. The West Bengal government has handed over 142 acres of land to the BSF for setting up outposts and barbed wire fencing infrastructure along the India-Bangladesh border. The handover is part of the BJP government's decision taken at its first cabinet meeting on May the 11th to transfer 600 acres of land within 45 days for border fencing and related infrastructure projects. Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan will inaugurate the National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi today. The two-day program is aimed at deliberating strategies for the forthcoming Kharif season with a focus on sustainable agriculture, enhanced productivity, climate resilience, infrastructure strengthening and farmer prosperity. Eid al-Zuha, also known as the Festival of Sacrifice, is being celebrated across the country. The holy occasion honors Prophet Ibrahim's absolute faith and is marked by the ritual of Qurbani. President Draupadi Murmu has greeted the people on the occasion of Eid al-Zuha. In her message, the president said that the festival symbolizes devotion, sacrifice and selflessness. In IPL cricket, Rajasthan Royals defeated Sunrisers Hyderabad by 47 runs in the eliminator match in New Chandigarh last night. Rajasthan Royals set the target of 244 runs against Sunrisers Hyderabad. In reply, Sunrisers Hyderabad could score only 196 runs in 19.2 overs. Vaibhav Suryavanshi has been adjudged as the player of the match. And that is the end of this news bulletin.
6: FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है. श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
1: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
1: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
1: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
0: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
1: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की, और जाना था इसकी रोचक बातों को
1: जी।
0: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया, और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
1: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है, जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
0: क्या नाम है भला?
1: रजनीगंधा।
0: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है, है ना, रजनी और गंधा
1: जी। चलिए श्रोताओं, इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि, और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है
0: जी। दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर, जैसे
1: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
0: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है
1: जी। मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं, लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
0: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
1: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
0: जी।
1: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
0: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
1: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
0: भला वो और क्या बात है?
1: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है
0: जी। ये बात तो है।
1: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
0: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं, इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है
1: जी।
0: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है
1: जी।
0: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है
1: जी। जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
3: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
4: बहन जी, डाकिया।
3: अच्छा, खोलते हैं भैया।
5: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
6: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
5: तो कोई बड़ा है घर में?
6: हाँ, घर पर माता जी है ना।
5: जी बुलाइए।
7: माँ।
3: हाँ।
7: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
3: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
5: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
3: अरे, ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
7: माँ, माँ।
8: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
3: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा, देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
8: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो।

0: माँ माँ माँ बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं एक महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
1: अरे वाह,
2: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
1: ऐसे नहीं,
3: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
0: अरे योगेंद्र,
2: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
1: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
2: हाँ हाँ, जरूर बेटा, जरूर। ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
1: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
4: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
5: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
4: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
5: अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
4: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी, क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
5: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
4: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
5: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
6: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। ही उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
7: जी साहब, जी साहब।
6: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलो साथियों।
5: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हथगोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र।

0: योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
1: बाद में तत्कालीन सेनाध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
0: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और R.S. रघु। ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। आलेख अजीत होरो। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 101.4 MHz पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हरियाणवी लोकगीतों का कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा, जिसमें हमारे आज के कलाकार हैं बलराज दास और साथी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी लोकगीतों का कार्यक्रम बाजा नगाड़ा, जिसमें हमारे आज के कलाकार थे बलराज दास और साथी। FM बैंड 101.4 MHz पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनिएगा हिंदी में समाचार। तत्पश्चात 8:15 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
6: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेन देन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
4: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
7: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
8: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
4: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
6: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
4: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
9: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
4: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
10: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स

0: राइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। SIR पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, SIR पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा SIR। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने CBSE की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, CBSE ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मॉनसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा हॉर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi chairs 51st Pragati meeting in New Delhi. Reviews 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervour. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to

श्रोताओं नमस्कार। आज का गीत संगीत और जानकारियों का कार्यक्रम सुबह सवेरे आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ मैं अनुराधा, और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि भाई गर्मी ही इतनी है। इस गर्मी के मौसम में हमें अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और भाई आजकल के दिन जो हैं वो तो नौ तपा के दिन हैं, है ना। बाहर बहुत गर्मी है, लू का प्रकोप है, ऐसे में हमें अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और भाई अपना ही क्यों, हमें तो अपने आसपास पशु पक्षियों जीव जंतुओं का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम ही उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। भाई ईश्वर ने हमारी रचना ही ऐसे की है कि हमें अपना ही ख्याल रखना है और अपनी प्रकृति का, इन पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का, सबका ख्याल रखना है, है ना। तो इसी को ही तो हम मानवता कहते हैं और इसी के लिए तो हमें बनाया गया है। तो भाई बातें तो आज कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपसे बहुत सारी करनी है, जानकारी भी आपको बहुत सारी देनी है, लेकिन साथ साथ मनोरंजन का भी ख्याल रखना है। तो चलिए इस खूबसूरत गीत के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम सुबह सवेरे।

जी हाँ भाई, ईश्वर ही वो चित्रकार हैं जिन्होंने इस धरती और इस ब्रह्मांड की रचना की और हमें बनाया, जीव जंतुओं को बनाया और उनका ख्याल रखने के लिए हमें विवेक भी दिया। और इसी विवेक का इस्तेमाल करते हुए तो हम अपना भी ख्याल रखते हैं ना, और अपना ख्याल रखने के लिए हमें अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी होता है भाई। उसी के लिए तो हम कुछ देर ध्यान, योग और एक्सरसाइज और सैर के लिए निकालते हैं। भई हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि हमारा जो प्रश्न है वो आज कुछ ऐसा ही जुड़ा हुआ है। जी हाँ श्रोताओं, योग की बात हो रही है तो क्यों ना उससे जुड़ा ही प्रश्न पूछ लिया जाए। भई श्रोताओं, आज आपको बताना है कि वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो आयोजन होगा वो मुख्य आयोजन कहाँ किया जाएगा। हमारे इस प्रश्न का जवाब आपको भेजना है हमारे फ़ोन नंबर 9460213636 पर। और आप जानते ही

0: हैं कि जो हमारे श्रोता हैं वो हमें एक बार ही एसएमएस कर सकते हैं। उस एक एसएमएस में आप 3 नाम भेजिए हमारे पास और भेज दीजिए हमारे इस फ़ोन नंबर पर। श्रोताओं, एक ही बार मैसेज करने की कोशिश कीजिएगा, आपके नाम कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। और अब प्रश्न एक बार आपको फिर से बता दें कि आज आपको बताना है वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम को कहाँ आयोजित किया जाएगा।
1: सुनो एक तराना, नया एक फसाना, के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

जी हाँ श्रोताओं, बिल्कुल। और अब बात करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए। भाई श्रोताओं, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति ही ऐसा बनाई गई है और इस प्रकृति में हमारे साथ साथ हमारे आसपास पशु पक्षियों जीव जंतुओं को भी बनाया गया है। नन्हे कीट से लेकर आप देखिए कहाँ तक ईश्वर की रचना है, और उसे संभालते हुए ही हमें अपने साथ साथ गर्मियों में पशु पक्षियों का भी ख्याल रखना चाहिए। भाई श्रोताओं, क्योंकि उन जुबान पशु पक्षियों के लिए जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसके लिए हमें ही ख्याल रखना है। और इतनी गर्मी में जहाँ दिन के समय ही सुबह इतनी गर्मी शुरू हो जाती है, लू चलने लगती है, वहाँ हम स्वयं को तो अपने घरों के अंदर घरौंदों में बैठ जाते हैं, या अगर अपने काम

पर पहुंच गए हैं तो वहां बैठ जाते हैं, और अपने लिए तो हमने वैज्ञानिक तौर पर भी बहुत इंतजाम किया है ना, चाहे वो पंखे कूलर एसी की बात की जाए या फिर अपने लिए खान पान की बात की जाए, हमने हर तरीके से अपने लिए इंतज़ाम कर लिया है, लेकिन प्रकृति को कहीं ना कहीं इसका नुकसान ज़रूर पहुँचा है। और हमने जहाँ अपने लिए कंक्रीट के घर बनाए हैं ना, वहीं इन पशु पक्षियों की जो घरौंदे थी, उनकी जो हरियाली थी, प्रकृति थी, उसको कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर पहुंचाया है। और इसे नुकसान को अगर हम देखें तो कुछ कम किया जा सकता है, यानी अगर हम उन पशु पक्षियों का थोड़ा ख्याल रखें तो उनके जीवन को भी बचाया जा सकता है, और ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियों में बेजुबान पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए अगर हम घर की छत पर रोज़ ताज़ा दाना पानी रखते हैं तो फिर उनके जीवन को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। श्रोताओं, क्योंकि गर्मी इतनी है, ऐसे में उनके खाने पानी का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम अपने घर पर कसोरों में पानी के बर्तन रखते हैं, कसोरे रखते हैं, उसका पानी रोज़ाना बदलते हैं, या फिर पेड़ की छाँव में कहीं मिट्टी के चौड़े बर्तन रखते हैं, उनमें पानी रखते हैं, थोड़ा दाना डाल देते हैं, तो भाई उन्हें भी अच्छा लगता है, और प्रकृति को जब आप अपने आस पास निहारते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। और इन बातों का ख्याल रखते हुए हमें पक्षियों के लिए दाना पानी रखना है, और पशुओं के लिए भी पानी और चारे की व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए, और सिर्फ एक दिन के लिए ही ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उस दाना पानी को हर रोज़ बदलना भी चाहिए, यानी पानी को बदलें। पशु पक्षी, अगर पक्षी दाना चुग गए हैं तो वहाँ दाना और डालिए, और ख्याल रखिए उनका, और आपको भी वह जब वो चहचहाट आपके पास आसपास सुनने लगेगी ना तो वो बहुत अच्छी लगेगी। तो श्रोताओं, अगर हमने आपको बताया कि पक्षियों के लिए दाना रख सकते हैं और पशुओं के लिए, जिसमें आपने देखा है कि हमारा जो पर्यावरण है या हमारा समाज है, वहाँ ऐसा है कि हमारे घर के आसपास गायें, कुत्ता, बिल्ली हमारे आसपास दिख जाते हैं, और अगर हम उनके लिए भी थोड़ी सी व्यवस्था कर देते हैं ना, कि किसी छायादार पेड़ के नीचे या घर के आसपास बर्तन में पानी रख देते हैं, या उनके लिए थोड़ा दूध रोटी कुछ डाल देते हैं, तो उनके भी खाने की व्यवस्था हो जाती है। और कोशिश करनी चाहिए कि छायादार या हवादार जगह पर रखें, ताकि उन्हें भी गर्म पानी न मिले, या फिर जो पानी गर्म हो जाता है उससे उनका बचाव किया जा सके। तो भाई, ये लू, ये गर्मी, और ये जो इतना गर्मी से बुरा हाल, बेहाल मौसम है, ये केवल हमारे लिए ही नहीं, उनके लिए भी है। तो थोड़ी सी अगर हम उनकी भी केयर करते हैं, सावधानी बरतते हैं, तो उनके जीवन को भी बचाया जा सकता है। तो भाई, ये थोड़ी सी जानकारी आपके साथ हमने साझा की कि गर्मियों में कैसे रखें पशु पक्षियों का ख्याल। थोड़ी सी बातचीत चर्चा आपसे और भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपके मनोरंजन के लिए ये खूबसूरत गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, आजकल के जो दिन हैं वो बहुत गर्मी के दिन हैं। इसे नौ तपा कहा जाता है, यानी गर्मी के सबसे गर्म नौ दिन, और ये होना बहुत ज़रूरी है। और ये होता तब है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, और इसे पारंपरिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से जानना बहुत ज़रूरी है। भाई श्रोताओं, गर्मी की बढ़ना भी और लू का चलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मौसम में परिवर्तन आते हैं। और क्या परिवर्तन आते हैं और नौ तपा क्यों ज़रूरी है, आइए आपको बतलाते हैं। श्रोताओं, नौ तपा के नौ दिन ही बताते हैं कि मानसून कैसा रहेगा। पारंपरिक मान्यताओं के और मौसम के जानकारों के अनुसार नौ तपा में जितनी अधिक गर्मी पड़ती है, धरती जितनी तपती है, मानसून उतना ही अच्छा और भारी होता है। और अगर नौ तपा के इन दिनों में कहीं बारिश आ जाए तो फिर नौ तपा के इन बारिश के दिनों के बाद जो मानसून आता है उसमें कमी आ जाती है। श्रोताओं, नौ तपा का होना है कि मिट्टी का शुद्धिकरण, जिससे तेज धूप के कारण जमीन के अंदर के जो हानिकारक कीड़े मकोड़े टिड्डे चूहों की संख्या होती है वो कम हो जाती है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का नाश हो जाता है, और इसीलिए नौ तपा बहुत ज़रूरी है। श्रोताओं, इससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। प्रचंड गर्मी के कारण खेत की जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है उसमें हानिकारक बैक्टीरिया और खरपतवार के बीज नष्ट हो जाते हैं, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और अगली फसल के लिए जमीन तैयार हो जाती है। श्रोताओं, इसीलिए इसे नौ तपा कहा जाता है। और इस नौ तपा में जब शरीर से पसीना निकलता है तो

हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, जिससे हमारे शरीर और त्वचा के विकार दूर हो जाते हैं। और नवतपा में क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में भी थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं। श्रोताओं, नवतपा के दिनों में हमें अपने शरीर के हाइड्रेशन का भरपूर ख्याल रखना चाहिए, जिसमें नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, सत्तू का सेवन करना चाहिए और हमारा खान पान हल्का होना चाहिए, आसानी से पचने वाला होना चाहिए। सुपाच्य, जिसमें आप दाल चावल खिचड़ी खा सकते हैं, और ऐसा खान पान हमारे शरीर को बनाए रखता है और इसी के लिए ज़रूरी है कि हम अपने खान पान पर भी ध्यान दें। श्रोताओं, गर्मी तो इतनी अधिक होती है कि अगर हम अपने घर में भी हैं तो भी हमें इसका प्रभाव देखना ही पड़ता है, लेकिन अगर हमें चिलचिलाती धूप में निकलना हो तो भाई हमें इससे थोड़ा सा बचाव करना चाहिए, क्योंकि जो पीक गर्मी का या लू का समय होता है, यानी सुबह के 10-11 बजे से लेकर के हमें दिन के 3-4-5 बजे तक घर के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि लू से बचाव करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर घर पर भी रहें तो कोशिश करें कि सूती कपड़े पहनें, और अगर घर से बाहर निकलना हो तो घर से छाछ, लस्सी या फिर नींबू पानी पी कर निकलें, इससे आपका शरीर हाइड्रेटेड रहता है। और बाहर निकल रहे हैं तो अपने सर को ढक कर रखें, चेहरे को ढक कर रखें और सूती कपड़ों का उपयोग करें, हो सके तो छाता साथ लेकर जाएं, पानी की बोतल साथ लेकर जाएं, इस तरह से आप गर्मी के इन प्रकोप भरे दिनों में अपने आप का बचाव कर सकते हैं। भाई श्रोताओं, ये तो हमने आपको जानकारी दी गर्मी के मौसम की, और आइए अब एक बार फिर से लौट चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, आज कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे प्रश्न किया था कि वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम को कहां आयोजित किया जाएगा। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। जी हां, अब की बार जो ये आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, इसे पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में आयोजित किया जाएगा। और हमारे जिन श्रोताओं ने हमें आज के प्रश्न का सही जवाब भेजा है, अब आपको बता देते हैं उन श्रोताओं के नाम।

सबसे पहले हमें सही जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता हैं योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर और गुरशब्द सिंह राहुल जी आपको भी नमस्कार। और सही जवाब भेजा है उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी मधु गोस्वामी ने। विनोद तोमर संजू देवी ममता देवी हैं ग्राम पंचायत नेहर सबार जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश से। आकली दीवान मध्य प्रदेश से हैं रामलाल चंद्रवंशी कृष्णा चंद्रवंशी। दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से हैं गजानन येले नवदीप येले और विश्वदीप येले। सही जवाब भेजा है साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति प्रतीक कुमार ने खमरिया छत्तीसगढ़ से। दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा। दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से हैं गजानन येले नवदीप येले और विश्वदीप येले। सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। नागल से हैं इंदिराज जगूड़ी से रणधीर बांगड़ युगम। सही जवाब भेजा है लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव संतोषी ध्रुव और निशांत ध्रुव ने। गांव ढानी कुतुबपुर जिला हांसी से हैं रामधारी अवाना अनाया और ओजस अवाना। कल्याण मुंबई से हैं किशोर हिवराले सुजाता हिवराले और प्रतीक हिवराले। रामनगर कैथल से हैं सुनील दत्त विनायक दत्त और आशा रानी। गाँव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से हैं ओम बगड़िया क्रियांश बगड़िया और बेबी गरिमा बगड़िया। सही जवाब भेजा है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने। बीपी गौतम सरिता गौतम है एटा रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। सरोज सैनी और राकेश सैनी हैं इनके साथ हैं यादवेंद्र सैनी सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से। टिया और कृष्णा हैं सोलन हिमाचल प्रदेश से। किशोर की नगरी खंडवा से डीपी सैनी और गौरव सैनी। सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा और पूनम वर्मा। गौतम हैं कुरुक्षेत्र से। रोशन लाल देवांगन हैं बिलाई छत्तीसगढ़ से। ग्राम नागर कोहरा से हैं बबलू साहू जामुन देवी साहू और आराध्या साहू। राजा जी नगर बेंगलोर से हैं एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद। गांव सांतड़ी से हैं ईश्वरदयाल काम्बोज लाजवंती काम्बोज और भव्य काम्बोज। सही जवाब भेजा है बोरसरा नैला से छत्तीसगढ़ से प्रमोद साहू और बीमा साहू ने। एमएलबी रोड ग्वालियर से हैं सुरेश खुराना पप्पी किरण खुराना लव्या आरव खुराना और एसके पप्पी। गार्गी नगर यवतमाल महाराष्ट्र से हैं लक्ष्मण राव लोखंडे कल्पनाताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे। उत्तम कुमार भक्त श्वेता भक्त किशु तासु अर्णवानंद और सत्यमानंद हैं पाकुड़ झारखंड से। कविता साहू प्रमोद कुमार साहू हैं कदू आपड़ा जगत सिंहपुर ओडिशा से। गांव नलोई जिला हिसार से हैं सज्जन जांगड़ा कार्तिक जांगड़ा और वेदांश जांगड़ा। कोमल सेन तोशन सेन और विनायक सेन हैं सोंगा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। गांव कलाना तहसील भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं विक्रम कडवासरा सचिन कडवासरा योगेश और युद्धव कडवासरा। ग्राम बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा अंजनी और ज्योति वर्मा। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गीत बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन चैतन्य मस्किन और मेघा आशीष राजा। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय उषा राय और अमित कुमार राय। डेर पाटन गुजरात से हमारे श्रोता हैं धीरज वीर रबारी। सही जवाब भेजा है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी बबीता मिगलानी और सुभाष योगी ने। बालोदा छत्तीसगढ़ से हैं दिलहरन गौतम अंजलि गौतम और आनंद पटेल और स्मृति पटेल। जमनिया गाजीपुर से हैं सुरेश जायसवाल उर्मिला जायसवाल दीपक और स्वाति जायसवाल। कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से अंग्रेज संदीप दत्ता और बंसी। बस स्टैंड मानसा पंजाब से हैं जगदीश राय गर्ग अंजना गर्ग और रवि गर्ग।

ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से हैं मोहम्मद रफीक पंवार, बेनजीर कौसर और मोहम्मद हसनैन पंवार। कलनगंज खंडवा से हैं कौसर बी पवार, हसीना बी पवार और हिना साहिद खोकर। राजधानी रायपुर से हैं नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी और राघव। भेरूलाल वाकतरिया धाकड़, भोला वाकतरिया, प्रवीण वाकतरिया हैं उन्हील जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा और योगेश शर्मा। रसेड़ा छत्तीसगढ़ से हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी और योगेश कुमार साहू। तेलंगाना निज़ामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श, राजेश सांबले पाटिल। सही जवाब दिया है तराई माल रायगढ़ से अंशु साहू और निशु साहू ने। सही जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता हैं बिहार स्टेट से डब्लू उल्लाह बेलदार, वली उल्लाह बेलदार और सोनम उल्लाह बेलदार। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से हैं वीना डिंगड़ा, कृतिका, विशु और विजय। छत्तीसगढ़ मदनपुर से हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश कुमार साहू और राहुल साहू। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा। प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा हैं छत्तीसगढ़ पलारी से। आरसी कांबड़े और करुणा कांबड़े हैं जवाहर नगर दुर्ग से। भाई सही जवाब भेजा है आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अनवर मास्टर ने शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। श्रीपाल गोयल हैं बहादुरगढ़ हरियाणा से। कुंडी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और हिमांश। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीम्पा, कपिल छीम्पा और पूजा परिहार। रवि और इंदर हैं रानीगंज बंगाल से। डॉक्टर परवीन, रवीना और काव्या हैं सेक्टर 7 कुरुक्षेत्र से। माघीराम सैनी, पूनम सैनी हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से। बेरड़ी मध्य प्रदेश से हैं हुकुम कर्मकर और सुनीता कर्मकर। बन बगेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं योगेश सारवा, आशा सारवा। सही जवाब दिया है कविता साहू, प्रमोद कुमार साहू ने कदुआपड़ा जगत सिंहपुर ओडिशा से। भाना ब्राह्मणा वाला नरवाना से हैं मेघराज शर्मा। तो भाई आप सभी श्रोताओं ने हमें आज के प्रश्न का सही जवाब भेजा, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और अब कार्यक्रम में आप सभी को सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

सही जवाब भेजा हमारे श्रोता गांव व डागर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा। सही जवाब भेजने वाले श्रोता हैं जमनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल उर्मिला दीपक स्वाती जी आपके नाम शामिल हो गए थे, और सौराष्ट्र राजकोट से हैं भाई प्रवीण भाई गुजराती जगदीश भाई गुजराती और हीरेन भाई। और सही जवाब भेजा है नरेश मल्होत्रा नीटू भावना मल्होत्रा और अनिल कटारिया ने खैल बाजार पानीपत से। मिर्ज़ापुर कुरुक्षेत्र से हैं यशपाल धीमान कृष्णा धीमान और शुभम राहुल धीमान। सही जवाब भेजा है संजीव कुमार अमन कुमार ने गांव कुकनी करनाल हरियाणा से। भारत राम पड़ौती जयंती पड़ौती हेमंत पड़ौती हैं भानु प्रताप काकेर जिला भानवेड़ा मुंगवाल से। हेमंत कुमार भारशंकर प्रिया भारशंकर और कुमारी समीक्षा भारशंकर ने सही जवाब दिया है। शंभू दयाल खटक विमला योगेश दीपक और कुमारी पूजा ने भी सही जवाब भेजा है। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लौहारी से हैं राजेश कुमार धनजे राहुल कुमार धनजे शीला धनजे। सही जवाब दिया है शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी ने। धांडी नादुरा महाराष्ट्र से हैं श्री कृष्ण बाठी और संदीप बाठी। सही जवाब भेजा है शाहू नगर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर सरला मनवर और बेबी प्रियांशी ने। राजेश कुमार मेहरा हैं क्लासिक रेडियो श्रोता संघ बकानी खुर्द झालावाड़ राजस्थान से। राजकुमार पुजारा अनीता पुजारा और साहिल पुजारा हैं रादौर से। सादुल शहर राजस्थान से हैं रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन अब्बासी शहनवाज अब्बासी और सरफराज अब्बासी हैं बुलंद शहर से। नजफगढ़ नई दिल्ली से सुमन गौरव शर्मा और सौरभ शर्मा। गांव हीरावाली फाजिलका से हैं पंजाब से सुभाष गोदारा और विमला गोदारा। वंटिंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू टॉमस पिंकी और लवली। उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल और कमला रानी। सही जवाब दिया है रविंद्र सिंह छाबड़ा ध्वनि सानवी और छाबड़ा परिवार ने टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। राजेंद्र कुमार मलकीत को आरती रानी और राघव हैं गांव उगाला जिला अम्बाला से। रविंद्र मोहन दास आशा देवी और वर्षा सुमन हैं किशनगंज बिहार से। सही जवाब दिया है अरविंद कुमार गुड़िया कुमारी भव्या कुमारी बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। गोंदर करनाल से हैं किरण पाल बुम्बक तेजपाल और सरबजीत बुम्बक। सही जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता हैं जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा कार्तिक जांगड़ा और वेदांश जांगड़ा। अक्रम हुसैन प्रिंस डाक बाबू बेगम इशरत अक्रम वसीम अक्रम रुबीना वसीम और आरिज वसीम। नाज मंजिल मैसोल सीतामढ़ी से। सेक्टर दो कुरुक्षेत्र से हैं जगपाल हुड्डा सानिध्य हुड्डा और सुनैना हुड्डा और इनके साथ हैं समीक्षा बन बगेरा जी आपके नाम हो गए थे, और सही जवाब भेजा है नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव अनीता जाधव सोनल प्रसाद जाधव ने। बालोदा छत्तीसगढ़ से हैं दिलहरन गौतम अंजलि गौतम आनंद पटेल और स्मृति पटेल। रमेश कुमार काम्बोज वंश और भुवेश कुमार काम्बोज हैं गांव मुरादगढ़ से। संबलपुर काकेर से हैं फागुराम यादव ज्योति यादव और रजस्वी यादव। सही जवाब भेजा है शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल आशा सपकाल और विशाल सपकाल ने। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हिमकेश्वर साहू करण राहुल साहू। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट से हैं मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़ नायमा रंजूबाई धाकड़ युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। सही जवाब दिया है अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू प्रणय कुमार साहू रुद्रांश प्रताप साहू जी आपको भी नमस्कार। सही जवाब भेजा है मास्टर विट्ठल सुरोशे सुषमा सुरोशे और मायरा सुरोशे ने। नंगल खेड़ा फगवाड़ा से हैं पंजाब से बाल कृष्ण शर्मा प्रवीण शर्मा और राहुल शर्मा। सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं के नाम भाई सबके नाम अब कार्यक्रम में शामिल किए जा चुके हैं। और एक श्रोता हमारे रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। जमशेदपुर से हरजिंदर भाटिया एंजल भाटिया और सोनू भाटिया। भाई आप सभी श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद आज के प्रश्न का सही जवाब देने के लिए।

तो भाई श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम आपको जानकारी दे रहे थे गर्मियों में रखें पशु पक्षियों का ख्याल और नौतपा के दिन कैसे हैं, हमें इसमें भी अपना ख्याल रखना चाहिए। और इसके साथ साथ श्रोताओं, जब हम अपने ख्याल की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें अपने खान पान की बात करना बहुत ज़रूरी है। भाई श्रोताओं, हमारा खान पान आज के समय में बहुत बदलता जा रहा है। जिस तरह की भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है ना, वैसा ही भागदौड़ भरा हमारा खान पान भी हो गया और इसी को बदलने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम घर के बाहर के खान पान पर निर्भर रहेंगे या फिर हम घर से अपना घर का बना हुआ स्वच्छ साफ़ सुथरा भोजन जाते समय नहीं ले जाएंगे और हम कहीं स्ट्रीट फूड या फिर गली से कुछ भी लेकर खा लेंगे या फिर जो आजकल बहुत इंस्टेंट है ना कि बंद पैकेट है उसमें कुछ भी पैक है वो हमने खा लिया, ये हमारे खान पान को बहुत प्रभावित करता है। ये हमें बहुत अधिक मजबूरी में अगर कभी खाना पड़े तो खाना चाहिए और अगर ऐसा संभव हो तो हमें घर के स्वच्छ खान पान पर ही निर्भर रहना चाहिए या फिर अगर बाहर भी आप कहीं खा रहे हैं तो उसमें स्वच्छता का साफ़ सफाई का पूरा ध्यान पूरा ख्याल रखना चाहिए। और हमारे ये खान पान क्यों ज़रूरी है, आइए थोड़ी सी जानकारी अब आपको इस पर दे देते हैं।

श्रोताओं, स्वच्छ और पौष्टिक खान पान हमारे शरीर और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है और ये ताज़ा होना चाहिए, प्राकृतिक भोजन होना चाहिए जो हमें ऊर्जावान बनाए रखे। श्रोताओं, गर्मी के दिनों में तो इस बात का और भी खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और रही बात गर्मी के साथ साथ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की, तो आजकल के दिनों में जो हमारा शरीर है वो बहुत प्रभावित होता है और कई बार हमारा शरीर किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होता है।

बंद, टिब्बा बंद, और इन सभी चीज़ों की जगह हमें हरी सब्जियों, ताज़ा फल, नट्स और साबुत अनाज को अपनी थाली का हिस्सा बनाना चाहिए, यानी हमें अपने खान पान में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। श्रोताओं, गर्मी का मौसम है, ऐसे में आजकल के समय में भोजन जो है या फिर बना हुआ खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम ताज़ा बना हुआ भोजन ही लें, समय पर भोजन लें और अपने शरीर को हाइड्रेटेड भी रखें, यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। पानी के साथ साथ हम पेय पदार्थ और भी ले सकते हैं, जिनमें अगर हम बात करें छाछ, लस्सी और शरबत हम ले सकते हैं घर पे बने हुए, हम सत्तू ले सकते हैं, हम आम का पन्ना ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, है ना। ये सब जो पेय पदार्थ हैं इन्हें हमें अपने खान पान में शामिल करना चाहिए। श्रोताओं, हमें अधिक चीनी और अधिक नमक का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। और अगर बाहर की वस्तुओं में देखें, यानी डिब्बा बंद और पैकेट बंद वस्तुओं में, तो नमक और चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है और हमें इससे बचना चाहिए, तभी हम अपने खान पान की तरफ ध्यान दे सकते हैं। श्रोताओं, भोजन जो है वो बहुत अधिक तेल या मसालेदार वाला आजकल के दिनों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय गर्मी वैसे भी बहुत अधिक पड़ रही होती है। तो हमें अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए और अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए अपने खान पान की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आजकल के दिनों में ताज़ा सब्जियों को अगर आप लें, मौसमी फल लें, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे रहते हैं और इससे हमारा जो खान पान है वो साफ़ सुथरा और स्वच्छ हो और हमारे शरीर के लिए संतुलित हो, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए। तो किस तरह हम अपने भोजन की साफ सफाई को बनाए रख सकते हैं, इस पर भी करते हैं थोड़ी सी बातचीत। श्रोताओं, हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा हमारे घर के कुछ नियम बनाए गए थे, जिनमें सबसे पहले होता था कि अगर हम कहीं बाहर से आए हैं तो हमारे घर में साफ सफाई के लिए, स्वच्छता को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, हम अपने जो घर में आते ही सामान था उसे एक तरफ रखते थे और अपने घर में साफ सफाई को बनाए रखने के लिए अपने बाहर के लाए गए जूता चप्पल को घर के बाहर ही, कमरे के बाहर ही उतारते थे। लेकिन अब बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि हम इन नियमों को अनदेखा कर देते हैं, और हालांकि ये हमारे घर की साफ सफाई, हमारे जीवन की साफ सफाई के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम इन बातों को अपने जीवन में शामिल करें, जिनमें अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो उससे पहले अपने बाहर से आए हुए कपड़ों को बदलें, अपने हाथों को साफ करें, अपने पैरों को साफ करें, हाथ मुंह को अच्छे से धोकर ही हमें भोजन करना चाहिए। इससे हमारी पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन रहती है और हमारा जो खाने पीने का तरीका है वो भी अच्छा रहता है। तो हमें कुछ चीजें जो होती हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, जिसमें अपने हाथों की साफ सफाई, नाखून हमारे कटे हों, ये बेशक नन्ही छोटी छोटी बातें होती हैं और हम इस पर बहुत हद तक समझदार भी होते हैं, लेकिन कई बार इसे अनदेखा कर जाते हैं। और अगर आजकल की बात करें तो छोटे बच्चे होते हैं, पहले होता था कि उन्हें माता पिता समझाते थे और बच्चे मान जाते थे, लेकिन आजकल जो है ये कुछ चीज़ें बदलती जा रही हैं। तो जो खान पान में स्वच्छता है उसको बनाए रखना, मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम आशा करते हैं कि जो बातें हमने आपको आज कार्यक्रम में बताई आप उनकी तरफ ज़रूर ध्यान देंगे और इन छोटी छोटी बातों को अपनाते हुए, ध्यान रखते हुए आप इन अपने स्वच्छ खान पान को बनाए रखेंगे और गर्मी के इस मौसम को स्वच्छता बनाते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के विषयों के बारे में, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में जी नहीं गीत नहीं आपको सुनवाते हैं ये संदेश।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और

तो भाई इस धरती का ख्याल रखते हुए हम भी कुछ जो नेक काम है ना, जिनमें हमने आपको बहुत सारी आज जानकारी दी कि नन्हे पशु पक्षियों का ख्याल रखना और इनके लिए दाना पानी रखना, इस व्यवस्था को आप ज़रूर करेंगे अपने घर के आसपास, अपनी बालकनी में, अपने घर की छत पर, मुंडेर पर, कहीं तो करेंगे, है ना, तो ज़रूर कीजिएगा। और इन्हीं सभी बातों के साथ अब आज के कार्यक्रम सुबह सवेरे को संपन्न करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। हमारा पता है आपकी बात आकाशवाणी @gmail.com। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, तो हम अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वरांजलि।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम स्वरांजलि में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं फाल्गुनी पाठक को।

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
0: आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम स्वरांजलि आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से, और आइए अब सुनते हैं सुरजीत बिन रखिया को।

श्रोताओं, सुरजीत बिन रखे के गाए इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम स्वरांजलि अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम स्वरांजलि। एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय सुबह के 9:45 हुए जाते हैं। अब आप सुनिएगा विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने। उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

0: भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।
1: हर हर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान

अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 101.4 MHz पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

श्रोताओं, आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ मैं अनुराधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप जानते हैं कि सजीव फोन इन कार्यक्रम है तो इसमें हमारे श्रोता हमें फ़ोन लगाते हैं, बातचीत करते हैं और अपनी पसंद का गीत भी सुनते हैं आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से। और जिन विषयों पर हम चर्चा करते हैं हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हम बात करेंगे नशों से होने वाले नुकसान और साथ ही आपको जानकारी देंगे देश की अर्थव्यवस्था में कैसे महत्वपूर्ण है जनसंख्या। जी हाँ श्रोताओं, तो इन विषयों पर आज हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन जिन श्रोताओं ने हमें हाल ही में फ़ोन लगाया था वो कृपया कर फ़ोन न लगाएं, क्योंकि हमारे नए श्रोताओं को हमसे जुड़ने का मौका दें। और जिन श्रोताओं ने हमसे अभी हाल ही में बात कर ली थी वो आज कार्यक्रम को सुनें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें और कार्यक्रम में बताए गए विषयों का आनंद लें। और हमारे श्रोता हमें फ़ोन लगा सकते हैं, हमारे स्टूडियो का नंबर है 0174-221-322। तो जब तक हमारे श्रोता हमें फ़ोन लगाते हैं आइए सुनते हैं ये गीत।

भाई श्रोताओं, हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को बनाना जब होता है तो उसमें देश की जनसंख्या ही जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस तरह से निभाती है और हम विश्व भर में जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर हैं और इसमें हम अपने देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने में किस तरह से योगदान दे सकते हैं, अब आपको इसके बारे में देंगे जानकारी। लेकिन अभी हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, आइए करते हैं उनसे बातचीत।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन से श्रोता कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में हमारे साथ जुड़े हैं?
1: मैं महेंद्र बात कर रहा हूँ। मैम, कैथल जिला गांव चंदाना से।
0: जी महेंद्र जी, आप कैथल से आपने हमें फोन लगाया? पहली बार फोन लगाया आपने?
1: हाँ जी, पहली फोर कॉल लगी है मैम मेरी। तो
0: तो क्या करते हैं महेंद्र जी आप?
1: मैं परचून की दुकान करता हूँ मैम।
0: परचून की दुकान करते हैं,
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: परचून की दुकान करते समय आप एफएम सुन पाते होंगे?
1: नहीं बस कोई कस्टमर आता है, सामान देते हैं, नहीं एफएम तो चलता ही रहता है मोबाइल पे मैम।
0: जी, तो जब आप, हाँ जी
1: एफएम तो चलता ही है मैम,
0: जी एफएम सुनते रहते हैं, कैसे लगते हैं आपको हमारे कार्यक्रम?
1: बहुत बढ़िया लगते हैं सारे मैम कार्यक्रम, सब कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैम। हाँ
0: अच्छा जी, तो आप इस समय अपनी दुकान पर होंगे?
1: जी, दुकान पे ही हूँ मैम।
0: ओके, तो आपके घर में कौन कौन है? आप पहली बार फोन लगाए, कैसा लग रहा है आपको?
1: हाँ जी, बहुत बढ़िया लग रहा है मैम। घर में बच्चे हैं पर मेरे पास तो नहीं है, हम तो घर में, मेरी भी अकेले रहते हैं घर में।
0: अच्छा जी, तो घर में अभी तो फिर बच्चे स्कूल गए होंगे या फिर बच्चों की छुट्टियां
1: नहीं
0: हैं?
1: नहीं नहीं मेरे तो बच्चे बड़े हैं मैम। एक तो पटियाला है, लड़का तो पटियाला काम करता है शीशे अलमुनियम का,
0: जी
1: लड़की की शादी कर दिया है, वो लड़की कच्छल है।
0: अच्छा जी,
1: जी
0: चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आप में घर परिवार में ऐसा है और आप हमारे कार्यक्रम सुन पाते हैं। कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं हमारे केंद्र
1: सब
0: के?
1: सब कार्यक्रम सुनते हैं मैम। सुबह 6 बजे जब भक्ति संगीत का कार्यक्रम होता है उससे लेकर 8 बजे तक तो सुनते ही रहते हैं मैम।
0: अच्छा जी, तो सारे कार्यक्रम सुनते हैं, यानी आप
1: हाँ जी,
0: अपनी
1: हाँ
0: दुकान पर,
1: जी,
0: अपने व्यवसाय पर साथ साथ कार्यक्रम सुनते रहते हैं, साथ साथ आपका
1: हाँ
0: काम
1: जी,
0: चलता रहता
1: हाँ
0: है।
1: जी, हाँ जी, जी। और
0: जी
1: आकाशवाणी परिवार ठीक है मैम?
0: जी बिल्कुल, आप सभी श्रोताओं की दुआओं से हम बिल्कुल सही हैं, मस्त हैं।
1: हाँ
0: और
1: जी,
0: आप बताइए फिर आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: ये है मैम, डम डम डीगा डीगा मौसम भीगा भीगा,
0: चलिए,
1: ये
0: आपकी
1: सुना दो।
0: पसंद पर ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे, लेकिन जरा सी जानकारी के बाद, ठीक है
1: हाँ जी
0: जी? फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: ठीक है मैम, धन्यवाद मैम।

जी हाँ, हमारे श्रोता जिन्होंने हमें फ़ोन लगाया था और उन्होंने सुनना चाहा है डम डम डिगा डिगा फिल्म जो गीत है और राज कपूर पर फिल्माया हुआ ये गीत है, इस गीत को हम अपने श्रोताओं को ज़रूर सुनवाएंगे। लेकिन अभी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं देश की अर्थव्यवस्था में कैसे महत्वपूर्ण है जनसंख्या। जी हाँ श्रोताओं, जो हमारे देश की जनसंख्या की बात करें तो ये हमने आपको बताया कि विश्व भर में पहले नंबर पर है, और जब जनसंख्या अधिक हो तो उसी तरह जनसंख्या को यानी सब जनमानस को अपने देश की अर्थव्यवस्था के योगदान के लिए भी प्रयासरत रहना चाहिए। श्रोताओं, जनसंख्या जब बढ़ती है तो उसका एक डिविडेंड बनता है, यानी युवा जो हैं वो कितने हैं हमारे देश में, बुज़ुर्ग जो हैं वो कितने हैं और बच्चे जो हैं वो कितने हैं। और इस समय अगर देखा जाए तो हमारे देश में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है, यानी विश्व में सबसे युवा देश जो है वो इस समय भारत है। और इस युवा वर्ग को किस तरह से अपने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करना चाहिए इस पर अभी देंगे जानकारी। लेकिन अभी हमारे जो श्रोता जिन्होंने हमें फोन लगाया था उनकी पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन से श्रोता कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में हमारे साथ जुड़े हैं?
1: हेलो,
0: हेलो
1: नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोना मार्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: जी लतीफ मोहम्मद रैना जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा है मैडम, आप ठीक है?
0: जी बिल्कुल, हम ठीक हैं। आप बताइए, कश्मीर का मौसम कैसा है? सोनमर्ग का मौसम कैसा है इस समय?
1: सुहाना है, सुहाना मौसम तो पर्यटक के लिए बहुत अच्छा है। मौसम बहुत क्लियर है, आज यहाँ पे धूप है,
0: अच्छा जी, आज
1: आज
0: धूप।
1: दूसरा ईद यहाँ पे है।
0: जी,
1: हाँ जी,
0: तो ईद है आपको, ईद मुबारक।
1: हाँ आपको भी ईद मुबारक, सभी को हमारी तरफ से,
0: जी
1: पुरुषोत्तर सभी टीम को।
0: जी आपको भी ईद मुबारक। तो आज बताइए फिर, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: गाना सुनना है हमें, ये कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी।
0: चलिए, आपकी पसंद पर कुर्बानी फिल्म से ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका भी।

0: विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आपको जानकारी दे रहे थे कि देश की अर्थव्यवस्था में कैसे महत्वपूर्ण है जनसंख्या। जी हाँ, अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है और निभानी भी चाहिए, क्योंकि जो देश के जनमानस होता है वही देश का विशाल कार्यबल भी होता है। और इसमें हमने आपको बताया कि भारत इस समय विश्व का सबसे युवा देश है, यानी युवाओं की जो संख्या है वो भारत देश में सबसे अधिक है। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने स्किल अपनी योग्यता को बढ़ाकर अपने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दें। श्रोताओं, युवा शक्ति ही सबसे बड़ी श्रम शक्ति होती है किसी देश की। किसी भी उत्पादन कार्य के लिए मानव श्रम की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, और अधिक जनसंख्या का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था के लिए अधिक कार्यबल की उपलब्धता, चाहे फिर वो कृषि में हो, विनिर्माण में हो, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर सेवाओं के क्षेत्र में। इन सभी में जो श्रम शक्ति है, युवा शक्ति है, वो अधिक योगदान दे सकती है। श्रोताओं, अगर बात करें कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की या फिर घरेलू खपत की, तो इसमें दोनों ही जगह हमारे देश की जनसंख्या योगदान दे सकती है। जिसमें घरेलू मांग के विस्तार की बात करें तो एक बड़ी जनसंख्या का होना यानी एक बड़ा बाजार, और ऐसे में वस्तुओं को बहुत अधिक उत्पादन करना चाहिए और उनमें निवेश भी करना चाहिए। उत्पादन बढ़ने के साथ ही मांग बढ़ती है यानी लागत बढ़ती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई मिलती है। और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम अपनी योग्यताओं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, अपने विचारों को विस्तार दें। और जब हम नई नई स्किल सीखते हैं, नए रोज़गार लगाते हैं, नई वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो फिर बाज़ार की मांग को पूरा किया जा सकता है। अपने देश की मांग में पूरा करने के साथ साथ विदेश की मांग को भी बढ़ाया जा सकता है। और विदेशों में जब एक्सपोर्ट किया जाता है, किसी सामान को भेजा जाता है, तो वहाँ से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगती है। और यही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे बड़ा पहला पायदान होता है, जिसमें अगर हमारे देश में सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है, उत्पादन के साथ साथ हमें ये पता है कि बाज़ार की मांग क्या है, वहाँ किस तरह से पहुँचा और पहुँचाया जा सकता है, यानी हम अपने स्किल को किस तरह से बढ़ाकर अपने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते

0: ओ बढ़िया मैडम जी, आप बताइए जी, ठीक
1: जी
0: ठाक है
1: बिल्कुल,
0: सब?
1: आप सभी
0: टेक्निकल
1: श्रोताओं की
0: परिवार
1: दुआएं
0: हमारा,
1: हैं। जी बोलिए
0: मैं कहा टेक्निकल परिवार हमारा सब तंदुरुस्त है जी।
1: जी बिल्कुल, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र में हम सभी अच्छे से हैं और हमारा जो टेक्निकल टीम है वो भी बहुत अच्छे हैं और आप सभी श्रोताओं की दुआएं हैं। जी
0: ठीक है मैडम जी। समाणा मंडी तो लाडी सिंह धालीवाल बोलता मैडम जी,
1: जी
0: डिस्ट्रिक्ट
1: लाडी सिंह,
0: पटियाले तो।
1: जी लाडी सिंह धालीवाल जी, तो इस समय आप क्या कर रहे थे?
0: मैडम जी इस टाइम आपका आनंद ले रहे थे प्रोग्राम का जी।
1: अच्छा जी, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, तो घर पर हैं
0: बिल्कुल
1: या काम
0: मैडम।
1: पर आ गए?
0: हाँ जी
1: घर पर हैं या अपने काम पर व्यवसाय पर आ गए?
0: नहीं मैडम जी, अब घर पे ही हैं
1: अच्छा जी, तो बताइए फिर आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: जी। सुनना चाहते हैं गोरा काला फिल्म से धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, रणधीर
1: चलिए आपकी पसंद पर गोरा काला फिल्म से गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फोन पे।
0: सिंह बांगड़ जी
1: जी
0: गांव जगूड़ी से,
1: जी
0: तो हमारी ताई जी हैं गरमेचो कौर जी,
1: जी
0: तेजा मोड़ी तो बंसी लाल जी,
1: हाँ जी
0: नागल तो इंदलाल जी।
1: जी तो
0: हाँ
1: ठीक है,
0: जी
1: आप
0: मैडम
1: अपने इन सभी श्रोता साथियों के साथ सुनिए आपकी पसंद का ये गीत और फोन करने के लिए धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कॉल अटेंड करी मैडम जी। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, बात रहो
1: जी।

0: जी हाँ श्रोताओं, अभी हम आपसे जानकारी साझा कर रहे थे कि किस तरह हमारे देश के जो युवा हैं या देश की जनसंख्या है वो किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए योगदान दे सकती है। जी हाँ, जिस देश की जितनी ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल यानी कि विशाल कार्यबल होता है, जनसंख्या होती है, वो देश उतना ही तरक्की कर सकता है अगर अपने देश के युवाओं में नवाचार कर सके, उन्हें स्किल दे सके और उन्हें रोज़गार दे सके। तो श्रोताओं, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने स्किल में, अपनी शिक्षा में बढ़ोतरी करें ताकि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें। और डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हमने की, जिसमें देश के युवाओं और कामकाजी उम्र के जो लोग हैं वो अधिक हैं तो वो देश की आर्थिक विकास को तेज़ी दे सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वे शिक्षित हों और नवाचार में रुचि रखते हों, ताकि वे नए नए आइडियाज़ से, नए नए विचारों से कुछ नए नवाचार जो स्टार्टअप हैं वो लगा सकें, कोई रोज़गार स्थापित कर सकें, जिसमें वे खुद रोज़गार को स्थापित करने के साथ साथ और लोगों को भी रोज़गार दे सकें। और इसी तरह से जब रोज़गार लगाए जाते हैं, स्टार्टअप लगाए जाते हैं, तो वे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं। और बड़ी जनसंख्या का होना, युवाओं की प्रतिभाओं को बढ़ाना, उनमें अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, रचनात्मक क्षेत्रों में नवाचार को जन्म दे सकती हैं, जिससे वे स्किल हासिल कर सकते हैं और अपने देश में रोज़गार के अवसरों को बढ़ा सकते हैं। तो श्रोताओं, देश की अर्थव्यवस्था में इसी तरह से महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं देश के युवा, जो कि आज के समय में भारत में सबसे अधिक हैं। और इस पर थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं से और साझा करेंगे। अभी हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, आइए करते हैं उनसे बातचीत। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, हाँ जी, कौन से श्रोता हमसे जुड़े हैं?
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: जी गुड मॉर्निंग जी।
1: जी मैं श्रीपाल गोयल, बहादुरगढ़ हरियाणा से।
0: जी श्रीपाल गोयल जी, कैसे हैं आप?
1: मैम ठीक, आप बताइए कैसे हो?
0: जी बिल्कुल बढ़िया, आप सभी श्रोताओं के दुआएं हैं। जी श्रीपाल जी, तो इस समय तो आप हमारे श्रोता हैं, लगभग हमें फोन लगाते रहते हैं, है ना? तो इस समय आप अपने,
1: हाँ, आपसे बात हुई थी 11 मई को, उसके बाद आज ही कॉल किया है।
0: अच्छा ठीक है जी, तो इस समय आप अपने कार्य की तरफ, मतलब अपने व्यवसाय की तरफ जा रहे होते हैं, तो आप अभी पहुंच गए हैं या फिर पहुंचने वाले हैं?
1: मैं बस पहुंचने वाले हैं 5 मिनट में।
0: हाँ जी,
1: रास्ते में ही थे, चलते हुए कॉल किया था, कॉल भी लग गई।
0: अच्छा जी, कॉल लगाई और कॉल लग गई, है ना? जी तो श्रीपाल गोयल जी, बताइए आज कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: जी मैम, फिल्म क्या मुझसे है वो लड़की बहुत याद आती है।
0: चलिए, आपकी पसंद पर ये गीत हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आज हम कार्यक्रम में बात करें कि देश की अर्थव्यवस्था में किस तरह से देश की जनसंख्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी मैम,
0: हम आज बात कर रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में देश की जो जनसंख्या है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में?
1: जी मैम, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना मैम।
0: अच्छा जी, नहीं कहना चाहती, चलिए कोई बात नहीं, हम जानकारी दे रहे हैं, आप उसे सुनिए और अपनी पसंद का ये गीत सुनिए। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम
0: जी।

0: तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे जनसंख्या की, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है अपनी देश की अर्थव्यवस्था के योगदान में। तो सबसे पहले तो उन्हें शिक्षा का महत्व समझना चाहिए। जब हमारे देश की जनसंख्या यानी जन युवा शिक्षित होंगे तो वो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं। तो श्रोताओं, सबसे पहले हमें अपनी शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए और शिक्षा के साथ साथ ही हमें जीवन में स्किल को यानी अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए किसी न किसी स्किल को सीख लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम कोई ऐसा स्किल सीख लेते हैं जो हमारे जीवन में रोजगार का कारण बनता है, तो इससे हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। श्रोताओं, कई बार हम कोई ऐसा रोजगार या ऐसा काम शुरू करते हैं जिसमें हम अपने साथ साथ औरों को भी रोजगार दे सकते हैं। इसके साथ ही हम उन्हें रोजगार देने के साथ साथ स्किल भी दे सकते हैं ताकि वे अपने स्किल को बढ़ाकर अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बढ़ा पाएं, अपने घरेलू जो रोजगार है उसको बढ़ा पाएं, उसके साथ साथ अपने देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे पाएं। श्रोताओं, डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में हमने आपको बताया कि जनसंख्यिकीय लाभ जो लाभांश जो है जब वो होता है बहुत अधिक तो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकता है। इसमें आयु वर्ग होता है 15 से 59 वर्ष का, यानी जो कामकाजी लोग होते हैं जिन पर बच्चे और बुजुर्ग आश्रित होते हैं, इसे ही जनांकीय लाभांश कहा जाता है। और यह समय होता है कि जब देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक बेहतरीन अवसर होता है। इसके साथ साथ यही जो हमारे देश के कामकाजी लोग हैं, इस उम्र के लोग हैं, वे जब नवाचार और उद्यमिता को बढ़ाते हैं तो इसके साथ साथ ही वो स्टार्टअप्स की संभावना को भी और अधिक उतना ही बढ़ा सकते हैं। जब स्टार्टअप लगते हैं तो उसमें बहुत से लोगों को रोज़गार मिलता है और ये रोज़गार ही उनकी जीवन में रोज़गार ही उनका साधन बनता है जो उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। इसमें हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, यानी हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है और बचत है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, तभी ये अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम संसाधनों की तरफ ध्यान दें तो संसाधनों का दोहन समझदारी से करना बहुत आवश्यक होता है, तभी किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है। श्रोताओं, जब देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना होता है तो हमें उसमें केवल पुरुषों के योगदान को नहीं महिलाओं के योगदान को भी देखना चाहिए। आज का जब समय है तो इसमें महिलाएँ भी बढ़ चढ़ कर अपने देश की प्रगति में योगदान दे सकती हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए महिलाओं को भी ऐसे स्किल सीखने चाहिए जिससे वे अपने साथ साथ अपने और जो महिलाएं हैं उनको भी अपने साथ रोजगार में लगाएं और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दें। और जब इस बात की तरफ ध्यान दिया जाता है तो हमारे जो महिला युवा वर्ग है वो भी अपने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकती है। आज तो देखने में प्राय आता है कि महिलाएं भी स्टार्टअप लगाती हैं, चाहे फिर वो छोटे रोज़गार से शुरू होकर बड़े रोज़गार तक उसे पहुंचाना हो, जिसमें महिला साथी भी घरेलू जो कुटीर उद्योग होते हैं, घर पर जो काम करना होता है, जिसमें कुछ महिलाएँ जुड़कर अपने समूह बनाकर भी काम करती हैं, इन सब छोटे छोटे कदमों की ओर बढ़ते हुए जब बड़े कामों तक पहुंचा जाता है, यानी जब बड़े स्टार्टअप लगाए जाते हैं, जब महिलाएं और आगे बढ़कर तरक्की करते हुए बड़े स्टार्टअप लगाती हैं और उन्हें फिर एक ऊंचाई तक पहुंचाती हैं, तो ये देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकता है। श्रोताओं, इसमें केवल हमारे योगदान के साथ साथ सरकार द्वारा शुरू किए गए जो काम हैं वो भी बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था में केवल जनसंख्या ही नहीं, और इसके साथ साथ सरकार जब प्रशिक्षण के लिए कुछ कार्यक्रम आयोजित करती है जिसमें कौशल विकास को आप मान सकते हैं, इसे जब आयोजित किया जाता है और इसके द्वारा जब जनसंख्या के जनमानस के और युवाओं के स्किल को बढ़ावा दिया जाता है तो फिर ये अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में और भी सहायक सिद्ध हो सकती हैं। तो श्रोताओं, ये हमने आपको जानकारी दी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो जनसंख्या का योगदान है उस पर। और अभी हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, आइए करते हैं उनसे बातचीत। हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन से श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं?
1: मैम, मैं क्षेत्र से बोल रहा हूँ, पिंकू
0: जी। पिंकू जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ जी, ठीक है मैम।
0: क्या करते हैं आप?
1: मैम, मैं घर पर ही रहता हूँ।
0: घर पर ही रहते हैं, पढ़ाई आपने कर ली?
1: जी,
0: तो घर पर रहते हैं तो गीत सुनते हैं, कार्यक्रम सुनते हैं?
1: जी मैम, बस सुबह लगा देता हूँ 6 बजे और 11 बजे तक सुनता रहता हूँ।
0: अच्छा जी, तो आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं कार्यक्रम में?
1: मैम ये गाना सुना दो, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए।
0: जी, आपकी पसंद पर ये गीत हम आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन अभी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप घर पर रहते हैं, तो घर पर रहने के साथ साथ कोई काम करते होंगे या आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो फिर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं?
1: नहीं मैम, अभी तो घर पे हूँ।
0: हाँ जी,
1: काम में दिक्कत है मैम, घर पे रहता हूँ।
0: अच्छा जी, घर पर रहते हैं, चलिए कोई बात नहीं। जी, तो घर पर रहते हैं आप, हमारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं, कैसे लगते हैं आपको हमारे कार्यक्रम?
1: अच्छे लगते हैं मैम।
0: अच्छे लगते हैं,
1: जी।
0: तो आज आपने कार्यक्रम में पहली बार फोन लगाया है?
1: नहीं मैम, दूसरी बार लगाया है।
0: अच्छा जी, तो आज आप दुश्मन फिल्म से जो गीत है वो सुनना चाहते हैं? हेलो
1: जी, जी मैम।
0: जी, जो दुश्मन फिल्म से गीत है चिट्ठी ना कोई संदेश, वो सुनना चाहते हैं आप?
1: हाँ जी मैम। हाँ जी,
0: तो वो आप किस आवाज़ में सुनना चाहते हैं ये भी बता दीजिए। जगजीत सिंह की आवाज़ वाला या लता मंगेशकर की आवाज़ वाला?
1: मैम कोई सी आवाज़ में सुना दो, पर सुना दो।
0: चलिए ठीक है, आपकी पसंद पर।
1: हाँ जी, मेरे फ्रेंड का ना वो सुसाइड कर लिया, तो नहीं इसका रहा।
0: चलिए, आपकी पसंद पर ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। फ़ोन करने के लिए धन्यवाद।

0: का टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ।
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।
3: श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं देश के युवाओं की अर्थव्यवस्था में योगदान की, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में योगदान वही युवा दे

0: सकते हैं जो अपने आप को अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखे हुए हैं, यानी वे शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और किसी भी तरह की बुरी आदतों में नहीं है। जी हाँ, बुरी आदतों से हमारा मतलब है कि नशों में नहीं है। और नशों से होने वाले नुकसान क्या हैं, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। श्रोताओं, जिस तरह हम जीवन में धीरे धीरे उम्र में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो कई बार जब हम बचपन से युवावस्था की ओर कदम रख रहे होते हैं, तो अपने जब बढ़ते जीवन में हम कुछ अच्छी आदतों में पड़ते हैं और कुछ बुरी आदतों में पड़ जाते हैं। तो यही जब बचपन से बढ़ती उम्र यानी युवा होने का समय होता है, उसमें अपनी आदतों की ओर ध्यान रखना हमारा भी कर्तव्य है और हमारे घर परिवार हमारे बड़े बुजुर्गों का भी कर्तव्य है कि वो हमें किसी भी ऐसी आदत में न जाने दें जो हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक हो। और नशा जो है वो एक ऐसी ही आदत है जो हमारे जीवन में हमारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। श्रोताओं, अगर हमें नशे की आदत हो जाती है तो फिर ये हमारे मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र को कमज़ोर कर देती है, जिससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता जो है वो नष्ट हो जाती है। इससे हमारे शारीरिक तौर पर यानी हमारे फेफड़े, लीवर, हृदय को तो बहुत गंभीर नुकसान पहुँचता ही है, हम सामाजिक तौर पर भी पूरी तरह से टूट जाते हैं। क्योंकि अगर हमारे भीतर ऐसी बुरी आदतें होंगी, नशे की लत होना या फिर और बुरी आदतें होना, तो फिर हमारा समाज में कोई रुतबा, कोई मान नहीं रह जाएगा और इसी तरह से फिर हम शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्तर पर भी कमज़ोर चले जाते हैं और इन्हीं बातों से हमें बचना चाहिए। तो श्रोताओं, अगर नशों से होने वाले नुकसान की बात करें तो ये सबसे पहले हमें शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाती है, हमारे शारीरिक अंगों को नुकसान पहुंचाती है। तो हमें अपने शरीर को अगर बचाना है तो हमें नशे को ना कहनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे जो शरीर की प्रतिरक्षण प्रणाली है यानी हमारी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाती है और इसके लिए भी हमें नशों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। श्रोताओं, मानसिक स्तर की हमने बात की, भावनात्मक स्तर की हमने बात की, तो इससे हमारी सोचने, समझने, याद रखने की क्षमता यानी हमारी मेमोरी, हमारा जो याद रखने की क्षमता है वो प्रभावित होती है, जिससे हम अवसाद यानी डिप्रेशन, चिंता यानी एंजाइटी, घबराहट और भ्रम के शिकार हो जाते हैं और इससे हमें बहुत बुरे विचार भी आते हैं, यानी हमारे विचारों को भी प्रभावित करता है नशा। तो हमें नशे से सदैव दूर रहना चाहिए। श्रोताओं, ये हमें शारीरिक और मानसिक स्तर पर नुकसान पहुंचाने के साथ साथ यानी हमारी अर्थव्यवस्था यानी हमारे जो आर्थिक तौर पर भी हमें नुकसान पहुंचाता है। श्रोताओं, जब हम किसी भी तरह का कोई नशा करना शुरू करते हैं तो फिर ये तो है नहीं कि ये हमें आसानी से मिल जाता है या फिर हमें बिना पैसों के मिल जाता है। तो जब हम अपनी किसी भी ऐसी बुरी आदत में पड़ते हैं तो किसी भी तरह अपनी लत को पूरा करने के लिए अपनी जमा पूंजी को गवा बैठते हैं और ये हमें इसी तरह से प्रभावित करता है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है और इसके साथ साथ हमारे परिवार में कलह बढ़ता है, कलेश बढ़ता है, हिंसा होती है, चिड़चिड़े स्वभाव के हम हो जाते हैं। और जब ये सब हो जाता है तो फिर सामाजिक तौर पर हमारा बहिष्कार होना लाजमी है। इससे समाज में हमारा सम्मान भी नहीं होता, कोई हमें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। ये सब जो है ये नशे से होने वाले नुकसान हैं। तो श्रोताओं, अगर जीवन में ऐसी कोई बुरी आदत हमें हो जाती है तो हमें उसे तुरंत छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए और उस प्रयत्न को सफलता तक ले जाना चाहिए। श्रोताओं, नशा कोई ऐसी लाइलाज बीमारी या लत नहीं होती जिससे हम छुटकारा ना पा सकें। हमें एक दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है जब हम नशे से दूर हो सकते हैं। तो ये जानकारी हमने आपसे साझा की कि हमें नशों से दूर रहना चाहिए क्योंकि इससे हमें बहुत नुकसान होते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति, अच्छी आदतों वाला व्यक्ति अपने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकता है। तो इसीलिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अभी हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गई, आइए करते हैं उनसे बातचीत। हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम जी।
0: जी नमस्कार जी, कौन से श्रोता हमारे साथ जुड़ गए?
1: जी मैं वीरेंद्र ज्ञान हो गया हूँ देवराय साहब से।
0: जी आज आप हमसे बात कर रहे हैं और बात जो है हमारी जानकारी के बाद आपसे हमसे बात हो रही है, तो जल्दी से बता दीजिए आज कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: ये प्रियतमा फिल्म का गीत है मैम जी, कोई रोको ना दीवाने को, किशोर कुमार की सुना देना मैम।
0: आपकी पसंद पर गीत पहुँचा रहे हैं, फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम जी।

तो श्रोताओं, इसी के साथ अब आज के कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाइएगा। हमारा पता है आपकी बात आकाशवाणी @gmail.com। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनिएगा विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।
1: कार्यक्रम रंग तरंग बस कुछ ही पलों में है।

कैलाश खेर का लिखा ये गीत था जो मेरे एल्बम से। गीत और संगीत थे कैलाश खेर के और आवाज भी थी कैलाश खेर की। आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

सूरज दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में अमर अकबर एंथनी फिल्म की ये कव्वाली आपने सुनी। आयन बख्शी के लिखी ये कव्वाली थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के 2रे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबर्धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
5: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाए जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
4: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये घोषणा की। केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में 2-2 मौतें हुई हैं, जबकि मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 1-1 मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, इस प्रोग्राम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में आपकी कसम फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
2: कहीं बेख्याल हो कर यूं ही टूलिया किसी ने।
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल,
3: जाने दिन
1: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में यह दुगाना मेरे हमसफर फिल्म का था। आनंद बख्शी का लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: इस समय विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, फिल्म थी फर्ज।
1: क्या हुआ?
2: हाय गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी।
2: एक बहाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा
2: सर

मधुफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये दो गाना आपने सुना अनजाना फिल्म से आनंद बख्शी के बोल थे। कार्यक्रम यादों की महफिल यहीं संपन्न हुआ।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओ, आजकल जरूर हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो पहाड़ों का रुख कर चुके होंगे। बहुत मुमकिन है कि आप रास्ते में विविध भारती भी सुन रहे हों, तो चलिए हम भी आपके साथ हो लेते हैं विविध भारती के साथ सुरीले सफर में। आज चलते हैं हम और आप साथ साथ। यूं कह लें कि गर्मियों में पहाड़ों का जो मौसम होता है श्रोताओ, आशिकाना होता है। छोटी छोटी सी पगडंडियां ऊंचे आसमान से बातें करते, देवदार के पेड़, खुला खुला नीला आसमान एक अलग वादियों में खो जाते हैं हम सभी कहीं, और तमाम खुशियां जो हम अपने साथ कर लेते हैं थोड़ी से समय में हम अपनी मुट्ठी में इन खुशियों को भर लेना चाहते हैं। ऐसे में गीतों का साथ हो तो क्या कहने। इबारत की जहां तक बात है श्रोताओं, जो टेक्स्ट हमने इस प्रोग्राम के लिए आपको फेसबुक पेज पर दिया उसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने देखा होगा प्रोग्राम में, तो फिर आप भी शामिल हो जाइए। हमारे नए श्रोताओं के लिए हम बता देते हैं www.facebook.com/vbsmumbai के इस पेज पर लॉग इन कर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स हम तक भेज सकते हैं। और अब आज का टेक्स्ट या पैसेज जो भी आप कहें या इबारत कहें उसे आपके लिए पढ़ देते हैं एक बार फिर। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों का हुस्न बेमिसाल होता है। राहत और सुकून से भरे रास्ते पुकारते चले जाते हैं। हर चेहरा यहाँ चांद है तो कहीं चांद से रोशन चेहरे भी हैं। सादगी से भरपूर जीवन और यहाँ के लोगों की मासूम मुस्कुराहट, मोहब्बत नहीं तो फिर क्या है। धुंध का पर्दा हटा तो पर्वत के पीछे गांव का नजारा था जहां इस मौसम में सैलानी खूब आया करते हैं। हमारे गांव भी कोई जरूर आएगा और कहेगा प्रीत तोरी सांची। परदेसी ने फल, कपड़े और टोकरियां भी खरीदी। किसी सपनों की रानी के जैसे ये बर्फीले प्रदेश और यहाँ के लोग डोरी बुनकर प्यार बांध लेते हैं। परदेसी एक दिन चले जाते हैं एक और मुलाकात का वादा करके। तो ये थी आज की इबारत, और बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी भेजे हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमने देखी हैं। साथ ही आपने जो गीत चुने हैं वो भी बड़े ही मुकम्मल हैं आज के कार्यक्रम के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारे और भी श्रोता इन गीतों के बारे में क्या लिखते हैं, इन शब्दों को कैसे चुनते हैं, और हमारे जो श्रोता नए हैं वो भी हमें अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे सभी श्रोताओं का। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है, जिसके तहत अब खेल में रुचि रखने वाले बच्चों की ग्रामीण स्तर पर पहचान की जाएगी और उन्हें अपनी पसंद के खेल में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए पंचायत, स्कूल और खेल विभाग घनिष्ठ तालमेल से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कल चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा विजन 2047 के तहत खेल विभाग के 5 साल के रोडमैप और कार्य योजना की समीक्षा करने के बाद ये बात कही। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंचायत, स्कूल और खेल विभाग संयुक्त रूप से इस उद्देश्य के लिए एक कार्य योजना तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि खेल विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि गांवों में स्टेडियम बनाए जाएं, ताकि जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान की जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के परिसरों का उपयोग भी खेलों के लिए किया जाएगा। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ओलंपिक 2036 के लिए दीर्घकालिक योजना जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। इसके लिए 10 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों की पहचान की जाएगी, उनके खेल हितों को परिष्कृत किया जाएगा और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आज हरियाणा और चंडीगढ़ में ईद उल अजहा का त्यौहार श्रद्धा, सौहार्द और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र, पलवल और फरीदाबाद जिले से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि जिले में सुबह शहरी और ग्रामीण इलाकों की मस्जिदों तथा ईदगाहों में नमाजियों की भारी भीड़ देखी गई। सभी ने मिलकर नमाज अता की और देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के माध्यम से पीएम कुसुम योजना के तहत प्रदेश के किसानों को खेतों में सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस पंप की कुल लागत का 30% केंद्र सरकार और 45% राज्य सरकार देती है। किसान को केवल अपनी तरफ से 25% राशि का भुगतान करना होता है। किसान अपनी जरूरत के अनुसार 3 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक के सौर ऊर्जा पंप लगा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने वाले जींद के गांव रदाना के प्रगतिशील किसान दलबीर चहल ने बताया।
1: प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जो है सोलर पंप हमने लिया था गवर्नमेंट की तरफ से करीब 3-4 साल पहले। बहुत अच्छी योजना है। तो जो सोलर पंप है ये किसानों के लिए एक वरदान है, ना किसी प्रकार का कोई प्रदूषण है और करीब करीब 12 घंटे हमें सुविधा मिलती है। हमें दिन में पानी मिलता है, रात को लाइट कभी आती है कभी नहीं आती, ये भी काफी परेशानी थी और कट वगैरह होते थे। सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप सोलर पंप का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें।
0: प्यूत करनाल असंध टोल प्लाजा पर बीटेक छात्र योगराज पर 26 मई की रात हुए जानलेवा हमले के मामले में निसिंग थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में टोल प्लाजा पर तैनात लगभग 10 कर्मचारियों द्वारा छात्र पर बेरहमी से हमला किए जाने का आरोप है। पीड़ित पक्ष के अनुसार छात्र योगराज अपने साथियों के साथ वाहन में सवार था। वाहन स्थानीय टोल फ्री श्रेणी में आता था। आरोप है कि टोल प्लाजा पर बिना वर्दी और बिना नेम प्लेट ड्यूटी कर रहे कुछ युवकों ने ईंटों, डंडों और लोहे के रॉड से हमला कर छात्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद घायल छात्र को पहले करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। छात्र की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा 30 मई को प्रदेश भर में दूसरी हेरिटेज एंड सिटी वॉक का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य युवाओं, विद्यार्थियों और महिलाओं को प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से जोड़ना है। हरियाणा पर्यटन निगम के सहायक महाप्रबंधक हरविंदर यादव ने बताया कि आओ चलें अपनी विरासत के साथ अभियान के तहत सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 7 प्रमुख स्थलों पर वॉक आयोजित होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
2: नौका छिपी करती पर्वत करते पर्वत ऐसे प्रतीत होते हैं मानो धुंध की घूंघट में खूबसूरत हुस्न शर्माते हुए अपने पर इतरा रहा हो। इबारत इन गर्मियों में सैलानियों और प्रेमियों के दिल को सुकून और शीतलता प्रदान करती है, यानी आज की इबारत के बारे में इन्होंने लिखा है और बेकरारी से इस सफर का इंतजार भी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो ये गद्य है इबारत से पहाड़ों के हुस्न के साथ साथ परदेसी के की बात जो है इस पर है, परिदृश्य के प्रणयात्मक भावनाओं वाले माहौल का एक अच्छा चित्रण खींचा गया है और इस दृष्टिकोण से ये इबारत इस ग्रीष्म ऋतु के सुख का चित्रण करते रहने में सक्षम है, किंतु वे परदेसी जो परदेश जाने में असमर्थ हैं उनके लिए तो एक उपहार है ये गद्य, किंतु जो असमर्थ हैं उनके लिए अपनी सुरीली धड़कन के सुरीले धुन वाले गीत ही कुछ एक घंटे के लिए इस ग्रीष्म ऋतु में शीतल बयार तो जरूर बहाएंगे। और भी इन्होंने कुछ कुछ बातें लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश बर्फीले पहाड़ों के हुस्न की बात करते हुए जहां पर्वतीय गांव के लोगों की सादगी और चेहरे की मुस्कान को उजागर करते हैं, साथ ही में इस गांव की खूबसूरती और वहां आने वाले प्रवासी परदेसी को मिलने वाली ताजगी भरे मौसम को महसूस करने की बात भी कर रहा है। ऐसी ताजगी की अनुभूति हाल ही में खुद मुझे हुई जब पिछले हफ्ते नैनीताल की वादियों में घूमने गया था और पहाड़ों जंगलों घुमावदार रास्ते के बेहतरीन नजारा देखकर मन सुकून से भर गया। तो ये तो बताइए कि ये जो रास्ते हैं या ये जो वादियां हैं जहां आप सभी घूमने जाते हैं, हमारे बहुत सारे श्रोता घूमने जाते हैं, तो इनमें बड़े छोटे छोटे से गांव होते हैं श्रोताओं, जो पर्वतों की जो जगह हैं वहां पर स्थित होते हैं, निपथ में या कह सकते हैं थोड़ा पीछे की तरफ होते हैं। तो ऐसे कोई गांव जहां आप घूमने गए जो कुछ खास था उसके बारे में आप हमें लिख सकते हैं ज़रूर, और आपको बताना है कि गीतकार और संगीतकार इस गीत में कौन थे जो गीत अभी आपने सुना, और इस गीत में आपको ये बताना है कि ये वृक्ष जो हैं वो कौन से हैं।

विश्वजीत और आशा पारेख पर फिल्माया गया ये गीत था मेरे सनम फिल्म का। मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूर सुल्तानपुरी के बोल थे, उपेन अय्यर का संगीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने पिछले गीत के लिए लिखा है कि गीत और संगीत रविंद्र जैन के थे। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि गर्मियों का ये मौसम चाहे कितना भी तपन से भरा हो, मगर हम सबके मन में कभी न कभी बचपन की वो गर्मियां बसी रहती हैं। इन भरी गर्मियों में पहाड़ का हुस्न देखा है कभी, जब सारी दुनिया सूरज के ताप से हैरान परेशान होती रहती है, वो अपनी जगह पर अडिग अचल खड़ा रहता है। यही हुस्न है पहाड़ों का, इसमें बड़ी गहराई छुपी है। खेत में फसलों के बीच बनी पगडंडी से लगा गांव और वहां के लोगों की सादगी, सब कुछ मनमोहक स्मृति का वो छोटा सा आंचल जहां पहाड़ है, गांव है और कुछ ऐसी ही बातों की यादों में आज भी मन डूबा रहता है किसी परदेसी की याद में। जी हाँ, ऐसा तो है श्रोताओं। और जब आपने इन जगहों की बात की है तो एक बात आप जरूर बताएं कि क्या पहाड़ों की सैर जरूरी है या फिर कहीं कभी कभी घूमना फिरना जरूरी है? अगर है तो क्यों है? और आज के कार्यक्रम में जो गीत हमने सजाए हैं उसमें एक बड़े प्यारे से एक गीत है, उसमें बड़े प्यारे से एक गांव का नाम आता है जो सर्द वादियों में है। तो उस गांव को अगर आप पहचान सकें तो क्या ही बात है। और आपको बताना है कि ये जो गीत आपको हम सुनवा रहे हैं इसमें एक खास तरह की नाव है, कश्मीर में इसे क्या कहते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि प्रकृति का सानिध्य, हरी भरी पहाड़ियां और वहां का सादगी भरा मासूम सा मोहक लोक जीवन, उन लोगों की छोटी छोटी वाजिब इच्छाएं, मनोकामनाएं, मेहमान नवाजी करते करते प्यार में पूरी तरह समर्पित हो जाना, परदेसियों से दिल के रिश्ते जोड़ लेना, ऐसी दिलकश बातों का सुंदर वर्णन इस परिच्छेद में किया गया है जो इन गांव के लोगों की तरह मन को मोह लेता है। तो आपका मन किसने मोह लिया श्रोताओं, जब आप गए ऐसे किसी जगह पर घूमने के लिए? और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि रेडियो की हर शय का इतना ही फसाना है, एक विविध भारती सुनना है, दूसरों को सुनाना है।

ऐसा बिहारी के बोल ओपी नैयर का संगीत काश्मीर की कली फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। ये जो छोटी सी नाव दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं, श्रोताओ हमने आपसे पूछा कि इस नाव को क्या कहते हैं, क्योंकि कश्मीर की बोलचाल की भाषा में इस नाव को कुछ अलग ही कहते हैं, यह आपको बताना है। और कश्मीर के बड़े सारे सुंदर सुंदर जो चीजें होती हैं, बहुत सारी जो हाथ की बुनी हुई होती हैं, क्या आपने उनमें से कोई चीज खरीदी है, या ऐसी जगहों का यानी पहाड़ी अंचलों का कोई मेला आपने देखा है। कुछ एक यहाँ के पारंपरिक पहनावे होते हैं, जैसे केदारनाथ की सुंदर घाटियों की अगर हम बात करें तो वहाँ कुछ गांवों में लवा पगड़ू या फिर ट्रेडिशनल ज्वेलरीज की अगर बात करें तो बुलाक गुलबंद, तो इस तरह की कोई चीज़ क्या आपने इन जगहों से कभी खरीदी है। वैसे हमें खरीदना तो ज़रूर चाहिए क्योंकि ये चीज़ें हाथ से बनी हुई होती हैं, और इन चीज़ों को ख़रीदने से हमारे दिल को एक खुशी तो मिलती ही है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को जो रोज़गार है वो भी मिलता है, क्योंकि ये चीज़ें बनाना इनका एक घर का कह सकते हैं कि पारंपरिक रिवाज सा हो जाता है, जो इनका इनके जीविकोपार्जन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक श्रोता लिखती हैं कि आज मौसम पहाड़ों चांद रास्ते पर देसी बर्फीले आदि शब्दों की झड़ी लगने वाली है, और कुछ गीत भी इन्होंने सुझाए हैं बताए हैं। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि पहाड़ की प्रकृति की सबसे सुंदर कृतियों में से एक है ऊंचे ऊंचे पर्वत, वहाँ की हरियाली, झरने, बर्फ से ढकी चोटियाँ और शुद्ध हवा मन को शांति और आनंद देती हैं। पहाड़ों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का भी सौंदर्य अद्भुत होता है। जलवायु संतुलन में भी पहाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है, अधिकतर नदियाँ पहाड़ों से ही निकलती हैं, पर्यटन के लिए भी पहाड़ों का बहुत महत्व है। भाग दौड़ वाली जिंदगी से दूर सुकून के दो पल पहाड़ों के संग हमें रिचार्ज कर देते हैं, ये बिल्कुल सही है श्रोताओ। और वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे खेल भी होते हैं जिनमें हम अक्सर भाग लिया करते हैं, तो ऐसे खेल भी क्या आपने खेले हैं तो आप बता सकते हैं। स्की वगैरह जो होता है वो पहाड़ों का बड़ा ही प्रसिद्ध खेल है, और कुछ एक बाग बगीचे होते हैं जो बड़े सुंदर होते हैं, जहाँ फूल बहुत ही अलग तरीके के होते हैं, तो वो भी आपने देखे हैं तो वो आप हमें लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, प्रकृति के नैसर्गिक रूपों का स्वाद चखना हो तो एक याद के रूप में संजोना चाहते हैं आप अगर, तो आम शहरी जिंदगी से बाहर निकल किसी भी पहाड़ पर सैर करना चाहिए। पहाड़ों पर कहीं आपको बर्फ की गिरते फाहों की ठंडक मिलेगी, शुद्ध हवा जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्तों से एक भीनी सी खुशबू लिए आपको ऐसी शीतलता प्रदान करती है, मन मस्ती से झूमने लगता है। तो आप ये बताइए कि जब आपने पेड़ों की बात करी है तो ये ठंडे प्रदेश यानी अगर खास हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ एक बड़ा ही सुंदर सा पेड़ होता है जिसके पत्ते बड़े मशहूर हैं, क्योंकि ये पत्ते मौसम के हिसाब से रंग बदलते हैं श्रोताओ। तो इन पत्तों के बारे में बताइए। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने शिकारा लिखा है जो कश्मीर की खास नाव है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि गर्मियों में ठंडे और बर्फीले पहाड़ की सैर मानसिक शांति और सुकून के लिए बेहतरीन होती है, ताज़ी हवा, चांदनी रातें, परदेसियों से मिलना, मनमोहक दृश्य।

और एक और श्रोता लिखते हैं कि इस तपती हुई गर्मी में पहाड़ पर जाना बहुत अच्छा लगता है। एक और भी श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं, श्रोताओं हम शामिल करने की कोशिश करेंगे एक के बाद एक। आप यहाँ की फोटोग्राफी के बारे में कुछ अगर बताना चाहें तो ज़रूर बता सकते हैं।

संजय खान और साधना नजर आते हैं और ये सेब का बगीचा है श्रोताओ, बड़ा ही सुंदर। और आप एक सवाल का अगर जवाब दे सकें कि कश्मीर में किस चीज की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो इस सवाल का जवाब आपको देना है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बाजारों में चहल पहल बढ़ते ही रौनक दुगनी हो जाती है। जी हाँ, इन जगहों के जो बाजार होते हैं श्रोताओं, वो बहुत अलग होते हैं। दूर दराज से आए सैलानी यहाँ की बनी हाथ की कलाकृतियाँ, गर्म शॉल और मीठे पहाड़ी सेब बड़े चाव से खरीदते हैं। हर मोड़ पर मुस्कुराते चेहरे और उनकी मेहमान नवाजी अजनबियों को भी अपना बना लेती है। शाम ढलते ही जब पहाड़ों पर दीयों की तरह रोशनी जगमगाती है, तो एक सुहाना रूहानी जुड़ाव महसूस होता है। मुसाफिर यहाँ की अनमोल यादें और कभी न टूटने वाला स्नेह अपने दिल में समेट कर अगले साल फिर लौटने की कसम खाकर विदा लेते हैं। एक श्रोता और लिखते हैं कि पहाड़ों पर यही मौसम सबसे ज़्यादा सुकून देता है, जो सर्दी का मौसम सा होता है वो। पहाड़ों पर शोरगुल बिल्कुल थम सा जाता है, आवाज़ आती है तो सिर्फ हवा, नदी के बहते पानी और कलरव करते पक्षियों की। पहाड़ी जीवन शैली सादगी में स्थिरता को सबक देती है। पहाड़ हमें बुलाते ही नहीं, वो पुकारते हैं। जो एक बार चला जाए वो बार बार वहाँ जाना चाहता है। बहुत सारे गीत भी इन्होंने लिखे हैं। और एक श्रोता लिखती हैं कि हिमालय की पीर पंजाल की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां हो या अरावली की शांत प्राचीन पर्वतमालाएं, हर पहाड़ अपने भीतर अलग कहानी, अलग सुकून और अलग संगीत समेटे हुए है। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों की सुंदरता अपने चरम पर होती है। बर्फ की चादर हटने के बाद हरी भरी वादियां, ठंडी और ताज़ा हवाएं और रास्तों पर पसरा सन्नाटा मन को असीम सुकून देता है। जब सुबह के समय पहाड़ों से धुंध का पर्दा हटता है, तो ढलानों पर बसे छोटे छोटे गांव और चमकती हुई बर्फीली चोटियां किसी जादुई सपने जैसी दिखाई देती हैं। यहाँ की सादगी, प्रकृति वैभव और पहाड़ों का शांत वातावरण मन मोह लेता है। पर्वत केवल धरती का श्रृंगार नहीं, बल्कि भावनाओं का वो संसार है जहाँ हर परदेसी अपना एक हिस्सा छोड़ आता है। आपने पीर पंजाल की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी बात करी है, तो लीजिए वहीं का गीत सुनिए।

महबूबा फिल्म का ये गीत था राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया है। श्रोताओं, आपने क्या इस गांव को देखा है? क्या ये गांव जिसका जिक्र हो रहा है वो सचमुच है हमारे देश में? अगर आप गए हैं या फिर अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं। और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको ऐसी जगहों पर फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, तो ये भी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन फोटोग्राफी में बहुत सारी सावधानियां भी होनी चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है, आज की इमारत में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फीली चादरों में सिमटी बर्फ की चादरें और हसीन वादियों पर फिल्माए गए गीतों को सुनकर इस तपती हुई गर्मी में मन को ठंडक पहुंचेगी। बर्फीले पहाड़ों में छिपी प्राकृतिक सुंदरता निश्चित रूप से मन को गहरा सुकून और शांति देती है। श्वेत बर्फ, साफ नीले आसमान और पहाड़ों के ऊपर से बहते झरनों का दृश्य और ठंडी हवाओं का झोंका शारीरिक और मानसिक थकान को स्वतही दूर कर देता है। और एक और श्रोता लिखते हैं, अब पहाड़ों पर गर्मी के मौसम में बर्फ का अभाव सा है। वहाँ अब ग्लोबल वार्मिंग से पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है और पर्वतीय क्षेत्रों के तापमान जो हैं वो ज़्यादा, इन्होंने कुछ लिखे हुए हैं। जी हाँ, इस बात का भी हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम ऐसी जगहों पर घूमने जाएं तो यहाँ की सुंदरता को बिल्कुल बरकरार रखें। और ये तभी हो सकता है जब हम प्रकृति के साथ साथ चलें। और जिस गाँव का जिक्र है, वो गाँव जो गीत हमने आपको सुनाया, उस गांव के बारे में आपको लिखना है कि क्या ये गांव सचमुच अस्तित्व में है। ये कौन सा गांव है जिसके बारे में गीत में बातें की जा रही थीं? पहाड़ों की रानी किस शहर को कहते हैं श्रोताओं?

गीतकार आप बता दें इस गीत के, प्रोफेसर फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत के शब्दों से जो गीत उभर कर आ रहे हैं उन्हें हमारे कई बंधुओं ने अपनी सूची में शामिल किया है। जिक्र जब पहाड़ों का हो तो मैं खुद ब खुद शामिल हो जाता हूँ। मुझे पहाड़ों पर जाना, वहाँ घूमना, वहाँ के लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। इस क्रम में मैंने भारत के सभी पहाड़ी पर्यटन स्थल का दौरा किया है और अपनी पसंद के हिसाब से अगर नामांकन करूं तो पहलगांव, शिलांग और खजियार, बहुत सारी जगहों का इन्होंने जिक्र किया है। तो ऐसी जगहों पर जब आप जाते हैं तो आपको कौन सी बातें बहुत अच्छी लगती हैं श्रोताओं, या कोई यादगार चीज़ जो आपके साथ रह गई? कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं तो कुछ एक लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ताउम्र याद रहते हैं, तो ऐसा कोई आपके साथ वाकया हो तो आप ज़रूर बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सफ़र में पहाड़ों के बीच सुकून भरे वातावरण में मधुर गीतों के साथ चलने की तैयारी है और इन्होंने अपने अनुमान के हिसाब से बहुत सारे गीतों को लिखा है, तो देखते हैं कि और कौन से गीत आज शामिल होते हैं। वैसे ये गीत जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उस गीत का जो पिक्चराइजेशन है श्रोताओं, वो एक देश है वहाँ के बड़े ही पारंपरिक और प्राचीन बाजार का है। क्या आप कभी यहाँ गए हैं? क्या आपने इस बाजार को कभी देखा है, कभी कुछ खरीदा है?

हरे रामा हरे कृष्णा, इस फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ों में। और ये हमने पूछा था कि इसकी शूटिंग कहाँ की है श्रोताओं, तो ये भक्तपुर दरबार स्क्वायर है जो वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। और ये जो जगह है ये काठमांडू नेपाल में है। तो क्या आप यहाँ गए हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ की जो पारंपरिक चीज़ें हैं, यहाँ हाथ से बुनी हुई चीज़ों की बात अगर हम करें, या फिर वुड कार्विंग्स यानी कि जो लकड़ी के सामान होते हैं जिनमें नक्काशी की जाती है, जैसे कश्मीर में अखरोट की लकड़ी से अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, पॉटरीज भी यहाँ की जो है वो बहुत बिकती है, और भी खाने पीने की चीज़ों के लिए भी ये जगह बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या आप इस जगह गए हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजें। और ऐसे कुछ एक शहर हमारे देश में भी, कुछ एक नहीं बल्कि बहुत सारे शहर हैं। और अगर हम बात करें शिमले की बात करें, या फिर हम बात करें मसूरी की बात करें, कश्मीर की बात करें, या फिर हम केदारनाथ की घाटियों की बात करें, तो ऐसी जगहों के बारे में भी आप अपनी बातें हमसे बता सकते हैं। टॉय ट्रेन का सफर क्या आपने किया है हमें बताएं।

सुजीत कुमार और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे आराधना फिल्म से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 3 साल पहले जब कोंकण से वापस आ रहे थे तब ट्रेवलर फोड़ा घाट से आ रही थी, बीच में रुकी, सब बाहर निकले, हाय वो क्या नज़ारा था, बेमिसाल हरा भरा हुस्न सह्याद्री का वो पहाड़, उस पे वो बड़े बड़े पेड़, नीचे गहरी खाई। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पहाड़ों नदी पर जब जाते हैं, घर से खाना लेकर जाते हैं, ये सब एक साथ मिलकर खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है और वहाँ की शीतलता मन को सुकून पहुँचाती है। ऐसी यादगार यात्राएं हमेशा याद रहती हैं। श्रोताओं, हमने आपसे चंबा नाम के गांव के बारे में पूछा था और उसके बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है। ये गांव पीर पंजाल की जो पर्वत श्रेणी है उसके बीच बसा हुआ है, बड़ा ही सुंदर सा गाँव है और महबूबा फिल्म की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मसूरी को कहते हैं पहाड़ों की रानी, दूसरे चंबे का गांव भी है। वैसे चंबा घाटी में बहुत से छोटे छोटे गांव हैं लेकिन गाने में जिस गांव की बात है वो बड़े ही दुर्गम क्षेत्र में है। एक और श्रोता ने लिखा है कि शीतल शीतल पवन झकोरे, हरे भरे ऊंचे जो पेड़ों से सजी पहाड़ों की ऊंची चोटियां, उनसे लिपटा उदक से पानी से यानी कि भरे काले बादल का मंडल, ये सुंदर दृश्य देखा है नीलगिरी पर्वत के उत्कमंड नगरी में, जी हाँ दो डब्बा बेटा शिखर का, जिसने हमेशा के लिए मेरे मन को मोह लिया है।

आप कलाकार बता दें श्रोताओ, और मेरी सनम फिल्म का जो सवाल हमने आपसे पूछा था, वो गीत में जो किनारे वृक्ष दिखाई देते हैं देवदार के हैं, ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है।

ये रात फिर ना आएगी सुनका गीत था विश्वजीत और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं संपन्न होता है।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. President Draupadi Murmu urges police forces to be more citizen-centric and sensitive towards vulnerable sections. Education Minister Dharmendra Pradhan assures resolution of all grievances of students regarding discrepancies in CBSE Class 12 examination evaluation process. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah announces resignation. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar set to take over. Fragile ceasefire between US and Iran under strain as both sides exchange fresh strikes near the strategically vital Strait of Hormuz. Eid ul-Azha, festival of sacrifice, being celebrated with religious fervor across the country. And in badminton, PV Sindhu and Lakshya Sen storm into singles quarterfinals of Singapore Open. President Draupadi Murmu today urged the police force to become more citizen-centric and sensitive while dealing with vulnerable sections, especially women, the poor and children. President Murmu was speaking after conferring the prestigious President's Police Colour on the Sikkim police during Alankaran parade held in Gangtok this morning. She appreciated the role of the Sikkim police in maintaining law and order and in disaster management.
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम ऑनलाइन फ्रॉड हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में
0: Meanwhile, Sikkim has been officially declared a fully literate state under the ULLAS, Understanding of Lifelong Learning for All in Society initiative. The announcement was made during the convocation ceremony of Sikkim University in Gangtok yesterday in the presence of President Murmu. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today assured resolution of all grievances of students regarding discrepancies and technical glitches in CBSE Class 12 examination evaluation process and its newly introduced on-screen marking OSM system. Mr. Pradhan said the OSM system is a progressive instrument aimed at ensuring greater transparency. He was speaking to media after holding a meeting with CBSE officials in New Delhi. The minister said officials will ensure that no student query is left unresolved and accountability is maintained at all levels.
2: बच्चों को transparently अपने mark के बारे में जानकारी मिले.
3: Children should receive transparent information about their marks. Through scan copies, the answer sheets should reach them transparently. This is a provision under the OSM system. For the first time in the country, CBSE has implemented this system. Some discrepancies have come to notice in it. I take responsibility for this and it will be corrected properly. We will make sure that no genuine query raised by any student remains unanswered.
0: The National Testing Agency NTA has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate CUET-UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. As per the NTA, examinations will now be conducted on the 31st of this month and the 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid ul-Azha. NTA said admit cards for candidates appearing for the test on Sunday have been released and they can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. The admit card for the remaining candidates, whose examination is being scheduled on the 6th and 7th of next month, will be released soon. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said the country has ample food stocks due to relentless efforts of the country's hard-working farmers. Mr. Chauhan was speaking at the inaugural ceremony of the two-day national conference on agriculture for Kharif campaign 2026 in New Delhi today. The minister highlighted that the estimated food grain production in the country this year is over 376 million tons, which is 5.3% higher than last year. The minister also said the two-day event will help in setting a roadmap for the welfare of the Kharif agriculture sector. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Spanish counterpart, Jose Manuel Alvarez, on the sidelines of the informal meeting of the EU Foreign Affairs Ministers, Gymnich, in Cyprus today. In a social media post, Dr. Jaishankar said the meeting involved discussions on the next steps for trade, technology, defence and people-to-people ties between India and Spain. Dr. Jaishankar also appreciated Mr. Alvarez's views on ongoing global and regional developments. The External Affairs Minister reached Cyprus today to take part in the meeting. India and China have reviewed the situation in border areas and expressed satisfaction with the progress made in maintaining peace and tranquility. The two countries reviewed the situation during the 35th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs, which was held in Beijing yesterday. The Ministry of External Affairs said the discussions were constructive and forward-looking. The two sides discussed issues pertaining to delimitation, border management, mechanism building and cross-border cooperation. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has announced his resignation from the post. He will submit his resignation this afternoon. State Parliamentary Affairs Minister H.K. Patil informed about Mr. Siddaramaiah's decision after attending the breakfast meeting hosted by Mr. Siddaramaiah for his cabinet colleagues at the Chief Minister's residence today. Mr. Patil said the move came following directions from the Congress High Command. He also announced that Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar will take over as the new Chief Minister. Mr. D.K. Shivakumar was also present in the meeting. More from our correspondent.
4: The symbolic hug by Siddaramaiah and D.K. Shivakumar during the breakfast meeting today said it all. It drew curtain on the speculation about the resignation by Siddaramaiah. Chief Minister Office has informed that Siddaramaiah will go to Lok Bhavan at 2:30 p.m. today and address media persons at 3 p.m. In the absence of Governor, who is on tour, the resignation will be handed over to the Secretary. The longest serving Chief Minister, including a full 5 years term from 2013-18 and 3 years in this second term since May 2023, Siddaramaiah will hand over reins to D.K. Shivakumar finally for a remaining period of 2 years. Swearing in and cabinet reshuffle remains to be decided now. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
0: The Bharatiya Janata Party today announced the appointment of new state unit presidents for three states and national capital Delhi. BJP National President Nitin Naveen has appointed East Delhi MP and Union Minister Harsh Malhotra as the party's Delhi Unit President. Dr. Archana Gupta has been appointed as Haryana BJP Chief, and Keval Singh Dhillon will be the new President of the Punjab BJP. Abhishek Dev Roy has been appointed as Tripura BJP President. The West Bengal government has intensified measures against illegal infiltration under its Detect, Delete, Deport policy. Our correspondent reports that infiltrators are being detained and deported to Bangladesh after completion of legal formalities. Officials said around 50 Bangladeshi nationals were reported at the Hakimpur checkpost in Swarupnagar of North 24 Barganas today, seeking to return home. Around 350 people are currently housed in three holding centres in the area awaiting deportation. Security and surveillance have also been strengthened in border areas to check illegal infiltration. In Bihar, 8 people were killed across the state following a wave of severe thunderstorms, lightning strikes and hailstorms. Chief Minister Samrat Chaudhary announced ex gratia compensation of 4 lakh rupees each to the next of kin of the deceased. Meanwhile, the Indian Meteorological Department, IMD, has issued red alert for severe heat wave conditions over eastern Madhya Pradesh and Vidarbha today. Heat wave conditions are also expected over Delhi, Chandigarh, Rajasthan, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Konkan, Goa, Odisha, Punjab, Telangana and Uttar Pradesh today. The Met Department further predicted heavy rainfall over parts of northeast India, Bihar, Tamil Nadu and Puducherry for the day. Today is the birth anniversary of great nationalist and freedom fighter Vinayak Damodar Savarkar, popularly called Veer Savarkar. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah remembered the great leader on the occasion. Prime Minister Modi in his message said the courage and patriotism of Veer Savarkar will always inspire people. Home Minister said, a fearless warrior of the freedom struggle, Veer Savarkar dedicated his entire life to the service of the motherland. The festival of sacrifice, Eid ul-Adha or Bakrid, is being celebrated with religious fervor and gaiety in various parts of the country today. People offered prayers in Eidgahs and mosques this morning. Later, they exchanged Eid greetings. Eid ul-Adha is celebrated to commemorate the willingness of Prophet Ibrahim to sacrifice his only son in obedience of God's command. In the national capital, main congregations were held at Jama Masjid, Fatehpuri Mosque and Shahi Eidgah. Reports of Eid prayer congregations are also pouring in from other parts of the country. Elaborate security arrangements have been made for the occasion. In West Bengal, lakhs of devotees offering prayers at mosques and Eidgahs. Our correspondent has the details.
5: In Kolkata, the Eid prayers were held at the Brigade Parade Ground instead of the traditional Red Road. At the historic Nakhoda Mosque, prayers were conducted in two sessions, ensuring roads remained clear. The state government has strictly enforced the old Calcutta High Court directive, urging peace and discipline during the festivities. Millions gathered at more than 5,000 mosques and prayer grounds in Murshidabad. In Malda, the state's second largest congregation took place at Sujapur's Noy Mauja Eidgah. Large gatherings were also reported in Nodia, North 24 Parganas and South 24 Parganas, with women joining prayers in many locations.
6: Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
0: Cities across Madhya Pradesh are celebrating Eid ul-Adha today in a peaceful and joyful atmosphere. We have a report.
7: In Bhopal, thousands gathered at the historic Tajul Masjid for special prayers. The Imam prayed for unity, brotherhood and progress in the country. A heartwarming scene came from Indore. Following a 50-year-old tradition, a Hindu family welcomed the city Qazi with a garland of flowers. They then took him to the Eidgah in a decorated carriage. In Gwalior, people from other faiths also gathered outside mosques to greet the Muslim community. Meanwhile, the Madhya Pradesh Waqf Board has issued important guidelines for the animal sacrifice. People have been asked not to post photos or videos of the sacrifice on social media so that the communal harmony is preserved. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
0: President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi greeted the people on the occasion. The fragile ceasefire between the United States and Iran has come under severe strain after both sides exchanged military strikes near the strategically important Strait of Hormuz. The U.S. military said it shot down four Iranian attack drones and struck a drone control station in Bandar Abbas. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps confirmed the strikes and said it retaliated by targeting an American military base as Kuwait, a U.S. ally said. Earlier it was responding to hostile missile and drone attacks. In badminton, India enjoyed an impressive day at the Singapore Open today with Lakshya Sen, PV Sindhu, the men's doubles pair of Chirag Shetty and Satvik Sairaj Ranki Reddy, and the mixed doubles duo of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto all advancing to the quarterfinals. Sindhu defeated Japan's Riko Gunji in pre-quarterfinals of the women's singles round of 16. Lakshya sailed into the last eight after Thailand's world number 2 Kunlavut Vidithsarn retired hurt just moments into their round of 16 clash. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu urges police forces to be more citizen-centric and sensitive towards vulnerable sections. Education Minister Dharmendra Pradhan assures resolution of all grievances of students regarding discrepancies in CBSE Class 12 examination evaluation process. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah announces resignation. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar set to take over. Fragile ceasefire between US and Iran under strain as both sides exchange fresh strikes near the strategically vital Strait of Hormuz. And in badminton, PV Sindhu and Lakshya Sen storm into singles quarterfinals of Singapore Open. With that, we end the midday news.
8: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
8: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
8: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
9: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
8: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
10: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
8: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
11: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
8: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
12: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में

0: और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के युगल स्वरों में शागिर्द फिल्म का गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में लाड साहब फिल्म का ये गीत था हसरत जयपुरी का लिखा तर्ज थी शंकर जयकिशन की।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: फिल्म औरत में आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला रफी ने। श्रोताओं, सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन जवान।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। आरती आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सोनाली आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: और आरती कैसी हैं आप?
1: बस ठीक है, गर्मी में जितना ठीक हो सकते उतना ही ठीक है क्योंकि जो धूप के हाल है गर्मी के हाल है ना, बस पूछिए मत।
0: नहीं पर हम अगर गर्मी की बातें करते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है।
1: हाँ ये बात भी है,
0: इसलिए हमें ना गर्मी की बात ही नहीं करना है, बस
1: सोचना ही नहीं है कि गर्मी है। अरे बिल्कुल गर्मी नहीं है
0: तभी तो हम खुश रह सकते हैं ना, क्योंकि खुश रहने के लिए हमें बस वजह ढूंढना चाहिए, है ना।
1: तो
0: है। क्योंकि खुशियों की वजह अगर हम ढूंढते हैं तो सचमुच जिंदगी हमारी बहुत खुश हो जाती है।
1: बिल्कुल, और मैं तो कहती हूँ वजह भी ढूंढने की क्या जरूरत है, बस हंसिए मुस्कुराइए खुशियां मनाइए,
0: बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनिए, विविध भारती सुनते रहिए, है ना। और आज के विषय बता दें।
1: आज के विषय है, हम बात करेंगे आज अपने बच्चों की जो झूठी झूठी प्रशंसा करते हैं उनके ऊपर। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत सभी लोग अक्सर करते हैं क्योंकि अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं तो वो आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप तो नहीं हैं या आप हैं तो आप भी कितनी मतलब इस चीज को करते हैं कि झूठी प्रशंसा करते हैं, कितना करते हैं, तो इसके बारे में आप बताइए। या कोई आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो, किसी पड़ोसी ने कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल दिया हो। और आज हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंदर किसके बारे में,
0: के चल्लमल नारियल अम्मा, उनकी बारे में हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है, इसमें हमें श्रोताओं से हम गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि गेमिंग का दलदल क्या है, इसमें आपके इर्द गिर्द के आसपास के लोग इस दलदल में क्या फंसे हुए हैं या आप इससे दूर है, इस विषय पर हमें लिखिए कमेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ श्रोताओं का सेगमेंट है ना।
1: और एक बात मैं आपको बता दूं सोनाली, इस दलदल में थोड़े से पहले मैं खुद भी फंसी
0: गई थी।
1: बिल्कुल, और मुझे ऐसा हो गया था ना कि मैं बस खेलती चली जा रही हूँ और एक लेवल दो लेवल मैंने कहा कि बस किसी तरह से अगले लेवल पहुंच जाऊं, फिर मैंने कहा ये मुझे हो क्या रहा है, मैं पूरे टाइम सिर्फ इसी को कर रही हूँ। तो ये चीज से आप बाहर निकले, तो इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से बाद में। और भी तो विषय है।
0: और आज एक खास दिन है आरती, ईद उल अजहा, यानी बकरीद भी है आज, तो उस बारे में भी हम बहुत सारे सखियों को श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और साथ ही उपयोगी टिप्स, ये बहुत जरूरी टिप्स है आज की,
1: ताकि हमारा नेट जो है वो एकदम चलता रहे और हम अपना आराम से विविध भारती बिना उसके रोक टोक के सुन सके आराम से। और साथ ही और भी अगर हम कुछ देखना चाह रहे हैं, कुछ मनोरंजन करना चाह रहे हैं तो कर सकें, तो उसके लिए जरूरी है वाईफाई, क्योंकि डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो वाईफाई होता है ना वो बहुत आराम से चलता है, पूरी फैमिली भी उससे कर सकती है, लाभ उठा सकती है। तो उसकी स्पीड अगर धीमी है तो हम कैसे उसको सही कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे।
0: और आप क्या करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: तो भाई
1: सच में बहुत महके हुए से यार, कभी देखो ना किसी को कि कोई अपने फ्रेंड है तो बहुत मुस्कुरा से रही, तो हमें पता चल जाता है कुछ तो राज उसने छुपा के रखा है। जैसे अभी मुझे लग रहा है सोनाली को देख के कि कुछ राज तो है, कि यानी वो पढ़ने वाली कोई कमेंट या कुछ बताने वाली है।
0: जी नहीं, आज हम सबसे पहले तो हमारे सभी सखियों को, श्रोताओं को बकरीद या ईद उल अजहा की हम
1: मुबारकबाद देते हैं।
0: जी, और ये जो इस्लाम का दूसरा सबसे प्रमुख और पवित्र त्यौहार है, जो पैगंबर हजरत इब्राहिम की अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है। ये त्यौहार इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये रमज़ान के ख़त्म होने के लगभग 70 दिन बाद आता है। ये चाँद के देखने पर निर्भर करता है, इसलिए देश और स्थान के अनुसार इसकी तारीख में थोड़ा अंतर हो सकता है।
1: जी बिल्कुल, और बकरीद के दिन सुबह ईदगाह या मस्जिदों में विशेष ईद की नमाज भी अदा की जाती है, और नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन घरों में खास तौर पर बिरयानी और अन्य लजीज पकवान बनाए जाते हैं, और गरीबों और जरूरतमंदों को दान या जकात देना इस त्यौहार का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।
0: तो सारे हम सखियों को, श्रोताओं को ईद की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। जी।

0: हाँ तो सुनाली कुछ सच में इतना बढ़िया लगता है ना गाना ये,
1: जब है ना जब कोई भी त्योहार हो तो अलग ही एक ना आनंद की अनुभूति होती है ना, फिर घर में सब लोग मिलते हैं और खुशियों की बरसात होती है। वैसे कुछ शख्सियत भी ऐसी होती है ना जिनके व्यवहार के कारण, जिनके कार्यों के कारण हमें ना हर बार एकदम खुश रहते हैं, हमें ना उनके काम
0: हमें एक प्रेरणा मिलती है। कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनके वजह से हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी कुछ आगे करने का सोचते हैं या हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें अपने लिए आगे क्या करना चाहिए, या हम ऐसे बैठे हैं तो हमें और कुछ हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टैलेंट को किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनमें से आज हम एक व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं।
1: जी
0: आज हम बात करेंगे
1: के चेलम्मल जी, जिनका जन्म 6 फरवरी 1957 को उनका हुआ था जन्म, और उनका नाम है श्रीमती चेलम्मल, जिन्होंने कक्षा 6 तक की पढ़ाई की और नारियल अम्मा के नाम से जो मशहूर है। और चेलम्मल दक्षिण अंडमान के रंगाचांग की रहने वाली है, और चेलम्मल 10 एकड़ जमीन पर एकदम अलग तरह से उन्होंने खेती की, जैविक तरह की उन्होंने खेती की।
0: बिल्कुल, और वो जैविक खेती के माध्यम से अनानास, केला, लौंग और अदरक की खेती करती हैं। इसके अलावा वो अपने बगीचे में अनोखे तरीके से नारियल की खेती करती हैं, जिसके कारण वो किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई और लोग उन्हें नारियल अम्मा कहने लगे।
1: और उन्होंने 150 से अधिक किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कई सरल तरीके निकाले जिससे नारियल की खेती बहुत आसानी से की जा सके, इसमें लागत भी कम आती है और पेड़ों को भी नुकसान से बचाया भी जा सकता है।
0: बिल्कुल, और उन्होंने नारियल और ताड़ के पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए सस्ते तरीके खोजे हैं। वो हमेशा दूसरे किसानों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए तैयार रहती हैं। उन्होंने आसपास के गांवों के 170 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है।
1: और कृषि कॉलेज और संस्थान अपने छात्रों को अध्ययन के लिए उनके खेत पर भेजते हैं जहाँ वे नारियल के पेड़ उगाती है। उन्हें दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, पान का पत्ता, रतालू, सुपारी, अदरक, हल्दी, पपीता, केला, चीकू, हेलिकोनिया फूल और गेंदा और बहुत सारी सब्जियों की फसलों को उगाकर उन्होंने अपनी आमदनी में भी बढ़ाई की।
0: बिल्कुल, कितने ज्यादा चीजों को उन्होंने, वो भी देखिए आज के समय में जब फसलों को इतना ज्यादा जब नुकसान पहुंचता है या इस रासायनिक चीजों से, उस समय वो जैविक खेती कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। और श्रीमती चेलम्मल ने नारियल को चूहों से होने वाले नुकसान पर काबू पाने के लिए नए उपाय विकसित किए। वो अपने खेत में जैविक कृषि तकनीकों को अपनाती हैं, साथ ही कीटों से फसलों को होने वाले रोगों और नुकसान से बचाव के लिए भी उन्होंने बहुत से कारगर उपाय विकसित किए जो बहुत काम के साबित हुए।
1: और चेलम्मल ने अपने खेत में हरित खाद और गोबर की खाद का उपयोग किया है, साथ ही वो परागण के लिए मधुमक्खी पालन करती है और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करती है। अंडमान में खेती करते हुए श्रीमती चेलम्मल ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है।
0: बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात है, वो मधुमक्खी जो जिसके बारे में कहा था कि बहुत जरूरी है ना इस पृथ्वी को जीवन को बचाए रखने के लिए, तो वो परागण के लिए बहुत सारी फसलों का परागण वो करती है मधुमक्खी, तो उसके लिए भी उन्होंने कितना किया, तो बहुत ज्यादा वो समझ लीजिए पर्यावरण की रक्षा की तरीके से एक तरह से। और लेकिन उनका अब जो खेत है वो लोगों के लिए कृषि और छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है। उनका खेत फसलों और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखते हुए बहुत अच्छी आय का साधन है। उन्होंने अंडमान में एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में एक अवसर देखा, इसलिए उन्होंने अपने खेत में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया है।
1: अब स्थानीय और पूरे देश के अलावा विदेशों से पर्यटक उनके खेत को देखने समझने आते हैं, और श्रीमती चेलम्मल को अब तक बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें केरल के नारियल विकास बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ नारियल किसान का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है।
0: बिल्कुल, और मसालों और फूलों की खेती के क्षेत्र में प्रगति के लिए इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड, साथ ही इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, ICAR और CIARI पोर्ट ब्लेयर द्वारा आयोजित किसान मेले में उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार भी मिला है।
1: और द्वीप पर्यटन महोत्सव 2014 के दौरान कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित फल फूल और सब्जी के लिए प्रथम पुरस्कार, और वर्ष 2016 में केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर की ओर से प्रगतिशील सर्वश्रेष्ठ कृषक का पुरस्कार भी आपको मिला है।
0: बिल्कुल, और उनके अनोखे जैविक कृषि तरीकों, नवाचार और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया।
1: और सचमुच ऐसी जब महिलाएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं तो हमें कितना इन्हें गर्व महसूस होता है कि हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और हमारी सरकार उन्हें पद्मश्री से सम्मानित।
0: पढ़ाई ना होने का रोना भी नहीं रोती है।
1: बिल्कुल,
0: पढ़ाई सिर्फ देखिए हमें एक डिग्री देती है और हमें थोड़ा हमारा ज्ञान हमारा विकसित करती है, लेकिन जो हमारे अंदर जो जो एक कला होती है ना, वो हर चीज को, वो जो कला होती है जो मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाए, तो वो कला को अपने निखारना चाहिए।
1: और अब एक संदेश सुन ले।
0: बिल्कुल,
2: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: तो आरती, हमारी अपना कार्यक्रम सखी सहेली, उसका जन्मदिन है, तो हमारे मन में भी बहुत खुशी है कि हम बहुत धूमधाम से पूरे श्रोताओं के संग, सखियों के संग ये हमारा जन्मदिन मनाएंगे। तो आप आ रही है ना?
0: बिल्कुल आ रहे हैं। आना ही है भाई, जन्मदिन मनाना है तो जश्न में शामिल तो होना ही है।
1: और हमारे बहुत सारे श्रोता है, हमारी सखिया वे भी आएंगे, पर इससे पहले हम एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो आंखों ही आंखों में हम पता कर लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है.
1: बिल्कुल, वो तो पता चल ही जाता है चेहरे को देख के.
0: कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, हाल ही में रिजल्ट आए बच्चों के, तो कुछ कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि भले उनके 57% हो तो कहेंगे कि हमारे बच्चों को 75% आए.
1: ये तो होता है, ये तो होता है.
0: और वो ये भी नहीं, वो उन्हें मालूम होता है कि कोई थोड़ी मार्क लिस्ट देखने आने वाला है, उन्हें तो नहीं मालूम पड़ेगा. पर देखिए एक झूठ के पीछे हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है. और क्या होता है ना, बच्चों को जब ये झूठ सुनने की आदत हो जाती है ना, तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी झूठी तारीफ हो. और फिर आगे चल के जब उन्हें आगे की दुनिया में जाके अगर किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो वे टूट कर बिखर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है ना असफलता का सामना करने की आदत ही नहीं होती है.
1: उन्हें उनको लगता है कि नहीं, अब हमारे साथ जब आप उनके सामने उनकी तारीफ कर देते हैं झूठी ना, तो उनको लगता नहीं कोई बात नहीं, हमारे अगर आवाज अच्छे नहीं आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरी मम्मी या मेरे जो परिवार वाले हैं वो कह ही देंगे, किसी ना किसी से कुछ तो कह ही देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. तो फिर वो उतनी मेहनत भी नहीं करते, वो अपनी पढ़ाई को लेकर उतना सीरियस भी नहीं होते, और फिर अपने वो खेल में उसी तरह से अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं. जबकि आप उन्हें जब समझाएं चीजें, वो चीजों को कि नहीं तुम्हें आगे अच्छा करना है, और वो जो जो चीज उनकी रिजल्ट है वही आप सबको बताएं, तो उनको लगेगा नहीं हमें अब आगे करना पड़ेगा कुछ.
0: एक हमारे साथी ने लिखा है, बच्चों की झूठी या बड़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है. इससे बच्चों में अहंकार आ जाता है, वे वास्तविक चुनौतियों का सामना करने से डरने लगती है, और माता पिता की विश्वसनीयता भी कम हो जाती है. बिना किसी खास वजह के तारीफ करने से बच्चे खुद को हर चीज में परफेक्ट समझने लगते हैं. जब वे असल दुनिया में असफल होते हैं तो गहरे

0: जरूरी नहीं है, उसका हमें निराशा भी नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और लेकिन उस चीज को लेके इतना ज्यादा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को आप कहें कि इस तरह से, तो बच्चे का जो मनोबल है ना वो जो उसकी ललक होती है वो कम हो जाती है। इसलिए एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बात अगर झूठी प्रशंसा की हो तब बच्चे तो क्या बड़ों की भी नहीं करनी चाहिए, और अरे विविध भारती की भी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, हालांकि वो हमें ऐसा मौका कभी देता नहीं कि हमें उसकी झूठी तारीफ करनी पड़े। तो झूठी प्रशंसा खासकर बच्चों की तो नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, इसलिए झूठी तारीफ के बजाय उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सच्ची सराहना करनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक फीडबैक देना चाहिए।
0: क्या बात है,
1: एक हमारे आगे कर सकें।
0: जी, एक हमारे साथी लिखते हैं, तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकती है, तुमसे अच्छा कोई नहीं। ऐसी बातें सुनकर बच्चा धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होने लगता है। जब बच्चे को बिना मेहनत के बार बार प्रशंसा मिलती है तो अपनी कमियों को समझ नहीं पाता। अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चों की तुलना कभी दूसरों से ना करे और ना ही झूठी प्रशंसा करके उन्हें भ्रम में रखे। सच्चाई, प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन ही बच्चे के अच्छे भविष्य की नींव बनते हैं। इसलिए बच्चों से प्रेम करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, लेकिन प्रशंसा हमेशा सच्ची और उचित होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है, इन्होंने बहुत बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं इसमें से। तो उन्होंने लिखा है कि बच्चों की झूठी ये अत्यधिक प्रशंसा उनके विकास के लिए हानिकारक हो सकती है, ये उन्हें आत्ममुग्ध बना सकती है, असफलता से डरने वाला बना सकती है और उनमें वास्तविक क्षमताओं के प्रति संदेह पैदा कर सकती है। सच्ची और विशिष्ट तारीफ जैसे कि मेहनत, प्रक्रिया या व्यवहार की, इनकी आप तारीफ करिए, उनके आत्मविश्वास और लचीलेपन की तारीफ करिए। झूठी प्रशंसा के जो जो दुष्प्रभाव है वो ये देखने को मिलते हैं कि वो बच्चा अहंकारी भी हो जाता है, आत्ममुग्ध भी हो जाता है, और साथ ही अनावश्यक तारीफ बच्चों को अपने साथियों से ज्यादा श्रेष्ठ महसूस कराती है, जिससे वो उनमें अहंकार पैदा हो जाता है और वो विफलता से डरने भी लगते हैं और उनमें लगता है कि मैं बेहतरीन हूँ, तो वो एक झूठ उनके अंदर आ जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है आरती कि अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा, वैसे देखा जाए तो मैं कभी अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा नहीं करती, लेकिन हाँ जब भी वे कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी दिल से तारीफ जरूर करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी बात सुनकर बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उन्हें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिलता है। मेरा मानना है कि बच्चों की सही समय पर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ बच्चों की हौसला जरूर होनी चाहिए, बस झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कुछ इस तरह की बात लिखते हैं, लिखते हैं कि तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरीके की चीजें वो उन्होंने लिखी हैं। और साथ ही बच्चों की एक और जो श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की झूठी प्रशंसा करना उनके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है और असफलता मिलने पर बच्चे जल्दी टूट जाते हैं, जोखिम लेने से डरने लगते हैं, वो नई चुनौतियां लेने से बचते हैं और उनको तारीफ की लत लग जाती है, वो केवल दूसरों को खुश करने के लिए काम करने लगते हैं और उनके अंदर सीखने की इच्छा खत्म होने लगती है, उन्हें लगता है कि वो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हें और मेहनत की जरूरत ही नहीं है। और परिणाम की बजाय अगर बच्चे की मेहनत की हम तारीफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि तुम बहुत अच्छे हो की बजाय कहें कि तुमने ये चित्र बहुत ध्यान से बनाया है, तो और साथ ही गलती होने पर उसे प्यार से सुधारने की प्रेरणा भी दें।
0: बहुत अच्छी बात। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपनी जान पहचान परिवार में देखा है कि जिसका बच्चा औसत दर्जे का छात्र है, बहुत मेहनती भी नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं, हर बच्चा अपना अपना व्यक्तित्व होता है, उसके गार्जियन अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा जब 12 तक अच्छे नंबर नहीं लाया तो मेहनत भी नहीं करना चाहता, तो क्यों उसे IAS IPS का ख्वाब दिखाया जाए। एक दिन कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया, पर भगवान का शुक्र है लड़का आज सही सलामत है और अपने साधारण सी नौकरी और जिंदगी में खुश है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि भाग्य चमत्कार कभी कभी ही होते हैं, सब चमत्कार एक साथ नहीं होते। ये भी सही बात कही है। और आरती, अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।

0: ब्रेक
1: सच
0: के
1: में।
0: बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली।
1: सच में सोनाली, जो बच्चों की अगर हम जब तारीफ करते हैं ना, तो उनकी अगर हम सकारात्मक तारीफ करें ना कि कहें कि ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है या बहुत मेहनत करता है, तो बजाय नंबर बताने की हम ये इस तरीके की अगर तारीफ करें तो बच्चे के अंदर भी सकारात्मक जो एक एनर्जी आती है वो आएगी
0: जी।
1: और वो भी सोचेगा कि नहीं, अब मुझे और मेहनत करनी है, है ना, और मेहनत करके आगे बढ़ना है, ना कि मुझे सिर्फ अब झूठी तारीफ पे रहना है। इसलिए बहुत जरूरी है।
0: और अब क्या करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: आरती सचमुच दिल की बात असली नकली चेहरा बता ही देता है। एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि बच्चों की तारीफ तो कीजिए परंतु उन्हें चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। अक्सर झूठी प्रशंसा करने से वे आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाते और आभासी दुनिया में जीते हैं। ये बहुत सही बात लिखी है ना।
1: और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की हर बात पर झूठी प्रशंसा करना सही नहीं होता क्योंकि इससे वो अपनी असली मेहनत और काबिलियत को समझ नहीं पाते। और मुझे लगता है कि जब हम बिना वजह हर काम की तारीफ करते हैं तो बच्चे धीरे धीरे सच और दिखावे का फर्क भूलने लगते हैं। सच्ची और सही प्रशंसा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है लेकिन झूठी प्रशंसा उन्हें केवल दूसरों की तारीफ पर निर्भर बना सकती है। इससे वो असफलता को स्वीकार करना भी मुश्किल समझने लगते हैं। और मेरे अनुसार बच्चों को उनकी मेहनत, ईमानदारी और कोशिशों के लिए सराहना मिलनी चाहिए कि सिर्फ खुश करने के लिए। इससे वो जीवन में सच्चाई, आत्मविश्वास और मेहनत की असली कीमत को समझ पाते हैं।
0: एक साथ लिखते हैं कि बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चे वास्तविकता से दूर हो सकते हैं और आलोचना को स्वीकार करने में असमर्थ हो सकते हैं। सच्ची और सही तारीफ करने के लिए उनके प्रयासों पर ध्यान दें ना कि उनके परिणामों पर। यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है, उनके लालन पालन में हमेशा सकारात्मक रवैये की जरूरत होती है जिससे कि वो प्रोत्साहित महसूस हो। बच्चों को जब माता पिता से प्रोत्साहन मिलता है तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वे एक कामयाब जीवन जीते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि वो प्रोत्साहन कैसा हो, जरूरी है कि प्रोत्साहन भी सही तरीके से किया जाए जिससे कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे और साथ में अपने मनपसंद क्षेत्र में भी सफलता पाए।
1: बिल्कुल,
0: यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी कि भैया अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा ना करें, जैसे हैं बच्चे, और उन्हें उनके बारे में बताए कि भाई हाँ इतने ही नंबर मिले हैं उन्हें
1: जी,
0: उसमें कोई भी बुराई नहीं है। देखिए ना, कभी ऐसा नहीं है कि
1: नंबरों से उनकी काबिलियत को आप नहीं बता सकते।
0: कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ लोगों को बहुत परीक्षा में कम नंबर मिलते हैं पर अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल, आप आइंस्टीन वगैरह इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक उनको देखिए। तो आप एक छोटा सा कमेंट उसको ले लेते हैं। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आप बच्चों की झूठी तारीफ करेंगे तो घर पर अगर कोई मेहमान आए तो उनके सामने बहुत लंबी लंबी फेंकेंगे कि हमारा बच्चा इतने नंबर लाता है, अरे ये तो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाया और इसके बहुत सारे दोस्त हैं, इससे अच्छे नंबर तो उसके स्कूल में कोई लाता ही नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी ऐसा मत कीजिए, ऐसा क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी आदत भी होती है, उनकी आदत भी यही होती है कि वो सोचते हैं कि हमारे माता पिता तो हमारी तारीफ कर ही देंगे, हम कुछ भी करें हम तो हमें तो बोलना नहीं है। तो इससे बच्चे की आदत बन जाती है, तो इससे जो बच्चा है ना वो बिल्कुल झूठ में जीने लगता है। तो इसलिए उनको कहने का मतलब है कि आप इसलिए बच्चों की जो झूठी तारीफ है वो मत करिए।
0: और है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना आरती कि वो बच्चा बहुत ज्यादा गेम में उलझा हुआ है तो भी है ना बहुत सारे घर के सदस्य जो होते हैं, मम्मियां होती है, पापा होते हैं, घर के लोग है ना छुपाते हैं कि नहीं नहीं नहीं वो तो पढ़ाई करता है, वो तो मोबाइल में लगा रहता है, तो टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, आजकल तो मोबाइल में देख के प्रोजेक्ट करना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जाने अनजाने में गेमिंग के दलदल में फंस जाते हैं। ये आज का युग जो है ना तकनीक और इंटरनेट का युग है, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम ने बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के जीवन में जगह बना ली है। मनोरंजन के साधनों में गेमिंग सबसे लोकप्रिय माध्यम है आरती, और थोड़ी देर का खेल मन को ताजगी देता है, पर लेकिन जब यही मनोरंजन आदत और फिर लत बन जाए तो ये गेमिंग का दलदल ये बन जाता है और इसमें व्यक्ति धीरे धीरे धीरे धीरे फंसता ही चला जाता है।
1: और इस गेमिंग की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जो बच्चे हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े क्राइम कर दिए इन गेमिंग में के चक्कर में फंस के। तो अपने माता पिता या किसी से रिश्ते में भी जो भी अपने हैं उनको भी वो नहीं समझते, सिर्फ गेम के अंदर इतने ज्यादा वो लग जाते हैं कि वो कितने बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं। और साथ ही बहुत बड़े अपने जो जो माँ बाप की जो कमाई होती है उसको भी गेम के चक्कर में, वो गेम खरीदने के चक्कर में वो भी पूरा गवा देते हैं।
0: यानी कहने का मतलब है कि वो ये जो दलदल है इसमें फंसने से हमने अपने बच्चों को बचाना है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि इस बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे दिन रात मोबाइल गेम्स में लगे रहते, पढ़ाई और बाकी जरूरी चीजों से उनका ध्यान हटता जा रहा है। मेरी बेटी ने अभी अभी 10वीं के एग्जाम दिए और उनकी छुट्टियां चल रही है। आजकल उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मम्मा मुझे गेमिंग वाला फोन चाहिए। सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि जो बच्चा अभी 11वीं में जाने वाला है उसे इस उम्र में गेमिंग के फोन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। फिर मुझे अपना समय याद आता है कि हमारे समय में तो मोबाइल दूर की बात थी, घर में सिर्फ लैंडलाइन फोन होता था। मेरे पिताजी तो इतना डांटते थे कि किसी से एक मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन आज के बच्चों की दुनिया ही बदल गई, उन्हें बस गेम खेलना है। तकनीक अच्छी है लेकिन उसका सही और सीमित उपयोग बहुत जरूरी होता है, वरना धीरे धीरे बच्चे गेमिंग की ऐसी आदत में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गेमिंग का दलदल ऐसा खतरनाक भंवर है जिसमें व्यक्ति चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। ये एक ऐसी स्थिति है जहां गेमिंग जो है वो मनोरंजन नहीं एक मानसिक बीमारी बन जाती है जो मकड़ी की जाल से भी बदतर जाल है। इसमें फंसने वाला अपने करियर, सेहत और पैसों से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। थोड़ा मुनाफा होने के बाद ज्यादा मुनाफे के लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद करने में देर नहीं लगता।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि गेमिंग के दलदल एक टाइप का नशा है, एक ऐसी स्थिति है जहां कोई व्यक्ति वीडियो गेम, मोबाइल गेम या ऑनलाइन गेम खेलने का इस हद तक आदि हो जाता है कि वो अपनी असल जिंदगी, पढ़ाई, नौकरी और सेहत को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगता है। ये दलदल की तरह इसलिए है क्योंकि शुरुआत में सिर्फ मनोरंजन लगता है लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति इसमें ऐसा फंसता जाता है कि चाहकर भी बाहर निकल पाता। सोशल मीडिया, समाचार पत्र में आए दिन ये खबरें पढ़ती हूँ कि ऐसा नहीं, कम पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे डिग्रीधारी सारे लोग इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं। और जब आप बुरी तरह से फंस जाते हैं तो उनका एक ही परिणाम होता है कि अपने को दुनिया से खत्म कर लेते हैं और उन्हें भुगतना पड़ता है कि परिवार को निराशा और पूरा परिवार जो है दुखी हो जाता है, ऐसा उन्होंने लिखा है।
1: बिल्कुल। और एक और जोश होता है हमारे, वो लिखते हैं कि जो गेमिंग का दलदल है उसमें जो यानी कि जो खेल कूद है और उसमें भी अरे ये गेम मतलब जो गेम है जो बाहर जब गेम खेलते हैं, जब आउटडोर गेम्स खेलते हैं घर के बाहर, तो वो गेम होते हैं उसको कहते हैं खेल, वो आपके शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ाते हैं और उसके लिए हमारे दिमाग के जो विकास होता है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। बल्कि जबकि गेमिंग जो होता है उसमें स्क्रीन पे पूरे समय देखते रहने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है और मानसिक विकास पे भी बुरा असर पड़ता है।
0: और ये जो गेमिंग जो होते हैं ना इसमें ना हमेशा हम जीतते ही हैं, पानी में गिर जाए तो भी उन्हें कुछ पॉइंट अगर हमारे पास है तो उससे हम फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो ये बच्चे और कुछ बच्चे तो वो वीडियो गेम देख के वैसे ही रास्ते पर भी उसी तरह से कार वगैरह चलाते हैं, तो उसके साथ उनके जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी बहुत खतरा होता है। एक हमारे साथी ने लिखा है दीपा, सॉरी
1: जी कोई नहीं,
0: समय सीमा निर्धारित करें, गेम खेलने के लिए अलार्म लगाएं या माता पिता दोस्तों की मदद से एक निश्चित समय तय करें, नई आदतें अपनाएं, ऊब से बचने के लिए कोई नया शौक पालें, व्यायाम करें या किताबें पढ़ें।
1: बिल्कुल। और एक कुछ श्रोता जो लिखते हैं कि आज के जो बच्चे जो गेम में लगे रहते हैं उसमें कंप्यूटर गेम में या मोबाइल में लगे रहते हैं वो वास्तविक दुनिया से उनका जुड़ाव कम होने लगता है और शुरुआत में ये गेम मनोरंजन और तनाव दूर करने का साधन लगते हैं लेकिन धीरे धीरे यही आदत गेमिंग का दलदल बन जाता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति गेम खेलने की लत में इतना डूब जाता है कि वो अपनी पढ़ाई, काम, परिवार और सामाजिक जीवन को नजरअंदाज करने लगता है तो ये आदत धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। और याद रखिए गेम्स खेलना बुरा नहीं है लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है, पढ़ाई, खेलकूद और परिवार के समय के साथ गेमिंग को सीमित रखिए ताकि हम इस दलदल में ना फंसे और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके।
0: और अब क्या करें,
1: एक गीत सुने,
0: सुनते हैं गीत।
2: ना। ना। ना। ना। ना। ना। ना। ना।

0: दिया था हाथ मलोगे समझे
1: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जब कदम भी चलना सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: भारती एक साथी लिखते हैं कि आजकल गेम खेलने की लोगों में लत सी लगी है। लोग देर रात तक जागकर मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं। कई बार तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, ना तो खाने की चिंता होती है ना उन्हें कुछ काम की चिंता होती है। कुछ ऐसे गेम तो उन्हें ऐसे टास्क देते हैं जिसके कारण लोग अपने जीवन को भी समाप्त कर लेते हैं।
1: बहुत से ऐसे गेम आ गए खतरनाक
0: जी।
1: और साथ ही एक श्रोता जी लिखते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ऑडियो या ऑनलाइन गेमिंग में इतना उलझ जाता है कि उसका अपनी दैनिक दिनचर्या, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर से नियंत्रण हट जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे आधिकारिक तौर पर गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया है।
0: और वैसे आरती ऐसी बात है कि ये जो मोबाइल गेम है या फिर मोबाइल कह लीजिए, लैपटॉप कह लीजिए या फिर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनमें अगर वाईफाई ना हो, इनमें अगर नेट ना हो तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है।
1: सही बात है। फिर हम एकदम फोन लेके बैठे रहते हैं कि क्या करें इस डिब्बे काम।
0: नहीं नहीं नहीं, पर अगर हमें बहुत इन्हें ऑफिशियल काम करना है, हमें अगर कुछ काम करना है तो बात समझ सकते हैं। पर अगर हमें सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हम पढ़ना भूल रहे हैं, खेलना भूल रहे हैं, परिवार के साथ बैठना भूल रहे हैं, तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी मनोरंजन का साधन होना वो सिर्फ सीमित मात्रा तक,
1: वो मनोरंजन तक ही रहना चाहिए, बाकी रिश्तों के बीच में या हमारे स्वास्थ्य के बीच में उसको नहीं आना चाहिए
0: जी। और अब वाईफाई की रफ्तार अगर धीमी हो जाए तो क्या करना चाहिए?
1: जिंदगी की रफ्तार, ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की रफ्तार जब वो धीमी हो गई,
0: धीमी हो गई
1: क्योंकि बहुत कभी कभी बहुत जरूरी काम होते हैं, क्योंकि हमें उसको करना होता है, लिखना होता है या कुछ हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी चीजें देखनी है, तो आजकल तो न्यूज भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं, कहीं बाहर है तो हमें किसी कुछ जरूरी देखना है तो वो अगर नेट नहीं सही से चल रहा है या हम अपने जैसे कि हम लोग जब देखते हैं सब पूरी फैमिली जो होती है, अगर पूरी फैमिली ले रखी है उसने वाईफाई से चला रहे हैं तो उसकी रफ्तार अच्छी होनी जरूरी है
0: जी।
1: तो कभी कभी होता है ना कुछ चीजों को हम सावधानियां करें तो उससे हम उसकी रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि राउटर को अगर हम सिर्फ बंद करके 2 मिनट बाद उसको स्टार्ट करें तो उससे भी स्पीड बेहतर हो जाती है।
0: जो मोबाइल, टीवी या लैपटॉप उपयोग में नहीं हो, उन्हें नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कमजोर पासवर्ड होने पर भी लोग जो है नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं जिससे स्पीड,
1: कोई आपके घर के सामने से जा रहा है, निकल रहा है थोड़ी दूर तक है तो वो आपके नेट का आसानी से उपयोग कर सकते, तो वहीं खड़े होकर अपना उपयोग करता रहेगा, लेकिन आपके वाईफाई की जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी।
0: साथ ही पुराने राउटर नई तकनीक के अनुसार सही गति नहीं दे पाते, जरूरत पड़ने पर नया राउटर ले। ऑनलाइन पढ़ाई के समय वीडियो डाउनलोड या भारी गेमिंग से बचे ताकि इंटरनेट की गति स्थिर बनी रहे। फोन में चल रहे उन एप्स को बंद करें जो बैकग्राउंड में डेटा जैसे ऑटो अपडेट या सिंक का उपयोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं ना जितने भी पेजेस, उनको आप बंद करेंगे ना तो फिर उसकी आपके फोन की स्पीड पे बहुत असर पड़ेगा।
0: यानी हमने अभी खोला फेसबुक, फिर थोड़ी देर में खोला व्हाट्सएप, फिर उसके बाद में हम चले गए यूट्यूब पे, तो अगर सारे एप्स खुले हुए हैं, अगर हम इस्तेमाल तो सिर्फ एक ही का करेंगे की टाइम, तो सारे अगर एप्स खुले रहेंगे तो भी हमारे इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है,
1: तो आप उसका भी ध्यान रखें। और साथ ही थोड़ी सावधानी और है, जैसे कि अपना जैसे कि अगर जो आपका राउटर है वो घर के बीचों बीच में और ऊंची जगह पर होना चाहिए, और साथ ही जो मोटी दीवार और माइक्रोवेव जैसे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी मत रखिए, जैसे टीवी है, टीवी के पास एकदम से आपने रख दिया उसे पीछे, तो उसका जो सिग्नल है वो सिग्नल तोड़ता है, तो उस वजह से भी आपका स्पीड धीमी हो जाती है, तो उसे थोड़ा सा अलग करके रखें और थोड़ा ऊंचा ही रखें उसे, उसी जगह पर ही लगाएं, जैसे कि और बाकी उपकरण उसके आसपास नहीं होंगे तो बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी आपको।
0: और राउटर का जो एंटीना होता है उसे भी अच्छे से सेट करें, यदि 2 एंटीना है तो एक को वर्टिकल लेने खड़ा रखें और दूसरा एंटीना को हॉरिजॉन्टल लेने आड़ा रखें, ये सिग्नल का दायरा बढ़ा देता है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही एक है ना, फ्रीक्वेंसी के बैंड बदलते रहना चाहिए हमें, कि जो तेज फ्रीक्वेंसी का राउटर हमें लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, उससे क्योंकि अगर ज्यादा फोन चलाने हैं उसको, उससे आपको कंप्यूटर वगैरह ज्यादा चीजें चलानी है तो आप उसी हिसाब से आप लीजिए अपना राउटर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी चल सके वाईफाई और उसकी स्पीड भी अच्छी रहे। और
0: आप एक गाना सुन ले।
1: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: तो अब हम बात करते हैं वही जो हम बात कर रहे थे यानी कि राउटर की। तो जैसे कि बताया कि हमने कि आप राउटर को बंद करें और फिर दोबारा चालू करें, तो उससे ये उसकी जो मेमोरी होती है उसको साफ करता है और साथ ही राउटर की जगह को भी बदलें। जैसे कि हमने बताया था कि आप उसको EMI श्रोता लिख के भेज रहे हैं, उसको घर के बीच में रखें और इसे ऊंचाई पर स्थापित करें और कई सारी बाधाओं से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उसको दूर रखें और अनचाहे डिवाइस जो भी रखें उसके आसपास उनको हटा दीजिए और वाईफाई का पासवर्ड बदलें और ताकि और कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। साथ ही बैकग्राउंड लोड जो डाउनलोडिंग बंद करें। ये वही चीज़ें जो हैं जो हमने अभी बताई वही हमारे श्रोता ने भी लिख कर भेजा है। तो एक और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि धीमी वाईफाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने राउटर को रीस्टार्ट करना, और इसके अलावा वही उनका कि ऊंची जगह पर लगाने से भी इसकी स्पीड बेहतर होती है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि ज्यादा गेम खेलने से मेरा भी स्कूल का रिजल्ट बिगड़ा था, मुझे भी कंप्यूटर गेम की लत लगी थी लेकिन अब छूट गई है। क्या बात है। तो बधाई हो।
0: बिल्कुल बधाई हो आपको अपने, क्योंकि गेम की लत लग जाती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपने उस चीज को छोड़ा, बहुत अच्छी चीज करी है आपने। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि देर रात तक गेम खेलने से नींद का चक्र बिगड़ जाता है जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा बढ़ जाता है और साथ ही एकाग्रता में कमी भी आती है। लंबे समय तक स्क्रीन पर वर्चुअल गेम खेलने से वास्तविक दुनिया से या पढ़ाई पर या काम पर ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है।
1: ये तो है ना, टेक्नोलॉजी के फायदे भी है और नुकसान भी है।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें उसके फायदे लेना चाहिए और नुकसान को हमें बाय बाय कहना चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल, उसका ध्यान रखें, इतना मत किसी चीज लग जाइए कि वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे। और अति हर चीज के लिए
1: बिल्कुल अति सर्वर्थ वर्जे, तो भाई अति से दूर रहे कि बस वो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हम इतने इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हमें कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, उसके जो नुकसान है उससे हमें बचना चाहिए। और अब क्या करना चाहिए, हमें
0: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: तो आती है आज की मुलाकात,
1: आज की मुलाकात बस इतनी।
0: और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: नंदन वंदन अभिनंदन। संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस विशिष्ट अंक में मैं गीतिका अनियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने की इस यात्रा में फौजी भाइयों के लिए सदैव समर्पित रही है, इसलिए नित्य प्रति विभिन्न प्रसारणों के माध्यम से सिपाहियों, चाहे फिर बॉर्डर्स पर तैनात हो या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ, आकाशवाणी ने हमेशा ही सिपाहियों और उनके परिवारों के बीच एक भावनात्मक सेतु का कार्य किया है। और आज इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकेंड इन कमांड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कैप्टन अभिराम पंकज सेकेंड इन कमांड 139 बटालियन CRPF डिप्लॉयड है मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स में। सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कमांडेंट अभिराम पंकज का। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। सबसे पहले मैं आकाशवाणी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और आपको 90 वर्ष पूर्ण करने की हार्दिक बधाई देता हूं। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं CRPF की तरफ से जय हिंद बोलता हूं। और ये मैं एक प्योर नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए, बचपन से आकाशवाणी को सुनते हुए आज आकाशवाणी के FM रेनबो के स्टूडियो में बैठकर बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूं।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुंचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफर से जुड़ी होंगी। और जैसे कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं, लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं। सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है। अगर हम CRPF की बात करें तो आप किन शब्दों में CRPF को परिभाषित करना चाहते हैं?
1: CRPF 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई और विगत कई दशकों में आज CRPF हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में रहे और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है CRPF। जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रोल्स डिफाइंड हैं, जैसे BSF इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पर है, CISF वाइटल इंस्टॉलेशंस में है और SSB इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही CRPF इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। तो CRPF ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक CRPF ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे। और आज CRPF ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था, तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो जिस तरीके का CRPF ने काम किया है। और ऐसा वही नहीं जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो CRPF को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूँ कि CRPF सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस बल का पार्ट हूँ, मैं इस बल का हिस्सा हूँ और मुझे यहाँ कुछ करने का मौका मिला है।
0: जी होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं। और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं। तो ये मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह। और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070, जादुई नंबर के माध्यम से तुरंत आप उन तक पहुंचते हैं। तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार हैं भेजिए जरूर।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चले। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यू आर ऑनर्स इन केमिस्ट्री इंडियन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली सीआरपीएफ, पढ़ाई लिखाई ऐसा था। मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये सीआरपीएफ ऑर्गेनिकली हुआ। मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था, वर्दी की तरफ एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज अ चाइल्ड आपको कई बार लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था। बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक।
0: क्या बात है। आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, सीआरपीएफ भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
1: मैं बहुत भाग्यशाली था। मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे। वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी। तो उस जमाने में, अब तो इंफॉर्मेशन की क्रांति है, चारों तरफ आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उस जमाने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोजगार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पर जा सकता है। और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प, थोड़ी अपनी, और एम्प्लॉयमेंट न्यूज से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें आप अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं।
0: जी, तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी, ये बताएं।
1: 2004 तक ये एग्जामिनेशन सीपीओस कंडक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से यूपीएससी ने ले लिया। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल और सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्जाम निकालती है। तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये तीन चार पेपर्स होते हैं एंड फॉलोड बाई फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीजें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो। तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और यूपीएससी की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नज़र बना के रख सकते हैं। आज की डेट में बहुत आसान है।
0: जी, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ?
1: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर, आईटीबीपी इंडो चाइना बॉर्डर, सीआरपीएफ ओनली इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑल्सो, बट वो सारे केवल वीआईपी सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स ऑल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस।
0: जी, तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता है?
1: इसमें एनएसजी और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होती है। बाकी ये जितने CISF, CRPF, ITPP, BSF और इन सब की सिलेक्शन उस UPSC की एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो जो कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ कितनी वैकेंसीज है उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं। तो एंट्री लेवल है जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं आप असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं।
0: जी, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, ये खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
1: ये मैं MBA करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था, एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी। तो ऑफ कोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फोन नया नया आया था तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे, तो उस पर बातचीत हुई, दूरभाष फोन के माध्यम से लोगों ने बताया, तो बधाइयां आनी शुरू हो गई। और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात, तो काफी बधाई संदेश आने लगे। और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था, मेरे बैंक में सारे बहुत खुश हुए क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए। तो ऑफ कोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया।
0: क्या बात है, घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि सरकारी का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए। जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण जो था उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
1: निसंदेह है बहुत खुशी के भाव थे। मेरे मेरे मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो। और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत खुश हुए कि हाँ देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे। तो निसंदेह माता पिता दोनों उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे और ऑफ कोर्स मैं भी काफी खुश था।
0: जी, निश्चित रूप से जब आपको रास्तों ने चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुंचना है, ऐसे सुखद बात और कोई छू नहीं सकती। क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जो जिनको रास्ते चुनते हैं वो तो अपने आप को ज्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत की ओर पीछे जाएं, यानी कि आपके MBA या फिर आप मान लीजिए आपके जब आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस प्रकार के आप बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता CRPF तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
1: बहुत बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने। ये आप जब ही बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था, आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था। मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था, लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपनी क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था। खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था, तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो मैं जहां भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, क्रिकेट उन दिनों आज भी काफ़ी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। वो आपको आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व एक डिफरेंट एक अलग अलग अलग तरीके का निखर कर आता है। तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था, वो मुझे बहुत हैंडी रहा CRPF में भी। यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मुझे
0: तैयारी
1: हाँ बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहां पे भी मुझे, और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो, मेरे साथ ही अधिकारियों के साथ हो, तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकलकेट करती है, वो अद्वितीय है, वो अनुपम है।
2: जी तो सीआरपीएफ तक का रास्ता सहल की और उसके बाद सीआरपीएफ में रहते हुए यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से यानी कि अपने बाल काल से ही जो है आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
1: जी
2: तो हम ये आपके साथ और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आतुर हूँ आपसे ज्यादा से ज्यादा बातें सुनने के लिए, और तमाम बच्चे यूथ या देश के वो सैनिक जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही एक वीर यहाँ पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर, तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ एफएम रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी की एफएम रेनबो पर हमें। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियार, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज।

वेलकम बैक। नगमा आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अनियाल और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी जुबानी सुन रहे हैं। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है। और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान। कमांडेंट अभिराम, CRPF, जब आप CRPF का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो अगर आपसे मैं CRPF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF, तो सबसे पहले हम CRPF को थोड़ा सा और जान लें। तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी

0: तो आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान के पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और वैलर का परिचय दिया था। तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट की याद में वैलर डे मनाया जाता है सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ ने इन तीनों थिएटर्स जम्मू कश्मीर, एलडब्ल्यू थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में। तो आज हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो सीआरपीएफ का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस मैं एक बात कहना चाहूँगा, सीआरपीएफ अपने आप में एक मिनी इंडिया है। हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो सीआरपीएफ एक मिनी इंडिया। आप कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें, किसी भी बटालियन को या किसी भी बटालियन के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो सीआरपीएफ उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश, पूरी प्रांत के रीजन रिलीजन के लोग मिल जाएंगे, और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो सीआरपीएफ के सोल्जर्स होते हैं, वो जवान होते हैं। सीआरपीएफ एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है और इसका रिकॉग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है। सीआरपीएफ को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। सीआरपीएफ को 1 अशोक चक्रा, 10 कीर्ति चक्रा, 39 शौर्य चक्रा, 200 से ज़्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक। तो ये इनके जो बलिदान का, सीआरपीएफ के बलिदान और योगदान का जो रिकग्निशन रहा है वो गैलेंट्री मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सीआरपीएफ को एक काफ़ी वर्सेटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी का जो इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाली फोर्स के रूप में रखती है।
1: जी निश्चित ही, आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं जो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं सीआरपीएफ ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज्यादा आसान कर दिया। और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए, तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ। सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है। जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करती थी और ये खेलना आज तक जारी है, और आपको लगता है कि ये जो खेल रहे हैं आप आज तक, कौन कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हो, कौन कौन से गेम्स हैं?
0: देखिए सीआरपीएफ में हमारा चूंकि मूवमेंट काफी फ्रीक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें, तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है। तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं। तो शुरू से लेकर अभी तक अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं। उसके अलावा जब मौका लगा फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला, टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफी पॉपुलर गेम है, जो आपस में टग ऑफ वॉर रस्सा कस्सी का जो गेम होता है वो, उससे काफी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है। तो ये सारे गेम है और ये सारे गेम में आज भी, मतलब ये अनवरत मेरा चल रहा है। तो चाहे मैं एक छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूँ, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं खेलता हूँ जवानों के साथ में।
1: जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो आत्मीयता तो वैसे ही वहाँ बन जाती होगी, क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेचर के हमारे जो सिपाही हैं या फिर ऑफिसर्स जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की भावना। क्या बात है, तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडेंट अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए। सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139 बटालियन सीआरपीएफ में आप कार्यरत हैं। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि

0: आपको सीआरपीएफ ज्वाइन करना है तो निश्चित रूप से आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?
1: जो सीआरपीएफ का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का है, हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था। माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है, काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाला जगह है। तो वहाँ 52 वीक्स ऑलमोस्ट ईयर, एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में। तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पीनल कोड्स है, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
0: जी। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
1: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई। तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी और मैं एक साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा। उसमें बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावी था और तो उन सारी जगहों पे मैं उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में, लोगों का, एक तो उस मिट्टी का होने के नाते और दूसरा सीआरपीएफ की बहुत इज्जत थी वहाँ पर और सीआरपीएफ ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उन दिनों मैं याद करता हूँ एक नक्सल अभियान में ये मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था और उसमें सीआरपीएफ की 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़कर उनको मारा था। तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था और सीआरपीएफ ने सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं। तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था ये, लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था और पहली पोस्टिंग थी तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था।
0: क्या बात है। फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
1: जम्मू कश्मीर मैं दो मौकों पे रहा। उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफर डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी। मैं बांडीपुरा में तैनात था लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला और सीआरपीएफ ने अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में, जो वहाँ का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है उसमें बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में। तो सीआरपीएफ का डिसिप्लिन, जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस रवैया है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो सीआरपीएफ आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है। मैं दूसरी बार भी सीआरपीएफ के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा, जब भी रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर। तो सीआरपीएफ एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है, एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं। तो और एक, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते होने के अलावा सीआरपीएफ का एक मानवीय पहलू भी है। तो वहाँ मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाती थी सीआरपीएफ, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है और लोकल जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल वासिंदे हैं उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए सीआरपीएफ हमेशा तैयार रहती थी। एक काफ़ी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा और दो मौक़ों पे मैं गया, 8 साल में कश्मीर में मैं बिता कर आया, तो ये गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए।
0: क्या बात है। उसके अलावा आपके क्या क्या आपको जिम्मेदारियां दी गई, चाहे वो बिहार

0: के बाद फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि उसने आपको और भी ज्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया?
1: निसंदेह सीआरपीएफ, आप सीआरपीएफ में हम लोगों को 15 दिन कैजुअल लीव और 60 दिन का अर्जित अवकाश हमें मिलता है, तो टोटल 75 दिन। तो आप उसके अलावा जो टाइम आप पूरे वर्ष का है वो आप अपने परिवार से दूर बल के जवानों के साथ बिताते हैं, तो ये अपने आप में एक अनुभव है और आप उसको जीते हैं और आप एक परिवार से दूर एक अलग परिवार बनाते हैं। तो वहाँ आप अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे कमांडर नहीं बन सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खासा अनुभव रहा है जब मैं जवानों के साथ इतने साल, अभी मुझे 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा टाइम सीआरपीएफ के साथ बताया, अच्छे खासे रिलेशंस बनाए, तो काफी अच्छा अनुभव रहा है।
0: एक बात बताइए कि पढ़ाई से बहुत प्रेम है, मुझे ऐसा महसूस होता है। सर्टिफिकेशन पब्लिक रिलेशंस में किया आपने IIMC से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज दौरान किया है
1: जी,
0: तो ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है एकेडमिक से, या यूं कह लीजिए कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज्यादा स्थापित कर सके, तो क्या आपकी किसी, ये कहूंगी कि जो आपने सोचा हुआ था आपकी कर्तव्य निष्ठा है या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
1: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो सीआरपीएफ में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा इंडियन IIMC से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, वो काफ़ी हैंडी भी रहा मुझे क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 24 के दौरान मैं सीआरपीएफ का PRO भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में। उस दौरान सारे मीडिया के साथ जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ यह बात भी बताना चाहूँगा कि मीडिया में जब मैं वहाँ PRO की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का मौका मिला।
0: नब्बे वर्षों के जो ये कार्यकाल है, यानी कि जो समर्पण की भावना लिया आकाशवाणी नित्य प्रति अपनी श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो उस कड़ी में आप भी सब थे।
1: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो सीआरपीएफ करती थी, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहाँ उसकी सिक्योरिटी सीआरपीएफ करती थी। तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का, उनको उनसे बातचीत करने का मौका मिला था उनके अधिकारियों से स्टूडियो, लेकिन आज स्टूडियो में हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ, मैं आपके श्रोताओं से मुखातिब हूँ।
0: क्या बात है, चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में, इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसे कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हों या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ आप लगातार वार्तालाप में रहते थे, और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है और वो है देश प्रेम। अच्छा, अब जब आप सीआरपीएफ में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है, ना कि सीआरपीएफ का लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, आप बहुत लोगों के रियल लाइफ हीरो जैसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे, तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, कैसा होता था आपके साथ?
1: निसंदेह ये होता था, एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं तो निसंदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ, हर एक तबके के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ होता था। तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे। तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूँगा कि भाई आप अपनी फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ में ना हो जिससे आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब हो सकता हो, वो ना करें। तो आप देश निर्माण का जो की भावना अपने मन में रखें और अवेयर रहें तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, और एक अच्छा मिक्स, एक सर्वांगीण विकास अगर आपका है, आपका शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप ये बन सकते हैं। तो युवाओं को मैं उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था, और CRPF भी जहाँ कश्मीर में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, तो हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम युवाओं को अपने कैंप्स तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, और कई उनमें से सक्सेसफुल भी हुए, तो जो बाद में आज भी टच में हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों का CRPF के मार्गदर्शन में हमारी इतनी मदद की। तो बड़े सारे किस्से हैं इस तरीके के, CRPF ने लोगों के जीवन को छुआ है, जहाँ भी आज छूती रही है, आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो CRPF का है, और CRPF लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहाँ भी रही है, तो वो एक बड़ी यूनिक है, और मैं इसलिए CRPF मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बल में काम करने का मौका मिला।
0: क्या बात है, जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, उस दौर में जब प्रथम बार यूनिफॉर्म पहनी थी और इस दौर तक, इतना लंबा समय आप अपनी सर्विसेज दी हैं आपने, तो आज भी वो सेम फीलिंग है, जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं, और ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है, जैसे पहली बार सा है। कैसा होता है?
1: बिल्कुल रोंगटे खड़े होते हैं। आप एक जो आपका आपका जो बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में, एकदम बैक ऑफ द माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म इनटू अ सोल्जर, आप एक सोल्जर हैं, आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है। तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
0: जी।
1: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जाम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है, आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है। तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहन करता, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है। तो मैं तो और मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी यूनिक है। आप अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा,
0: शायद समझना मुश्किल है। और आपकी बातों से जब आपके भाव पढ़ रही हूँ, सो ऐसा प्रतीत हो रहा है फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत, बिल्कुल वो पहली मोहब्बत सी जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले, और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी वो कारवा आज तक कायम है, क्योंकि रोज जब अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो वही पहली मोहब्बत सा आभास आपको होता है। ऐसे ही पहली मोहब्बत सा आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के लिए ही हम कर्तव्य निष्ठ है। तो देश के सभी सिपाहियों को, ऑफिसर्स को हम सलाम कहते हैं, और हम यही कहते हैं कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं है।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो अधूरा यकीन मानिए अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए, एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हरदम हर पल अपने शोज के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी जबानी, उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुंचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी जिंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशंस पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं। ऐसे में उनका योगदान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं सीआरपीएफ ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताएं।
1: माँ बाप मुझे टाइम ट्रेवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं सीआरपीएफ ज्वाइन करूंगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूंगा। कॉर्पोरेट में कार्यरत हैं मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज़ ए प्राइवेट बैंकर, प्राइवेट, और तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है, पीछे मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल का रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज़ आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर बाहर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है। तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियां मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, तो एक मैं इस मामले में अगेन मैं काफ़ी काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
0: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य से आपने बैठा लिया। और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
1: जी जी, निस्संदेह। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं अपना, और वो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, और मैं थैंकफुल हूँ।
0: जी, निश्चित रूप से कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हो या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं। और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी जिंदगी में वो क्या वैल्यू रखती है। अब आकाशवाणी 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है। अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहां आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहां पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
1: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो, उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी जिंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। मैं अपनी मिट्टी में वापिस आए हैं, एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी।
2: हाँ। तो
0: हाँ जी
1: जी, तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। और मेरी जो मेमोरीज हैं वो एफएम रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो सिबा बिना का गीत माला लेकर आते थे।
0: हाँ हाँ।
1: और तो वो हमारी बचपन की यादें थी, हम देखते थे। हाँ। और उसको हम बहुत इंतजार करते थे और हर एक सप्ताह के उस दिन का इंतजार करते थे जब वो बिना का गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे। क्या गोल्डन वॉयस थी उनकी। तो ये सारी यादें थी और आज वो सारी यादें ताजा हो गई। और फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं एफएम रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का इस मौके के लिए।
0: बिल्कुल। और ये जो सफर है ये बहुत ही सुखद सफर है। हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर वो जो सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द में बोलना, दो पंक्तियां मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने।
0: बिल्कुल।
1: अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश, अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को, अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी।
0: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से कि आप अपने बच्चों को ना खेल में जरूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स में एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचते हैं ये खेल। तो अपने बच्चों को जरूर खेलों से आप जोड़कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है।
1: निसंदेह
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज आपका, आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की। एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूंगी, अगर आप कहें तो, आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है। निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों के प्रति हो या मानवता के प्रति हो, जो हमें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर।
1: धन्यवाद। जय हिंद।

यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। हमारी सायंकालीन सभा में तमाम सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन। आइए आपको जानकारी दिए देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

हमारा नियमित कार्यक्रम गीता संदेश आप सुनेंगे शाम 6:20 पर, जिसमें आज आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 से श्लोक संख्या 14 से लेकर 17 तक की व्याख्या। प्रस्तुति रहेगी डॉक्टर रामचंद्र की।

युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम युवाणी प्रस्तुत किया जाएगा शाम 5:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता समाज निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर।

किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसानवाणी प्रस्तुत किया जाएगा शाम 6:30 पर और कार्यक्रम ग्राम संसार का आनंद आप ले सकते हैं शाम 7:00।

आपके भेजे हुए व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें, जिसमें आपकी फरमाइश के फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। ये कार्यक्रम होगा रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक। और शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने नए पुराने। हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम आप इस प्रकार सुन पाएंगे। रात्रि 9:15 पर होगा कार्यक्रम आपके लिए, और कार्यक्रम छाया गीत का आनंद आप ले सकते हैं रात्रि 9:30 पर। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अप्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए पुराने। कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार ज्योतिष्मा की ओर से। और दोस्तों, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे इस तपिश भरे मौसम में। जी हाँ, हर मौसम को हमें झेलना होता है, उसका आनंद लेना चाहिए। अब जैसा कुदरत ने का जो नियम है उसके अनुसार ही चला जाएगा। जब सर्दियों की ज़रूरत होगी तो सर्दियां आएंगी, और जब गर्मियों की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये जो तालमेल है प्रकृति का, इसके बगैर शायद जीवन की जो स्थिति है इस ग्रह पर वो मुश्किल हो पाएगी। तो आज का जो कार्यक्रम है उसमें पहली प्रस्तुति है फिल्म दो आंखें 12 हाथ के। इस गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। गीतकार हैं भरत व्यास, आवाज़ लता मंगेशकर की, संगीत है वसंत देसाई का। और आइए सुनते हैं इस गीत को। फिल्म है दो आंखें 12 हाथ।

और आइए अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म आर राजकुमार से। नक्श अजीज और अंतरा मित्रा की आवाजें हैं। मयूरपुरी की शब्द रचना और संगीत है प्रीतम चक्रवर्ती का।

और आइए अगला गीत सुनते हैं। फिल्म दिल और मोहब्बत से आवाजें हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की, गीतकार हैं शिवान रिजवी और संगीत है ओपी नैयर का।

रही श्रोताओं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म फना से, जिसमें आवाज है सोनू निगम, सुनिधि चौहान की, और गीत लिखा है प्रसून जोशी ने, संगीत है जतिन ललित का।

0: चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: अगला गीत है फिल्म हाथ की सफाई से, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

और दोस्तों यही थी कार्यक्रम में आज आखिरी प्रस्तुति। और आपको बतलाना चाहेंगे कि तेज धूप में बाहर निकलने से बचें, खासकर दोपहर 12 से 3 बजे तक, और घर से निकलते समय सिर को दुपट्टे, टोपी या छाते से जरूर ढकें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, नींबू पानी, छाछ, लस्सी या ORS का सेवन करें, हल्के और सूती कपड़े पहनें, खाली पेट धूप में बाहर ना जाएं, ज़्यादा तला भुना और मसालेदार भोजन कम खाएं। वहीं मौसमी फल या सब्जियां जैसे कि जिन्हें आप सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, ऐसे जो फल हैं जैसे पानी वाले, जिनमें अधिकता हो पानी की, उनका इस्तेमाल किया जाए। वहीं धूप से आने के तुरंत बाद बहुत ठंडा पानी ना ही पिएं। बच्चों और बुज़ुर्गों का विशेष ख्याल रखें। शरीर में यदि कमज़ोरी महसूस होती है, चक्कर आते हैं या सिर दर्द हो तो आराम करें। बाहर जाते समय पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर रखें। घर और कमरे को हवादार रखें। अत्यधिक गर्मी में भारी व्यायाम से बचें और लू लगने के लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और इसी सब के साथ इजाजत दीजिए आज के इस कार्यक्रम से। ज्योतिष्मा को नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए पुराने FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब प्रस्तुत है यह दोस्तों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार। ज्योतिष्मा की ओर से हार्दिक स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों, जहां आपकी सोच यानी युवाओं की सोच, उनके सपने और समाज के प्रति उनके जिम्मेदारियों को समर्पित एक ये काम है या ये कार्यक्रम है जिसमें आज हम एक भेंट वार्ता आपके लिए लेकर आए हैं। और आज का विषय है समाज निर्माण में युवाओं की भूमिका। जी हाँ, आप सबकी भूमिका। युवा जो कि किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा, शक्ति और भविष्य के आधार स्तंभ हैं, उनकी सकारात्मक सोच, जागरूकता और कर्मठता समाज को नई दिशा देने का सामर्थ्य रखती है। शिक्षा, तकनीक, सामाजिक सेवा और नैतिक मूल्यों के माध्यम से युवा एक बेहतर समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो इसी विषय पर आज हम अपने एक आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता, जिसका विषय है समाज निर्माण में युवाओं की भूमिका। भेंट वार्ता है डॉक्टर राजेंद्र विद्या अलंकार से और भेंट करता है महेंद्र मोहन शर्मा। तो आइए सुनते हैं इस भेंट वार्ता को।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे समाज निर्माण में युवाओं का क्या योगदान है, क्या भूमिका है। और इस विषय पे आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र विद्या अलंकार जी, जो कि OSD2 गवर्नर गुजरात गांधीनगर अहमदाबाद में हैं, लेकिन यहाँ पर के जाने पहचाने हैं। और बात करें हम डॉक्टर राजेंद्र विद्या अलंकार की, तो वो प्रोफेसर हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में, प्राच्य विद्या संस्थान में आप काम करते हैं और प्रोफेसर के रूप में वहां पे अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, लेकिन अभी प्रतिनियुक्ति पर OSD2 गुजरात गवर्नर आप हैं। डॉक्टर राजेंद्र विद्या अलंकार जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं समाज की, तो समाज की दशा क्या है आज आप किस संदर्भ में देखते हैं?
2: धन्यवाद महेंद्र जी, आपने इस संवाद के लिए मुझे आज आमंत्रित किया। समाज आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां बहुत अच्छी संभावनाएं भी बनती हैं और विकार की, विकृति की

0: बहुत सारी संभावनाएं भी रास्ते भी वहां से खुलते हैं
1: जी।
0: यदि हम अपने समाज को कोई दिशा दे पाए, उसको सकारात्मक पहल करने के लिए तैयार कर सकें, तो निश्चित रूप से भविष्य बहुत उज्जवल है, उन्नत है। पर हमारे लिए बहुत ही हताशाजनक स्थिति ये है कि आज समाज को दिशा देने की हमारी कोशिशें लगभग शून्य होती जा रही हैं। और यदि यही चाल चलन रहा
1: जी,
0: यही रवैया रहा, तो समाज में लोग तो जिंदा रहेंगे पर सामाजिकता नहीं होगी।
1: बिल्कुल।
0: और ऐसी स्थिति में हमारा समाज कहीं भीड़ ना बन जाए, भीड़ को समाज बनाए रखने के लिए सकारात्मक पहल की, लगातार उसके अभ्यास की आवश्यकता हमेशा से है और हमेशा रहेगी।
1: बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब कही कि हमारा समाज कहीं भीड़ ना बन जाए। तो आज की बात करूं, मैं युवाओं की बात करूं, किस तरह की प्रवृत्तियां आज के युवाओं में आप देखते हैं?
0: महेंद्र जी, बहुत स्पष्ट है, युवा शक्ति का पुंज है, उनमें विशेष योग्यताएं हैं, ज्ञान के जितने प्रारूप हैं उन सबसे वो युक्त हैं, नई तकनीकी के साथ हैं, नई जानकारियों के साथ हैं, वैश्विक जानकारियां उनके पास हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा इस बीच में, महेंद्र जी, जो मैं महसूस करता हूँ, पैदा हुआ है। वो खतरा ये है कि जीवन कहीं ना कहीं एकाकी होता जा रहा है।
1: बिल्कुल।
0: हम समाज तो बहुत दूर, घरों के अंदर भी धीरे धीरे एक कमरे में, एक कॉर्नर में सिमटते चले जा रहे हैं
1: जी।
0: एक छत के नीचे रहते हुए भी हमारा संवाद लगभग शून्य होता जा रहा है। हम सिर्फ घर में अपनी कुछ एक जरूरतों की, खाने पीने की जरूरतें और नींद पूरा करने के लिए एक कॉर्नर की तलाश में आते हैं, जो एक जीवंत वातावरण है।
1: बिल्कुल सही आपने कहा।
0: वो जीवंत वातावरण धीरे धीरे धीरे धीरे दम तोड़ता जा रहा है। और ये पर्सनल कनेक्ट, सोशल कनेक्ट जितना जितना कमजोर होगा, समाज उतना उतना ही दम तोड़ता चला जाएगा। और फिर मैं उसी बात को कहूंगा, तब हम सिर्फ एक भीड़ होंगे। इसलिए युवाओं में ये जो प्रवृत्ति घर कर रही है कि वो एकाकीपन की तरफ जा रहे हैं, उनका सोशलाइजेशन बहुत ही जरूरी है
1: जी। बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब बताई कि हम एक दायरे में सिमट के रह गए हैं। हम संवाद पहले करते थे परिवारों में, घरों में, पड़ोस में, एक दूसरे के यहाँ आना जाना, वो लगभग खत्म सा हो गया। बहुत अहम बात आपने बताई। एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा, आपने दोनों तरह का समाज देखा है, एक वो समाज जो हमारे महापुरुषों ने बनाया था, उन्होंने कल्पना की थी, एक ये समय आज का वर्तमान युवा जो आप देख रहे हैं। आपने अपनी युवावस्था भी देखी है और अब की युवावस्था भी आप देख रहे हैं, क्या अंतर आप देखते हैं उनकी कल्पना में और आज के युवा की कल्पना में?
0: महेंद्र जी, जो जीवन हम लोग जी करके आए हैं, समाज का बदलता प्रारूप देखा है, और ये महसूस होता है जो नियंत्रण, जो मार्गदर्शन, जो हस्तक्षेप, जो निगरानी हमारे जीवन में हमारे पेरेंट्स की रही है और अब तक कहीं ना कहीं वो बनी हुई है, आज लगभग वो नहीं है। परिवार छोटे हुए हैं, फोकस में बच्चे आ गए हैं, मार्केट ने सर्टन किस्म की प्रैक्टिसेस हमें सिखा दी हैं, वो कारोबार के लिए, बाजार को जिंदा रखने के लिए जरूरी हो सकती हैं
1: जी,
0: पर वो परिवारों को चलाने के पैरामीटर्स तो नहीं ही है। हमारे बच्चे हमसे सलाह नहीं ले रहे हैं। वो जो इवनिंग मीटिंग्स थी, भोजन के बाद की परिवारों में बैठकें थी, अनौपचारिक संवाद थे जिसमें पूरा धर्म दर्शन डिस्कस हो जाता था, समाज नीति डिस्कस हो जाती थी, हमारा आचार विचार डिस्कस हो जाता था, अच्छा और बुरा हम डिस्कस कर लेते थे, उसकी पहचान सहज रूप से हमारे बच्चों तक पहुंच जाती थी
1: जी।
0: आज वो परंपरा टूट गई। यहाँ हो गया, हालात ये आ गए हैं कि परिवारों के अंदर पति पत्नी का संवाद कम हो गया है।
1: बिल्कुल।
0: सब कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया पर
1: लगे हुए हैं,
0: इतने ज्यादा उलझ गए हैं कि बातचीत हूँ और हाँ तक सीमित रह गई।
1: सही बात है।
0: हूँ हाँ, हूँ हाँ
1: जी।
0: कोई लंबा डिस्कशन आप, यदि आपके लिए बहुत अच्छा ये सर्वे भी होगा कि आप ऐसे परिवारों की पड़ताल करें जिनकी इस तरह की मीटिंग्स जिंदा हैं जिन घरों में,
1: बिल्कुल,
0: और बातचीत हो रही है, लगभग वो खत्म हो गई। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि कहीं परिवार बड़े इस जिम्मेदारी के प्रति जहाँ उदासीन हो गए हैं, वहाँ बच्चों को अवसर मिल गया है। कुछ लोग कहते हैं बच्चों ने सुनना बंद कर दिया। मैं समानांतर ये भी कहूंगा, ये पूर्ण सत्य नहीं है, हमने सुनाना भी बंद कर दिया।
1: बिल्कुल,
0: हम ही लोग रील्स में, सोशल मीडिया पर
1: हम लोग
0: हाजिरी लगाने में इतने उलझ गए हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कि वो किस तरह की लोकेशन हमारे अंदर जाग गई है
1: जी।
0: कितने लोग हमें देख रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, कितने हमारे फोटोज देख रहे हैं, ये एक गलत गणना है। तो मुझे ये लगता है कि माता पिता का हस्तक्षेप, उनकी निगरानी, जीवन में बनी रहना एक खूबसूरती है, सकारात्मकता की तरफ ले जाने की एक पहल है
1: जी। बहुत अच्छी बात आपने कही, समाज का पूरा आपने चित्रण पेश कर दिया डॉक्टर साहब। युवा समाज में कितना योगदान दे सकते हैं, जैसे कि महर्षि दयानंद ने भी कल्पना की थी कि युवा किसी भी राष्ट्र का एक बहुत ही जो सशक्त रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए, तो उन महापुरुषों को लेके और आज के युवा का क्या योगदान उसमें बन सकता है?
0: महेंद्र जी, हम सभी इस बात को स्वीकार करते हैं और अलग अलग तरह के वाक्यों में इसे प्रस्तुत भी करते हैं कि शक्ति का पुंज युवा हैं। समाज को आगे ले जाने के लिए शक्ति की गति की जरूरत है
1: जी।
0: उसमें हमारे बुजुर्ग, हमारे समझदार लोग, सभ्य जन उसमें मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन समाज वैसा होगा जैसे हमारी युवाओं की प्रवृत्तियां होंगी। अक्सर हम क्लासरूम के वातावरण को देख करके भावी समाज की संरचना का अंदाजा लगा लेते हैं, हमारा समाज कैसा होगा। आज जिस तरह की प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं, कभी ऋषि दयानंद सरस्वती ने जो अपना पूरा मूवमेंट चलाया, उस पूरे मूवमेंट में जो उनका शिक्षा दर्शन था और प्राइमरी कंसेप्ट था
1: जी।
0: उनका जो अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, आप देखें उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में जो चैप्टराइजेशन है उसमें सबसे अहम चीज जो उन्होंने कही है शिक्षा
1: जी।
0: हमारी शिक्षा क्या है? यदि हम अपने बच्चे को उन चीजों के प्रति सावधान करते हुए शिक्षित नहीं कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसे एक टूल बना रहे हैं फैक्ट्रियों का
1: जी।
0: वो मशीन नहीं है, हमें मशीनें नहीं बनानी, हमें आदमी बनाने हैं। और उसके लिए युवाओं में जो दुष्प्रवृत्तियां घर कर रही हैं, यदि हम उनको संबोधित नहीं करेंगे, ड्रग्स की आदतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, उत्तेजना जिस तरह से समाज में बढ़ रही है, उन चीजों को निकम्मापन, एक खास किस्म का निकम्मापन, मुफ्तखोरी
1: जी,
0: ये प्रवृत्तियां जो समाज में धीरे धीरे बढ़ रही हैं, जातीय उभार, बहुत सारे चालाक किस्म के लोग इन बच्चों को, इस शक्ति पुंज को, इस शक्ति का उपयोग अपने निहित स्वार्थों को साधने के लिए कर लेते हैं, उनको यदि हम दूर नहीं करेंगे तो हम बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि युवा शक्ति का पुंज है, पर उस शक्ति को प्रॉपर ढंग से उपयोग में लाना, उसे दिशा देना, समाज निर्माण के लिए उसे नियोजित करना, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है
1: जी।
0: और यदि ये हम कर सके तो एक खूबसूरत समाज हमें प्रतिफल के रूप में जरूर मिलेगा।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर साहब कि हमें उस शक्ति का प्रयोग करना है, उसको अच्छा एक सही मार्गदर्शन देना है। फिर बात वहीं पर आ जाती है, आज का युवा सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा है, उस पे इतना ज्यादा होने के बाद भी वो सोशल नहीं है, आप क्या समझते हैं?
0: ये गंभीर चिंता का विषय है। कारण कुछ ऐसा बन गया है, प्रवृत्ति कुछ ऐसी बन गई है, तौर तरीके ऐसे बन गए हैं कि हाजिरी सिर्फ सोशल मीडिया पर लग जाए, वहीं से वो गाली गलौज सीख रहा है, वहीं से वो जीवन जीने के तरीके तौर तरीके सीख रहा है, और वहीं से वो अपने जीवन का बुनियादी दर्शन प्राप्त कर रहा है। यदि हम उन बच्चों को सोशली ट्रेंड नहीं कर पाएंगे, हम इतने बड़े बड़े पर्वों का आयोजन करते हैं, हजारों लोग धार्मिक यात्राओं पर निकलते हैं,
1: बिल्कुल,
0: सामाजिक आयोजनों में भाग लेते हैं, यदि उस गैदरिंग में कुछ हम सकारात्मक प्रवृत्तियां ऐसी डाल सकें, धर्म और दर्शन के प्रति राष्ट्रवाद का भाव उनमें विकसित कर सकें, समाज के प्रति दायित्व बोध पैदा कर सकें, और वो किया जा सकता है, उसको एक हमें उद्देश्य के तौर पर स्वीकार करना पड़ेगा
1: जी।
0: क्लासरूम से लेकर के जो समाज में नियंत्रण देने वाले लोग हैं, सामाजिक संगठन है, यदि वो इस काम के लिए आगे आ जाए तो हमारे बच्चों का

0: सोशलाइजेशन हो सकता है। हम उन्हें मानवता के लिए तैयार करें, मानवता का भारत का जो शाश्वत जीवन दर्शन है उसके बेहतरीन चीजों को, बेहतरीन गुणों को अपने बच्चों को समझाएं, तो निश्चित रूप से ये प्रयास होगा। और ये प्रयास किसी एक के करने से नहीं होगा, एक आंदोलन के तौर पर माँ बाप भी अपनी जिम्मेदारी समझें, संवाद घरों के अंदर बढ़ाएं, सोशल मीडिया से थोड़ी समय हट करके अपना समय, परिवार का समय, उस पर चिंतन मंथन ज्यों ही शुरू होगा बच्चों के अंदर वो भाव पैदा होगा ही होगा
1: जी।
0: अभी तो महेंद्र जी बहुत विडंबनापूर्ण स्थिति ये है कि 2-4-6 महीने का बच्चा यदि फीड नहीं ले रहा है तो उसको भी जो हम खिलाते हैं कुछ दाल का पानी या दूसरी वगैरह जो हम देते हैं उसमें भी बच्चे के सामने कोई रील चला
1: रील चलाते हैं, खाना खाते हैं।
0: ये ट्रेनिंग तो हम वहां से दे रहे हैं
1: वहां से दे रहे हैं।
0: अगर इतनी ट्रेनिंग दे करके हमने खराब किया है ना, कितने वर्षों में खराब किया है
1: जी।
0: तो बुराई को इंट्रोड्यूस करना आसान होता है, उसको समाप्त करना, उसकी सफाई करने में कई गुना ज्यादा एफर्ट्स और वक्त लगाना पड़ता है। यदि हम उस काम को, प्रयास को शुरू करें तो निश्चित रूप से बच्चे सोशल होंगे ही होंगे। और ऐसा नहीं है कि वो जीरो हो गए हैं, आज भी बहुत सारे बच्चे बहुत सारे सामाजिक दायित्वों से युक्त हैं
1: जी।
0: पर्यावरण के प्रति, जीव मात्र के प्रति वो बहुत अच्छी अच्छी पहल कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: सारे देश में कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम में इस तरह की सकारात्मक पहलों को लगातार हमारे सामने रखते भी हैं
1: जी।
0: कितने युवा उसमें,
1: कितने युवा उसमें जुड़े,
0: गांव देहात में, ग्रामीण अंचलों में, वनवासी क्षेत्रों में कितने युवा उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो यदि वैसी पहल हमारे तौर पर भी हो तो वो एक सकारात्मक संदेश जाएगा। और आपके यहाँ से मैं खास तौर से याद करूं गीता संदेश जो कार्यक्रम जाता है
1: जी।
0: उससे भी बड़ी संख्या में बहुत सारे युवक कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: पढ़ना मुश्किल है पर वो गाड़ी में चलते चलाते कहीं ना कहीं कार्यक्रम को सुनते हैं। और आपके ऐसे कार्यक्रमों से मैं भी होता हूं।
1: जी, आप तो उसका एक बिल्कुल हिस्सा है डॉक्टर साहब। क्या संदेश देना चाहेंगे चलते चलते हमारे युवाओं?
0: मैं जोर दे करके कहना चाहूंगा कि भारत से बेहतर जीवन दर्शन दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है। भारत के जीवन दर्शन को समझें, अपने प्रति उत्तरदायी बने, खुद का चौकीदार भी करें
1: जी।
0: अपनी निगरानी जो युवा करे वो समाज के लिए भी यूजफुल होगा, परिवार के लिए भी यूजफुल होगा और अपने दायित्वों को का पूरा पूरा पालन भी कर पाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा वो जो भी कर रहे हैं गंभीरता से करें, जिम्मेदारी के साथ करें, बहुत उत्तेजना का शिकार ना हो, अपनी दिनचर्या को नियमित करें, रोज ग्राउंड में अनिवार्य रूप से जाएं, सोशल मीडिया का प्रयोग मिनिमाइज करें, पेरेंट्स के साथ संवाद को बढ़ाएं और अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग रहें, आस पड़ोस के लोगों के प्रति सुख दुख में बढ़ चढ़ करके भागीदारी करें। तो मैं ये समझता हूँ हमारे ये युवा साथी हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य सिद्ध।
1: बहुत अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर विद्या अलंकार जी। आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत ही बहुमूल्य वचनों के साथ हमारे युवा किस तरह से एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं इस विषय पे जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आपका भी और सभी श्रोता बंधुओं का।
2: तो दोस्तों अभी आपने सुनी एक भेंट वार्ता समाज निर्माण में युवाओं की भूमिका। डॉक्टर राजेंद्र विद्या अलंकार थे इसमें भेंट वार्ता करता थे और भेंट करता है थे महेंद्र मोहन शर्मा। आपने समाज निर्माण में जो युवाओं की भूमिका है यानी आप सबकी जो भूमिका है उस विषय पर जो भेंट वार्ता सुनी, वास्तव में दोस्तों युवा केवल देश का भविष्य ही नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति भी है। जब युवा अपनी ऊर्जा और प्रतिभा को सकारात्मक सोच के साथ सही दिशा देता है तब समाज में जागरूकता, एकता और विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा केवल अपने व्यक्तिगत विकास पर सीमित न रहें बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को भी समझें। परिवार के साथ जुड़ाव, बड़ों का सम्मान, सामाजिक मूल्यों का पालन, जरूरतमंदों की सहायता, ये सभी एक सशक्त समाज की नींव हैं। और युवा यदि शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा और नैतिक मूल्यों को अपनाकर आगे बढ़ें तो वे समाज में परिवर्तन सकारात्मक रूप से ला सकते हैं। तो हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि परिवार के साथ जुड़े रहेंगे, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और एक जागरूक, संवेदनशील और सशक्त भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और अब सुनते हैं ये संदेश।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: तो दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी है कि गर्मी में पक्षियों के लिए घर की छत या बालकनी में पानी जाना पानी जरूर रखें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, कपड़े या जूट बैग के साथ बाहर जाएं, घायल पशु दिखने पर पशु चिकित्सक या हेल्पलाइन को सूचना दें और आसपास जितने भी जीव दिखते हैं उन सभी की जितनी संभव हो सके उतनी मदद करें। अपने गाँव और शहर में स्वच्छता में जो अभियान है उसमें स्वयं का योगदान जरूर दें। जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दें। वहीं सोशल मीडिया पर पर्यावरण और पशु संरक्षण से जुड़े सकारात्मक संदेशों का फैलाव करें। त्योहारों में अत्यधिक शोर और प्रदूषण से बचें ताकि पशु पक्षियों को नुकसान न हो। स्थानीय पौधों और पेड़ों को बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं।

भोजन की बर्बादी आप रोकें और बचा हुआ भोजन जरूरतमंदों तक या पशुओं तक जरूर पहुंचाएं। सड़क पर वाहन चलाते समय अपनी गति सीमा का ध्यान जरूर रखें और युवाओं को नो प्लास्टिक डे जैसे छोटे छोटे अभियान शुरू करने चाहिए। जलाशयों, तालाबों और नदियों की सफाई में योगदान देना भी आपका ही दायित्व है। पक्षियों के लिए छोटे घोंसले तैयार करके पेड़ों पर लगा सकते हैं आप। पेपर बचाने के लिए, कागज़ बचाने के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिक उपयोग करें। जैविक खेती और प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा दें और पशुओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं। और हर माह युवा एक दिन प्रकृति सेवा के नाम समर्पित करें और देखिए आपको कितना आनंद आएगा ये सब करके। वहीं अपने स्कूल और कॉलेजेस में आप ग्रीन क्लब्स बना कर के पर्यावरण की जो संबंधित गतिविधियां उन सब में ही अपना योगदान दे सकते हैं। और युवाओं को, आप सभी को यह समझना चाहिए कि प्रकृति और पशु सुरक्षित रहेंगे तभी देश और समाज सुरक्षित रहेगा और स्वस्थ रहेगा। और इसी संदेश के साथ अब आपसे लेना चाहेंगे हम अनुमति। अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए और अपने आसपास के जितने भी जीव हैं, जो भी पशु पंछी परिंदे जो कुछ है उस सब का भी बखूबी ख्याल रखिए। इसी संदेश के साथ इजाज़त दीजिए आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात आप सुनेंगे आप अंग्रेजी समाचार और शाम 6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रोहतक केंद्र से। कृपया रैली की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धरमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डीके शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देवरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साह ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देवरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत में इलेक्ट्रिक बस डिपो का उद्घाटन किया और विभिन्न जिलों के लिए 80 इलेक्ट्रिक सिटी बसें रवाना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 नए इलेक्ट्रिक बस अड्डे बनाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब का अध्यक्ष नियुक्त किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बागवानी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कटाई के बाद प्रबंधन, पौध कीट नियंत्रण और रोगों के नए विषयों पर मास्टर डिग्री और पीएचडी शुरू करने की घोषणा की। और आज हरियाणा और चंडीगढ़ में ईद का त्यौहार पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति

0: में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पानीपत में इलेक्ट्रिक बस डिपो का उद्घाटन किया तथा विभिन्न जिलों के लिए 80 इलेक्ट्रिक सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत की ऐतिहासिक और पावन धरती से आज हरियाणा में स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था के नए युग की शुरूआत हुई है।
2: साथियों, आज हम हरियाणा में ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का विस्तार कर रहे हैं। पानीपत के ऐतिहासिक हरा से आज 5 जिलों के लिए 80 इलेक्ट्रिक बसें को रवाना करते हुए मुझे भी बड़ा गर्व महसूस हुआ। पानीपत के लिए यहां पर 40 बसें, यमुनानगर के लिए 15 बसें, कुरुक्षेत्र सोनीपत के लिए 10-10 बसें और पंचकुला के लिए 5 इलेक्ट्रिक बसें को रवाना किया गया है। यह हरियाणा के स्वच्छ, सुगम और आधुनिक परिवहन के विषय की शुरुआत है। पानीपत में 7 करोड़ रुपए की लागत से बने इलेक्ट्रिक बस डिपो का उद्घाटन किया है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण और ग्रीन एनर्जी की दिशा में ये आगे बढ़ रही है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बस सेवा से पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण में कमी आएगी तथा लोगों को सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक यात्रा सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत में लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो तैयार किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के 8 अन्य जिलों में भी इलेक्ट्रिक बस डिपो निर्माणाधीन है, जहां बसों की चार्जिंग की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही एक वर्ष के भीतर 10 नए इलेक्ट्रिक बस अड्डे बनाए जाएंगे तथा भविष्य में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार बसों को रेलवे की तर्ज पर ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ने पर भी कार्य कर रही है, जिससे यात्री मोबाइल ऐप के माध्यम से बसों की लोकेशन और आगमन समय की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा और पंजाब के नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हरियाणा में डॉक्टर अर्चना गुप्ता और पंजाब में केवल सिंह ढिल्लों को ये जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा,
3: सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, पूरे के पूरे संगठन का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं और आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने एक महिला कार्यकर्ता में इतना विश्वास जताया कि वो एक प्रदेश अध्यक्ष जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हमारा संगठन पहले ही काफी मजबूत है। संगठन उसी मजबूती के साथ काम करता रहे। सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर और ज्यादा मजबूत और महिलाओं की राजनीतिक में भागीदारी और बढ़े, मेरी प्राथमिकता है।
1: डॉक्टर अर्चना गुप्ता पीजीआई रोहतक से एमडी की डिग्री हासिल कर चुकी हैं। वो पेशे से रेडियोलॉजिस्ट हैं और भाजपा में लंबे समय से सामाजिक और संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़ी रही हैं। वर्ष 2010 से 2016 तक उन्होंने विश्व हिंदू परिषद में जिला सह संयोजिका, संयोजिका और हरियाणा के उपाध्यक्ष जैसी जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्होंने महिला मोर्चा में संगठनात्मक काम किया और पानीपत क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने में भूमिका निभाई। वर्ष 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सक्रिय प्रचार किया, खास तौर पर महिला मतदाताओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर डॉक्टर अर्चना गुप्ता को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मार्गदर्शन व आपके नेतृत्व में संगठन और अधिक सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की जनसेवा, सुशासन और राष्ट्रहित के विचारधारा प्रदेश के प्रत्येक कार्यकर्ता तक नई ऊर्जा के साथ पहुंचेगी।
2: डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी का हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पूरे हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है महिला सशक्तिकरण, मैं उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से आज आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हरियाणा की बेटियों, हरियाणा की माताओं और संघर्ष करने वाली हर महिला का आज सम्मान डॉक्टर डॉक्टर अर्चना गुप्ता के रूप में किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण में निरंतर काम कर रहे हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज करनाल की केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में उद्यानिकी फसलों हेतु गुणवत्तापूर्ण बीज एवं रोपण सामग्री का रणनीतिक प्रतिमान विषय पर चार दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का आयोजन लेफ्टिनेंट अमित सिंह स्मृति न्यास के सहयोग से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल सम्मेलन नहीं बल्कि विकसित भारत के कृषि विजन का संगम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप बागवानी कम समय में किसानों के लिए उम्मीद का केंद्र बन गया है। उन्होंने बागवानी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कटाई के बाद के प्रबंधन, पौध कीट नियंत्रण और रोगों के नए विषयों पर भी मास्टर डिग्री और पीएचडी शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने विश्वविद्यालय को 14 विज्ञान केंद्र प्रदान करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र किसानों तक गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री और वैज्ञानिक सलाह पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना विकसित कृषि के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण बीज और रोगमुक्त पौध सामग्री से कृषि उत्पादन में 15-25% तक और बागवानी फसलों में उत्पादन बीज गुणवत्ता से 30-40% तक बढ़ाया जा सकता है।
4: यदि भारत को आने वाले दशकों में एक वैश्विक कृषि महाशक्ति के रूप में स्थापित होना है तो उसकी नींव कहाँ रखी जाएगी? कृषि का भविष्य छिपा है उसके बीज में और उस पौध में। पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि गुणवत्ता युक्त बीज और पौधे से कृषि उत्पादकता में 15-25% तक वृद्धि संभव है, जबकि रोग मुक्त प्रणाली और सामग्री बागवानी फसलों में उत्पादन और गुणवत्ता दोनों को 30-40% तक ये बढ़ा रही। यही कारण है कि विकसित देश अपनी कृषि नीति में सीड सिक्योरिटी एंड प्लांटिंग मटेरियल क्वालिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम कर रहे हैं।
1: आज हरियाणा और चंडीगढ़ में ईद उल अजहा का त्यौहार श्रद्धा सौहार्द और उल्लास के साथ मनाया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया
5: FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीता संदेश। प्रस्तुति है डॉक्टर रामचंद्र की।
6: श्रोताओं, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 14 से आगे की व्याख्या। नैमाम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाते कर्म भीर न सबध्यते। यह श्लोक पूर्व श्लोकों के ही अनुवर्तन में कहा गया है। यह श्लोक अनासक्त कर्म का स्वरूप प्रस्तुत करता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं संसार में कर्म करता हूँ पर संसार के कर्म मुझ में लिप्त नहीं होते तथा किसी भी प्रकार के कर्म फल के प्रति मेरी कोई आकांक्षा भी नहीं है। जो व्यक्ति मुझे इस रूप में जानता है वह कर्म के बंधन में नहीं बंधता। यह श्लोक जीवन के उस उदात्त दर्शन को हमें स्पष्ट करता है जिसमें हम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। सामान्यतः व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसके बाद उसके परिणामों के प्रति आकांक्षी हो जाता है और उसके नकारात्मक या सकारात्मक फल से भी बहुत प्रभावित होता है। पर इस श्लोक में भगवान ने निष्काम कर्म का ऐसा स्वरूप प्रस्तुत किया है, ऐसी साधना, ऐसी चिंतना प्रस्तुत की है कि जिसमें व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति कर्म को सकाम भाव से करेगा तो वे कर्म उसके जीवन में संस्कार डालते चले जाते हैं और व्यक्ति लगातार उन कर्मों में लिप्त होता जाता है। परंतु यह दर्शन जिसमें व्यक्ति कर्म करते हुए भी निरासक्ति रूप से करे, अनासक्त भाव से करता है, तो कर्म उसके जीवन के बाधक नहीं बनते और उसके जीवन में बंधन के रूप में प्रकट भी नहीं होते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैवं तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। यह श्लोक भी उसी पूर्व सिद्धांत को ही अधिक स्पष्ट करता है और यह प्रेरणा देने वाला श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं कि कर्म के स्वरूप एवं दर्शन की यह यात्रा आज से प्रारंभ नहीं हुई है, अपितु यह यात्रा भारतीय संस्कृति की अंतरात्मा के रूप में है और यह यात्रा अनंत काल से निरंतर आगे बढ़ रही है। इसमें मनुष्य मात्र को कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया है और यह दृष्टि प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत की गई है, जिसमें वे कहते हैं, भगवान कहते हैं कि पुराने समय में भी ऐसे ऋषि मुनि एवं तपस्वी मोक्ष प्राप्ति के आकांक्षी थे, उन्होंने भी कर्म किए थे पर उनके कर्म सकाम नहीं थे, फिर निष्काम कर्म थे, इसलिए हमें भी निष्काम कर्म की परंपरा को अपनाना चाहिए। वस्तुतः यह भी तथ्य है कि वर्तमान समय की युवा पीढ़ी प्रायः करके क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करती है और उसके जीवन में प्रायः जितने भी कर्म हैं वे सकाम कर्म होते हैं और इसलिए सकाम कर्म कभी भी व्यक्ति को स्थायी सुख प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त नहीं करते और इसलिए वे जीवन में क्लेश और तनाव भी उत्पन्न करते हैं। निष्काम कर्म करने से व्यक्ति तनाव एवं अन्य दुखों से बच जाता है। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात। यह श्लोक भी अपने आप में भगवत सत्ता का बहुत गहरा विश्लेषण करता है। जीवन में कर्म क्या है और अकर्म क्या है, यह एक ऐसा गहरा विषय है जिसके संदर्भ में बड़े बड़े विचारक लोग, बुद्धिजीवी लोग भी मोहित हो जाते हैं, वो ज्ञान शून्य हो जाते हैं, उनकी ज्ञान की दृष्टि तिरोहित हो जाती है। यह श्लोक कर्म की उस अवधारणा को प्रकट करता है जो संपूर्ण समाज के लिए एक बड़ा रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किम कर्म किम अकर्म इति, ये कर्म क्या है और ये अकर्म क्या है। कवयः अपि अत्र मोहिताः, ये कवि शब्द केवल कवि वर्तमान में पोइट के लिए प्रयुक्त होता है, उसी के संदर्भ में नहीं है। हमारी भारतीय परंपरा में तत्वदर्शी मनुष्यों के लिए भी कवि शब्द का प्रयोग होता था और इसलिए यहां पर कहा है कि कवयः अपि अत्र मोहिताः, कर्म एवं अकर्म की सम्यक अवधारणा के परिजान में कवि लोग भी, तत्वदर्शी लोग भी मुग्ध हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। आज इस अगले श्लोकों के द्वारा कर्म प्रवक्ष्यामि में कर्म की उस अवधारणा को बताऊंगा जिसको जानने के बाद में तुम अशुभ से, बुरी दृष्टि से मुक्त हो जाओगे और इस संसार से भी मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। इसमें तीन शब्दों का बहुत विशेष रूप से प्रयोग आया है और ये तीन ही शब्द हमारे दर्शन की, हमारे भारतीय दर्शन के आधार भूमि के मूल स्वरूप को प्रकट करते हैं। कर्म, विकर्म तथा अकर्म, इन तीन शब्दों में भारतीय परंपरा का स्थायी रहस्य छिपा हुआ है। श्री कृष्ण श्लोक में कहते हैं कि कर्म की गहन गति के बारे में स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म अर्थात गलत कार्य क्या है, और यह भी जानना चाहिए तथा उसे यह भी स्पष्ट कर लेना चाहिए कि अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का स्वरूप क्या है। इन तीनों को जानने के बाद ही व्यक्ति के जीवन के, अपने जीवन के और समाज के जीवन के यथार्थ स्वरूप को जान पाता है। वस्तुतः कर्म की गति को ठीक से समझ पाना बहुत कठिन कार्य है। गहना कर्मणो गति ही अर्थात साधारण रूप से यह कभी भी स्पष्ट नहीं होता कि उचित मार्ग क्या है। समय विशेष की परंपरा, विचार एवं रूढ़ियां

0: जानता है, परंतु वह गलत कार्यों के बारे में अपनी स्पष्टता नहीं रखता। और यही कारण है कि वर्तमान समय में हम कई बार अपना लक्ष्य तय करते हैं और लक्ष्य तय करने के बाद उसमें विफल हो जाते हैं, क्योंकि गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति बहुत गहन है और उससे जानना आसान नहीं है। गीता को हम बहुत बार केवल अध्यात्म का ग्रंथ समझते हैं। यह अध्यात्म का ग्रंथ है, यह सच्चाई है, पर यह पूर्ण सच्चाई नहीं है, क्योंकि जीवन के कर्तव्य पथ के प्रत्येक मार्ग को स्पष्ट करने का रास्ता भी गीता के इन्हीं श्लोकों से प्रकट होता है। और इसलिए यह जो श्लोक है, यह हमें कर्म के साथ में विकर्म एवं अकर्म को भी गहराई से जानने की दृष्टि प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आज हमने श्लोक संख्या 14 से लेकर के श्लोक संख्या 17 तक की व्याख्या को यहाँ पर सुना।
1: आपने सुना गीता संदेश कार्यक्रम, प्रस्तुति थी डॉक्टर रामचंद्र की। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे खेती बाड़ी में AI तकनीक का उपयोग और इसके महत्व पर। साथ ही भाइयों लेंगे जानकारी कृत्रिम भोजन का मधुमक्खियों के लिए महत्व, और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे प्राकृतिक विधि से खेतों में फसल उत्पादन कैसे बढ़ाओ। साथ ही जो दूसरे समसामयिक विषय है उन पर भी करेंगे चर्चा और करवाऊंगे भैया का मनोरंजन। तो भाइयों शुरुआत करें चर्चा से, कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI तकनीक के उपयोग और इसके महत्व पर। किसान भाइयों, आज जो बदलता हुआ समय है, इस बदलते हुए समय में जो हमारी कृषि पद्धति है और कृषि के जो कार्यकरण के तरीके हैं वो भी बड़ी तेजी से बदलने लग रहे हैं, और ऐसे में भाइयों एक नई जो तकनीक है वो आई है AI, और AI भाइयों है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और सही तरीके से समझो तो भाइयों कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों को मनुष्यों की तरह सोचने की क्षमता दे हुए है, और ये एक ऐसा विज्ञान है भाइयों जिसमें मशीन इंसान की तरह काम करेंगी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्मार्ट तरीके से काम करेंगी, और AI तकनीक मनुष्य से अलग तरीके से बड़ी मात्रा में डाटा को भी संसाधित करेंगी, और AI का लक्ष्य भाइयों मनुष्य की तरह पैटर्न को पहचानना, निर्णय लेना और आकलन करने की क्षमता को विकसित करना है।

0: और खेती बाड़ी में जो एआई है वो बड़ी तेजी तक विकसित होने लग रही है, और एआई ने खेती बाड़ी के स्वरूप को भी बदल कर रख दिया है। क्योंकि भाई कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है वो कृषि उद्योग में तेजी तक क्रांति लेकर आ रही है, और फसलों की पैदावार बढ़ाने खातर, मौसम का पूर्वानुमान लगाने खातर, संसाधनों का सही प्रबंधन करने खातर, और सही मात्रा में खेत में जो खाद है या उर्वरक है या फिर कीटनाशक का अपने छिड़काव करना है, उन सबको बिल्कुल प्रभावी तरीके से करने में मदद कर रहे हैं। एक तरह से अगर हमारे किसान भाई हैं वो एक कल्पना कर सकें कि ऐसी मशीन जो मिट्टी की स्थिति का विश्लेषण कर सके हैं, फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी भी कर सके हैं, दूध उत्पादन खातर दुधारू गाय की निगरानी भी कर सके हैं, और खुद अपने आप फसल ने भी काट सके हैं। इस तरह जो है एक बदलता हुआ स्वरूप हम खेती बाड़ी में देखेंगे। बात करें भाइयों फसल की, जो हमारी फसल का जो स्वास्थ्य है उसकी बात करें, तो जो ये एआई तकनीक है, ये एआई तकनीक जो है हमारी फसलों में इसके माध्यम से जो है हम अपनी फसल में बदलाव कर सके हैं। और फसलों में बदलाव किस रूप में होगा कि जो हमारे जितने भी फसलें हैं इन फसलों में एआई तकनीक का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, तो एआई तकनीक का इस्तेमाल करने से हम मौसम का पूर्वानुमान बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। क्योंकि कई बार देखा जाए कि जो किसान भाई है उसकी फसल नुकसान हो जाए मौसम की वजह से, और अगर मौसम की जानकारी किसान भाई ने सही समय पर मिल जाए और सही विश्लेषण वो अगर मौसम की और वो सही विश्लेषण भाइयों मौसम का कर पाओगा, तो वो जो आने वाली आपदा है उससे बच पाओगा। फसल का स्वास्थ्य हो, मिट्टी और खेत का विश्लेषण करना है, तो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसका उपयोग करके सेंसर और जो छवि है उसके माध्यम से तो जो भी डाटा हमने मिलेगा उससे हम अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का आकलन कर पाओगे, उसकी जानकारी ले पाओगे, जिसमें हमारी मिट्टी में नमी का स्तर कितना है, पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, उन सब की पहचान इसमें शामिल है, और जिसमें भाइयों बदलाव की भी ज़रूरत है। और इस प्रकार का जो अगर हमें अपनी मिट्टी की अपने खेत की पूरी जानकारी हमने अगर मिल जाएगी, तो उससे हमने मदद मिलेगी कि हमने अपने खेत में उर्वरक कितनी मात्रा में देना है, सिंचाई की जरूरत कब है और कितनी हमने सिंचाई करनी है। और इससे भाइयों यो भी सुनिश्चित हो जाएगा कि हर एक क्षेत्र में कम से कम हमने कितनी मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी, ताकि जो है हम अपनी फसल के उत्पादन में भी सुधार कर सकें और हमारी उपज भी बढ़े। साथ ही साथ भाइयों मिट्टी और फसल के आकलन का जो पूरा विस्तृत जो विश्लेषण है वो एआई के माध्यम से हमें बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी, जिससे हम उर्वरक और कीटनाशकों का भी सही उपयोग करने में सक्षम होंगे। क्योंकि आजकल जो देखा जाए है कि जो किसान भाई है वो अंधाधुंध जो है कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं या उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खेत में जितनी ज़रूरत है उससे हम ज़्यादा छिड़काव कर रहे हैं। तो इस तरह की जो एक हमारी जो परंपरा बन गई है वो परंपरा टूटेगी, और इस तरह जो है किसान भाई का एक तो जो पैसा है वो बचेगा, साथ ही साथ हमारा जो पर्यावरण है उसका प्रदूषण भी रुकेगा और फसल की बढ़ोतरी भी देखने मिलेगी। जो पौधे और मिट्टी दोनों के स्वास्थ्य के लिए जो नुकसान पहुंच रहा था उसमें भी हमने लाभ देखने मिलेगा। साथ ही साथ भाइयों जो फसला की बात करें, तो कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है यानी कि जो एआई है उससे जो लेस ड्रोन है या उपग्रह है उनसे फसलों की बहुत हाई क्वालिटी की तस्वीरें ली जा सके हैं, और इनका विश्लेषण जो है एआई अपने अल्गोरिथम के माध्यम तक करके पौधे के स्वास्थ्य के बारे में, उसके विकास की निगरानी के बारे में, उसके तनाव या उसकी बीमारियों के बारे में, कौन से कीटों पर किस तरह की दवाई का हमने छिड़काव करना है, किस तरह के कीट हमारी फसल में लगे हैं, इन सब की जानकारी हमने समय रहते मिल जाएगी। और जब किसान भाई ने समय रहते जो खेत में आने वाली बीमारी है उसका पता लग जाएगा, तो किसान भाई जो आगे संभावित तो नुकसान होना है उसने कम कर पाओगा। और यह तकनीक भाइयों पौधों की बढ़ोतरी, उनकी निगरानी भी करेगी, और साथ ही जो हाई या जो उच्च सटीकता है उसके साथ उपज का अनुमान भी लगाओगी, जिससे कटाई की योजना बनाने में किसान भाई को मदद मिलेगी। साथ ही जो हमारे किसान भाई हैं वो अपने पास पशुधन भी रखे हैं, और पशुधन के माध्यम से किसान भाई जो है दूध का उत्पादन कर रहे हैं, वो भी एक हमारा आमदनी का साधन है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है पशु स्वास्थ्य है, उसका कल्याण है, उसकी उत्पादकता है, उन सब ने बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाओगी। और पशुधन स्वास्थ्य प्रबंधन में भाइयों एआई का जो एकीकरण हो रहा है उसमें पशु के स्वास्थ्य समस्याओं की निगरानी, उनका निदान और उनकी भविष्यवाणी करने के लिए जो है इस तरह से AI को डिजाइन भी किया जाने लग रहा है। और AI का उपयोग भाइयों पशुधन स्वास्थ्य संबंधी जितने भी कार्य हैं उन सब न पूरा कर पाओगी, जिस तरह की पशुओं पर सेंसर लगाकर उनका तापमान, उनकी दिल की गति और उनकी जो गतिविधि है उन सब के बारे में AI हमने जानकारी देगा। इनकी पशु का जो संपूर्ण स्वास्थ्य है उसके बारे में पूरी जानकारी हमने AI के माध्यम से मिलेगी और इस डाटा का विश्लेषण करके जो पशुधन है उसकी हम निगरानी कर पाओगे और सही समय पर अपने पशुओं का प्रबंधन कर पाओगे। और जब स्थिति जो है चिंताजनक या किसी भी असामान्य स्थिति का पता लगाने में भी ये हमारी मदद करेगी, जिससे किसी भी समस्या का जो निपटारा है वो हम तुरंत कर पाओगे और अपने पशुओं की जान भी हम बचा पाओगे। साथ ही भाइयों जो दूध उत्पादन है, दूध निकालने की प्रक्रिया है, उसमें भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है उसका हम उपयोग करेंगे और गाय के जो दूध है या जो हमारी भैंसों का दूध है उसके उत्पादन को भी प्रभावित करेगा। साथ ही दूध उत्पादन में अधिकतम दक्षता भी हमने देखने मिलेगी और उसकी जो गुणवत्ता है उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। साथ ही साथ जो AI है हम उन्हें हर मशीन में इस्तेमाल करने की कोशिश भी करेंगे, जिससे कि जो मशीनें हैं वो खुद काम करेंगी, जिसने हम स्मार्ट फार्मिंग के रूप में भी कैस कहें कि AI का जो उपयोग है वो खेती बाड़ी में खुद चलने वाली मशीनरी या जो मशीनें हैं उनके माध्यम तक करेंगे, जो ऐसे समाधान प्रदान करेंगे जिस तरह की किसानों की जो दक्षता है, उनकी उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ेगी। साथ ही जो किसान भाइयों की मेहनत है, उनका श्रम है वो भी कम होगा और कम समय में कम मेहनत करके किसान भाई जो है ज़्यादा आमदनी, ज़्यादा पैदावार ले पाऊंगे। दरअसल भाइयों AI जो है मशीनी खेती के में जो है कई तरह के काम कर सकता है, जिसमें GPS है, ड्रोन तकनीक है, नेविगेशन तकनीक है, फसलों की निगरानी उनका विश्लेषण है, ताकि जो उपयोगकर्ता है वो आसानी से इन सब चीज़ों ने नियंत्रित कर सके और हम अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही जो है इन सब चीज़ों को नियंत्रित कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी खेती बाड़ी में AI तकनीक के माध्यम से लाभ ले पाओगे। तो ये तो ली भाइयों जानकारी खेती बाड़ी में AI तकनीक का उपयोग और इसके महत्व पर। और भाइयों E11 जानकारी मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस और आने वाले कल का दिन का जो अधिकतम तापमान है वो रहने की संभावना है 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 24 डिग्री सेल्सियस। साथ ही भाइयों बात करें कल के कृषि कार्यक्रम के विषय की, तो कल है भाइयों दिन शुक्रवार और कल अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे गन्ना फसल की देखभाल पर और साथ ही भाइयों चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत वैज्ञानिक विधि द्वारा सब्जियों की नर्सरी किस तरह तैयार करें और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक कीट नियंत्रण अग्नि अस्त्र हम किस तरह बनावें। और इसी के साथ भाइयों एक जरूरी सूचना, अन्नदाता के सम्मान में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026, जिसमें हमारे कृषि विशेषज्ञ, नीति निर्माता और किसान भाई मिलकर जो है तय करेंगे खेती का नया भविष्य। और ये जो कार्यक्रम है भाइयों अन्नदाता के सम्मान में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026, ये 28-29 मई 2026 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर NASC पूसा नई दिल्ली में आयोजित होगा। सूचना समाप्त हुई और इब करवाऊं भैया का मनोरंजन एक संदेश के बाद।
1: दादी की कहानियां, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं आपकी अपनी आवाज है, आकाशवाणी, सुनते रहें, जुड़े रहें।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

ये तो सुनी भजन रागणी और गायक कलाकार थे रामफल शर्मा और साथी। किसान भाइयों लेवा जानकारी, कृत्रिम भोजन का मधुमक्खियों के लिए महत्व। किसान भाइयों जो खेती बाड़ी के साथ साथ अपना पशुपालन कर रहे हैं और पशुपालन के साथ साथ मधुमक्खी पालन का भी काम कर रहे हैं, तो ऐसे भाइयों जो फसल अवशेष है उनका उचित ढंग से हम अगर प्रबंधन करें तो बेहतर गुणवत्ता वाली जो मधुमक्खी वंशों की हम बात कर रहे थे कि मधुमक्खी जो वंश है उसमें मधुमक्खियों को जो दूसरे पालतू पशु हैं उनकी भांति जो है हमने हर रोज भोजन देना जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस तरह हम अपने डांगर डोर पाल रहे हैं तो उसमें तो हमने अपने जो डांगर है अपने पशुधन है उन तक हमने भोजन देना है, पानी भी देना है समय समय पर। लेकिन जो हमारे मधुमक्खी वंश है उसमें ऐसा नहीं है, जहाँ तक संभव हो मधुमक्खियों को अपने परिवार की जो जरूरत है उसके लिए फूलों के जो पराग है या जो मकरंद है वो इकट्ठा वो कर रहे हैं और उसी तक अपना भोजन वो पूरा कर ले हैं। लेकिन कई बार ऐसे अवसर आवे भाइयों या कुछ परिस्थिति इसी भी हो जाए जिसमें मधुमक्खी को प्राकृतिक जो प्राकृतिक पराग है या जो मकरंद है वो नहीं मिल पाता। ऐसे समय में भाइयों उन सुचारू रूप से पालन खातर कृत्रिम भोजन यानी कि जो चीनी की चाशनी है या जो पराग पूरक भोजन है वो खिलाना पड़ा है, और मधुमक्खी और उनके जो शिशु हैं उनके बढ़ोतरी खातर उनके विकास खातर मकरंद और पराग बहुत जरूरी है। तो मकरंद तो उन्हें ऊर्जा मिला है और जो पराग है उससे प्रोटीन और शरीर के विकास में उनकी मदद कर है। तो पराग खाने तक जो कमेरी मधुमक्खी हैं और साथ में जो दूसरी मधुमक्खी हैं उनकी ग्रंथियों का बढ़ोतरी उनका विकास हो है, और इन तक निकलने वाला जो स्त्राव है इनकी जो सफ़ेद दूध है उस रस को जो है शिशु को पिलाया जावा है। तो इनकी जो शिशु है जो विकसित है प्रौढ़ है उन सबका सबका तर मकरंद और पराग बहुत जरूरी है, और ऐसे भाइयों मधुमक्खियां उन्हीं फूलों से भोजन इकट्ठा करें हैं जो विषैली ना हो और जिन पर मकरंद या पराग जो है भरपूर मात्रा में उन्हें मिल जाए। और साथ ही भाइयों पराग और मकरंद के फूल जहां सारा साल भर आसानी से और बहुत मात्रा में उपलब्ध हों तो ऐसे क्षेत्रों में भाइयों मधुमक्खी पालन खातर सबसे बढ़िया माना जावे है, और ऐसी जगह भाइयों कृत्रिम भोजन देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन जब ऐसे क्षेत्र हों जहां पर कई बार जो है मधुमक्खियों खातर उपयुक्त जो है मकरंद या फूल नहीं होंगे तो वहां पर उन तक हम कृत्रिम भोजन देना मजबूरी हो जाए। तो कृत्रिम भोजन की जरूरत क्यों है? क्योंकि मधुमक्खी भाइयों फूलों तक मकरंद और पराग इकट्ठा करके अपने घर में यानी कि अपने छत्ते में इकट्ठा करें हैं, और जो अभाव वाला समय है उसका उचित प्रयोग करके अपने परिवार का निर्वाह कर दे रहे हैं। क्योंकि मधुमक्खी पालक जो है समय समय पर मधुमक्खी वंशों से जो है शहद निकालना है, और मधुमक्खी वंशों के जो पालन पोषण खातर जो आवश्यक शहद है वो उस खातर नहीं छोड़ते, जिसके कारण जो है मधुमक्खी वंश में जो है शहद और पराग की कमी हो जाए और फूलों की कमी की वजह से मधुमक्खी मकरंद और पराग इकट्ठा नहीं कर पाती, और इसी हालत में भाइयों रानी मधुमक्खी या तो अंडे देना बंद कर देगी या बहुत कम अंडे देव है, जिसके साथ ही जो प्रौढ़ और कमेरी मधुमक्खियां हैं उनका अपना जीवन काल भी पूरा होकर वो मर जाए, और इससे भाइयों मधुमक्खी वंश कमजोर होकर खत्म होना शुरू हो जाए। तो ऐसे में भाइयों जो चीनी की चाशनी है उसका भोजन हमें मधुमक्खियों को देना जरूरी है, और एक मधुमक्खी परिवार को हमने कितनी जो है चीनी की चाशनी की मात्रा देनी है यह मधुमक्खी की संख्या पर निर्भर करे है। फिर भी एक जो साधारण कॉलोनी है उसमें 400 से 500 मिलीलीटर की चीनी की चाशनी एक हफ्ते में जरूर देनी चाहिए, और इसने देने खातर भाइयों 1 किलोग्राम चीनी ने 1 लीटर पानी में उबाल कर और ठंडा करके भाइयों मोम जामे में सफ़ेद लिफाफे में डालकर ऊपर तक गांठ या रबड़ बैंड लगाकर उस लिफाफे ने बंद कर दें, और हर एक डिब्बे में 1 लिफाफा मधुमक्खी वंश खातर छोड़ दें। लिफाफा रखने से पहला इसमें भाइयों पिंत 3-4 सुराख कर दें और मधुमक्खियां अपने आप इसमें तरस लेकर अपने छत्ते में इकट्ठा करना शुरू कर देंगी। साथ ही चीनी की जो चाशनी भाइयों उसने हमेशा शाम के समय ही देवें, और दिन में देने पर जो है दूसरी कॉलोनी की मधुमक्खी जो है छत्ते में घुसने का प्रयास करेंगी, इस तरह तो उनमें लूट मार शुरू हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें भाइयों इस लूट मार की प्रक्रिया से बचन खातर, क्योंकि जब लूट मार हो है तो उसमें मधुमक्खी मर जाए हैं, तो लूट मार ना हो इसलिए भाइयों शाम के समय ही जो है हमने ये जो कृत्रिम भोजन है वो देना है।
और चाशनी बनाने में भाइयों गुड़, शक्कर या शीरा का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसको खाने तो भाइयों मधुमक्खियों को दस्त लग सके हैं। मधुमक्खी पालक जो है आमतौर पर केवल भोजन की जो कमी है या जो भोजन की कमी वाला जो समय है उसमें अपने वंशों को कृत्रिम भोजन देवे हैं, जबकि जो मोनाल्य है उसमें प्रबंधन की जो रणनीति है उसके हिसाब से जो अलग अलग परिस्थिति है उसमें हमने चीनी की चाशनी देना बहुत जरूरी है। जिस तरह सर्वाइकल फीडिंग, जब मधुमक्खियों को कहीं कोई प्राकृतिक भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता तब मधुमक्खियों को जिंदा रहने के लिए भाइयों उन्हें खुराक दी जाओ है, और इसे मधुमक्खियों की जो सर्वाइकल फीडिंग है कम है, और ऐसा समय भाइयों केवल गर्मी और बरसात के मौसम में ही ज़्यादातर देखा जावा है। इसके अलावा भाइयों मधुमक्खी में जो है मधुस्राव शुरू होने से पहला यानी कि लगभग 3-4 हफ्ते पहला मधुमक्खियों को शिशु पालन और उसके प्रोत्साहन खातर फीडिंग दी जावा है, और इस खुराक के कारण भाइयों रानी मधुमक्खी अधिक अंडे देना शुरू करते हैं। इस तरह की जो खुराक है उसमें मधुमक्खी वंशों में मकरंद और पराग इकट्ठा करने वाली जो कमेरी मधुमक्खी है उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाए, और इस खुराक तो भाइयों कॉलोनी का हौसला बढ़ा है और कमेरी जो मधुमक्खी है वो ज़्यादा क्रियाशील होकर अच्छे तक काम कर रहे हैं, और इस खुराक में भाइयों चीनी की चाशनी की 40% मात्रा का प्रयोग ले सके हैं। साथ ही मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियों की जो दिनचर्या है उसमें कई अवसर इसे आए हैं जब वे काफ़ी असामान्य और उत्तेजित हो जाए, तब उन्हें फीडिंग देकर सामान्य करके दोबारा काम की तरफ मोड़ा जा सके है, और यह खुराक भाइयों मुख्य रूप से 4 भागों में बांटी जावे है। 1, जब मधुमक्खी कॉलोनियां खरीद कर जब नई जगह पर स्थापित करें तो हमने देनी है। 2, जब वक्त छूट होकर पकड़ कर नए बॉक्स बसाए जावें तब हमने ऐसा करना है, और जब 2 मोन वंशों को आपस में मिलाना हो तब, साथ ही जब बड़े पैमाने पर रानी का उत्पादन करवाया जावे तब भी हमने जो है मैनिपुलेटिव जो फीडिंग है यानी कि जो एक कृत्रिम भोजन है वो देना जरूरी है। इसके अलावा भाइयों जब मधुमक्खी वंशों में कोई रोग लग जाए तब चीनी की चाशनी में एंटीबायोटिक यानी कि बी कॉम्प्लेक्स या फिर फ्यूमिडिल बी आदि का उपयोग जो है करके उनमें जो बीमारी है उनकी संभावना को कम करा जा सके है। साथ ही भाइयों पराग पूरक भोजन बनाने में सोयाबीन का आटा काम में लिया जा सके है, और आटा ऐसा होना चाहिए कि उसमें तेल की मात्रा 5% से ज़्यादा ना हो। साथ ही सोयाबीन का आटा मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करे है, उन्हें स्वादिष्ट बनाने खातर भाइयों उसमें कुछ दूसरे पदार्थ भी मिलाए जा सके हैं। 25 भाग सोयाबीन का आटा, 15 भाग उसमें पाउडर वाला दूध, 10 भाग उसमें भाइयों मेडिसिनल या बेकरी ईस्ट डाल दें, 40 भाग उसमें पिसी हुई चीनी का, और 10 भाग भाइयों शहद में आटे की तरह उसमें गूंथ लें, और शहद और चीनी मिलाने तो भाइयों भोजन में कई दिन तक नरमाई बनी रहेगी, और इस भोजन की 75-100 ग्राम की जो पेड़ी बनाकर कागज पर रखकर फ्रेम की जो ऊपर वाली जो सतह है उस पर उल्टा करके रख दें। यह खुराक 1 कॉलोनी खातर 1 हफ्ते तक पर्याप्त रहेगी, और इसके बाद भाइयों दोबारा हम यह खुराक दे सके हैं, और पराग और शहद भाइयों उसका मिश्रण भी मधुमक्खियों के वंशों को मजबूत करने में मदद करे है। इसके लिए जब पराग स्रोत बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो उस समय कॉलोनियों के प्रवेश द्वार पर पराग पोष लगाकर उसको एकत्रित करा जा सके। तो ये तो भाइयों ली जानकारी कि जो मधुमक्खी वंश है उसमें कृत्रिम भोजन का महत्व। इसके साथ भाइयों आज की नसीहत के तहत जानकारी लें भाइयों प्राकृतिक विधि से खेतों में फसल उत्पादन किस तरह बढ़ावा। किसान भाइयों प्राकृतिक विधि से खेतों में फसल उत्पादन बढ़ाने खातर जो रासायनिक खाद है उनकी जगह अगर हम देसी गाय की गोबर और देसी गाय का मूत्र जो है अगर हम प्रयोग करें और उसमें भी खास तौर पर जीवामृत और घन जीवामृत का अगर हम प्रयोग करें तो हम प्राकृतिक विधि से ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन ले सकेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने खेतों में रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं और रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति भी कम होने लग रही है, जो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ है उसकी मात्रा भी कम होने लग रही है, और साथ ही साथ वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण भी बढ़ने लग रहा है। तो ऐसे में भाइयों हमने जो है ये जो जहरीली खेती है उसको छोड़कर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब हम जीवामृत और घन जीवामृत का प्रयोग करें तो मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए इसमें हम

0: मल्चिंग अगर अपनावें साथ के साथ, ऐसा करने से भाइयों हमारी फसल की उत्पादकता भी बढ़ेगी और साथ ही साथ हम प्रकृति के साथ भी जुड़ेंगे। और इसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं, मिश्रित खेती या फसल चक्र का नियमित पालन करना। जिस तरह भाइयों अगर बात करें मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ानी है तो हम उसमें जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं। 200 लीटर पानी में 10 किलो देसी गाय का गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ और मुट्ठी भर मिट्टी मिलाकर उसने 48 घंटे तक रख दें और इसने सिंचाई के पानी के साथ या स्प्रे के रूप में भी हम खेत में दे सके हैं। साथ ही घन जीवामृत की बात करें तो भाइयों देसी गाय के गोबर, गुड़ और दाल के आटे ने यानी कि जो बेसन है उसने मिलाकर सूखी खाद के रूप में भी हम बुआई के समय इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलेगा। साथ ही मल्चिंग जरूर अपनावें खेत की नमी को सुरक्षित रखने खातर और खरपतवार न रोकने खातर। भाइयों फसल के बीच में खाली जगह पर सूखी पत्तियों या फसल के अवशेष की एक परत बिछा दें, इसी नाम को है मल्चिंग। इससे एक तो मिट्टी में नमी बनी रहेगी और साथ ही साथ भाइयों जो खरपतवार है उस पर भी नियंत्रण बना रहेगा। इसके अलावा भाइयों अंत फसल या मिश्रित फसल तकनीक अपनाना, क्योंकि केवल एक फसल पर निर्भर ना रहें और मुख्य फसल के साथ साथ भाइयों दलहनी फसल जिस तरह मूंग है, चना है, वो जरूर लगावें। और दलहनी पौधों की जड़ में जो है हवा तक नाइट्रोजन खींचकर प्राकृतिक रूप से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा दें, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़े है और जो हम बाहर तक नाइट्रोजन डाल रहे हैं खेत में उसकी जरूरत कम हो जाए भाइयों। इसके अलावा बीज उपचार की बात करें तो भाइयों बुआई तक पहला बीज को देसी गाय के गोबर, गोमूत्र और मिट्टी के जो बने लेप हैं यानी कि जो जीव बीजामृत है उससे उपचारित करें और इससे भाई फसलों में जो फफूंद जनित जितने भी रोग हैं उनका खतरा लगभग खत्म हो जाएगा और अंकुरण भी अच्छा होगा। तो ये तो भाइयों जिक्र करें प्राकृतिक विधि से खेतों में फसल उत्पादन किस तरह करें। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: उतला बोल रहे हैं?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: और इसी के साथ भाइयों आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब होगा भाइयों के लिए कार्यक्रम

कार्यक्रम ग्राम संसार सुनिए सारे बाण भैया ने एक बार फिर विनोद भाई की मीठी मीठी राम राम। भाइयों आज है दिन वीरवार और वीरवार ने हम कार्यक्रम ग्राम संसार में लेकर आए हैं थारी पसंद। और थारी पसंद कार्यक्रम में जो हमारे श्रोता भाई हैं वो अपने अपने संदेश भेजे हैं और उन्हीं के संदेश आप उनकी फरमाइश के लोकगीत भी सुना है। तो इसी कड़ी में भाइयों आज का जो पहला संदेश आया है वो आया है गांव उगाड़ा जिला अंबाला हरियाणा से और लिखने वाले भाई हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और इनके परिवार के सदस्यगण। और गांव जगुड़ी जिला यमुनानगर से लिखने वाले भाई हैं चौधरी रणधीर सिंह बांगड़, गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम, वीरेन, मनराज और इनके परिवार के सदस्यगण। नांगल से लिखने वाले भाई हैं इंद्रराज, हर्ष, पारस और इनके परिवार के सदस्यगण। और गांव संघोर से लिखने वाले भाई हैं विकास, जेंटी, विराट, सम्राट और काश्वी। और इनकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनाओ भाइयों फिल्म चंद्रावल का ये लोकगीत।

0: किसानों की पहली पसंद कंबोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज
1: अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध।
0: कंबोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर
1: 120-8765 यानी 1208765 देखकर ही खरीदें।
0: खर्चा कम उत्पादन ज्यादा, ये है कंबोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
1: 9813173102।
0: कंबोज एक्सपोर्ट्स भरोसे का प्रतीक।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: और भाइयों, इवलेवन जानकारी, आधुनिक समय में बढ़ती एआई तकनीक की भूमिका और उसके महत्व पर। भाइयों, आधुनिक समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है हमारे जीवन और हमारे काम और हमारे समाज का एक अब अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। जाने अनजाने बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि जो है ये एआई तकनीक है किस तरह उनके जीवन में अपने आप आ गई और किस तरह उसके जीवन को आसान बना दिया है। और इसकी बढ़ती भूमिका का जो महत्व है वो मुख्य रूप से हमारी जो कार्य क्षमता है उसमें सुधार कर रहा है। जितनी भी जटिल समस्याएं हैं उनने उनका बड़ा तेजी से समाधान करा है। और व्यक्तिगत जो अनुभव है और जो डाटा संचालित जो तकनीक है उसका निर्णय लेने में भी हमारी क्षमता को बढ़ा हुआ है। और बात कर अगर स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा में, तो एआई ने चिकित्सा के क्षेत्र में तो बड़ा क्रांतिकारी बदलाव कराया है। चाहे वो हमारे उन्नत एल्गोरिदम है, एक्सरे है, एमआरआई है या जो स्टीक स्कैन है, उनका विश्लेषण करके बीमारियों का जो है बहुत शुरुआती अवस्था में हम पता लगा पाए हैं। साथ ही जो एआई तकनीक है उसका उपयोग करके हम नई नई दवाओं की खोज की जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी तेजी तय, और जो दवाइयां हैं उनको सस्ता बनाने में भी मदद कर रहे हैं। साथ ही मरीजों के जो मेडिकल डाटा उसके आधार पर जो है एआई हर एक व्यक्ति के लिए विशेष उपचार योजना तैयार करने में भी मदद कर रहे हैं। चाहे वो ऑपरेशन है या कोई भी तकनीकी काम है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसमें हर क्षेत्र में जो है एआई अपना काम कर रहा है। बात करें शिक्षा और अनुसंधान में, तो शिक्षा प्रणाली में भी एआई के माध्यम से जो है बहुत सारे काम हमारे सुलभ और आसान हो गए हैं। चाहे वो स्मार्ट ट्यूटर हो, एआई संचालित प्लेटफॉर्म पर छात्रों की संख्या, छात्रों को जो सीखने की जो क्षमता है वो समझ कर व्यक्तिगत जो फीडबैक है वो हमने मिला है, और उनकी गति के अनुसार भाइयों पाठ योजना तैयार करी जा सके है। वैज्ञानिक जटिल डेटा का विश्लेषण करके तेजी से नए नए अनुसंधान और नए नए निष्कर्ष पे इसमें बड़ी तेजी से पहुंच रहे हैं। इसी तरह भाइयों, एआई जो है वो व्यवसाय और जो अर्थव्यवस्था है उसको भी खड़ा करने में हमारा योगदान दे रही है। चाहे वो दोहराव वाले निरस्त काम हो, वो एआई द्वारा अपने आप संचालित करे जा सके हैं, जिससे मानव संसाधन और जो हमारे जो मानव संसाधन है उनका प्रयोग कम तक कम हुआ है और जटिल काम जो है आसानी तक करे जा सके हैं। साथ ही वित्त और जो बैंकिंग क्षेत्र है उसमें एआई अल्गोरिदम जो है वो वास्तविक समय में जितने भी संदिग्ध लेन देन है उनकी पहचान कर रहा है और जो धोखाधड़ी है उसको रोकने में मदद कर रहा है। इसी के साथ भाइयों, जो ई कॉमर्स और रिटेल क्षेत्र है उसमें भी एआई का उपयोग जो है हमने बिल्कुल सही उत्पाद अनुशंसा देवे हैं और जितनी भी इन्वेंट्री है उसका प्रबंधन करने में भी मदद कर रहे हैं। चाहे वो हमारे प्रशासनिक और सरकारी काम है उसमें भी एआई की भूमिका बड़ी तेजी से बढ़ रही है। नीति निर्माण हो और पूर्वानुमान हो, भारी मात्रा में सामाजिक और आर्थिक डेटा का विश्लेषण करके सरकारें अपनी रणनीति जो योजनाएं हैं वो बनाने में सक्षम हो पा रही हैं और उनको बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम अपने दैनिक जीवन में भी देखें तो हमारा जो दैनिक जीवन है बड़ा स्मार्ट होता जा लग रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हम देखने लग रहे कि जो सड़कों पर गाड़ियां लग रही हैं वो भी बिना ड्राइवर की गाड़ी चलने लगेंगी जो कि एआई तकनीक तक चलेंगी। साथ ही अगर हम वर्चुअल असिस्टेंट की बात करें तो सिरी, एलेक्सा, ये आधुनिक जनरेटिव एआई मॉडल हमारे दैनिक काम को आवाज और टेक्स्ट के माध्यम से आसान बढ़ाने लग रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाओ कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो खेती बाड़ी है, चाहे वो व्यवसाय है, चाहे हमारे दैनिक जीवन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हर क्षेत्र में एआई जो है इंसान का काम आसान करने लग रही है और इसी की वजह से जो है हमारे काम जो है वो बेहतर होने लग रहे हैं और कम समय में हम अच्छे परिणाम ले पा रहे हैं। ये तो ली भाइयों जानकारी आधुनिक समय में बढ़ती एआई की भूमिका और इसके महत्व पर।
0: किसानों की पहली पसंद कंबोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज
1: अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध।
0: कंबोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर
1: 120-8765 यानी 1208765 देखकर ही खरीदें।
0: खर्चा कम, उत्पादन ज्यादा, ये है कंबोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
1: 9813173102।
0: कंबोज एक्सपोर्ट्स, भरोसे का प्रतीक।
6: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और अर्थव्यवस्था, यह यूनेस्को का संदेश है। आज भी दुनिया की अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। 31% तेल, 27% कोयला और 25% प्राकृतिक गैस। इसके मुकाबले हाइड्रो, सौर, पवन और जैव ऊर्जा जैसे स्वच्छ स्रोत सिर्फ 17% हैं। जीवाश्म ईंधन का संग्रह दशकों तक रहने का अनुमान है, लेकिन उनका अत्यधिक इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन को और बढ़ाएगा, इसलिए हमें जल्द ही इसे रोकना होगा। यदि हम जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित नहीं करते तो इसे दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आर्थिक विकास को ऐसे बढ़ाना चाहिए कि उत्सर्जन ना बढ़े और पानी, भोजन और ऊर्जा की सुरक्षा बनी रहे। हरित प्रौद्योगिकरण का उपयोग करने से विशेषकर युवाओं के लिए कई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है, महासागरों में अत्यधिक गतिशील ऊर्जा होती है जो भविष्य में हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकती हैं।
0: किसानों की पहली पसंद कंबोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज
1: अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध।
0: कंबोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर
1: 120-8765 यानी 1208765 देखकर ही खरीदें।
0: खर्चा कम, उत्पादन ज्यादा, ये है कंबोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
1: 9813173102।
0: कंबोज एक्सपोर्ट्स, भरोसे का प्रतीक।
5: और भाइयों आप सुन रहे हो कार्यक्रम थारी पसंद, और थारी पसंद में जो कार्यक्रम का अगला संदेश आया है वो आया है गांव तेजा मोड़ी जिला अंबाड़ा से, और लिखने वाले भाई हैं बंसीलाल संधु, कबीर और इनके परिवार के सदस्यगण। साथ ही भाइयों एक संदेश आया है गांव ध्यांगला जिला कुरुक्षेत्र से, लिखने वाले भाई हैं मांगेराम सैनी, जीत राम सैनी, नैविश सैनी, देवांश सैनी और इनके परिवार के सदस्यगण। इसके अलावा भाइयों ये संदेश आया है गांव ठोल कुरुक्षेत्र से, लिखने वाले भाई हैं राजीव कुमार, विवेक, रितेश और इन सब की मिलीजुली फरमाइश

ये तो सुना भैया ने फिल्मी लोकगीत और फिल्म थी छैल गेल्या जांगी। और कार्यक्रम का भाइयों अगला संदेश आया है गांव मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से। लिखने वाले भाई हैं यशपाल धीमान, श्रीमती कृष्णा धीमान, राहुल धीमान, शुभम धीमान, आंचल कुंज, पर्व प्रवीण धीमान और चिराग धीमान। साथ ही हैं रजत राजेश धीमान और इनके परिवार के सदस्यगण। और अगला संदेश आया भाइयों खुर्जा उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले भाई हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और इनके परिवार के सदस्यगण। कार्यक्रम का अगला संदेश आया है योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अंबाड़ा से। और लिखने वाले भाई हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, गुरकीरत, मन्नत, गुरशब्द सिंह राहुल और इनके परिवार के सदस्यगण। और गांव राम सावड़ा जिला सहारनपुर यूपी से लिखने वाले भाई हैं ब्रिजपाल, श्यामवीर, पूजा देवी, मोनी देवी, सोनम देवी, उन्ती देवी, उत्सव और इनके परिवार के सदस्यगण। और इनकी मिलीजुली फरमाइश में सुनाओ भाइयों ये फिल्मी लोकगीत।

0: ये तो सुना भैया ने फिल्मी लोकगीत, और फिल्म थी म्हारी धरती म्हारी माँ। और इसी फिल्मी लोकगीत के साथ भाइयों आज के ग्राम संसार कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्राम संसार FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और प्रस्तुत है कार्यक्रम जय जवान।

कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार ज्योतिषमा की ओर से। और भारत की सरहदों पर दिन रात देश की रक्षा में तत्पर हमारे वीर जवानों को समर्पित ये कार्यक्रम जय जवान। तो स्वागत है आप सभी का। और हमारे फौजी भाई जो अपने परिवार से दूर रहकर देश की सुरक्षा का दायित्व निभाते हैं, उनके साहस, समर्पण और देशभक्ति को हम सलाम करते हुए पेश करते हैं गीतों, संदेशों और भावनाओं से सजाई ये कार्यक्रम। और कार्यक्रम का आगाज करते हैं आज फिल्म ताल के गीत के साथ, जिसमें आवाज है अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत है AR रहमान का।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: और आइए अब सुनते हैं फिल्म हाथी मेरे साथी का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, आनंद बख्शी की शब्द रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय जवान FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया की कड़ी संख्या 4।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं AIR FM कुरुक्षेत्र और अब समय हो गया है ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक उपहार का।

0: नमस्कार, मैं मीनू ऑर्गेन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में आपका स्वागत करती हूं। ऑर्गेन इंडिया दिल्ली की एनजीओ पराशर फाउंडेशन की पहल है, जो अंगदान, उत्तकदान और देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करती है। आज के कार्यक्रम में हम अंगदान से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं।
1: दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, उनका नाम है राजेंद्र देवरा और ये माउंट आबू के पास सिरोही जिले से आते हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। राजेंद्र जी, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपके बारे में पूरा तो नहीं बताया, बट थोड़ा सा बताया कि आप एक किडनी रिसिपिएंट हैं और कुछ साल पहले आपको किडनी फेलियर का सामना करना पड़ा था, तो थोड़ा सा आप पहले अपने बारे में बताइए। आप टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं, आप कहाँ रहते हैं, कौन कौन आपकी फैमिली में है, और फिर आप अपनी किडनी की कहानी बताइए कि कैसे ट्रांसप्लांट तक बात पहुंची, कैसे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई।
2: मेरा नाम राजेंद्र सिंह है सर, मैं राजस्थान सिरोही जिले से हूं। अभी राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर मैं एज ए प्राइमरी टीचर गांव के अंदर ही पद स्थापित हूं। मेरे परिवार में मेरे फादर, मदर और एक ब्रदर और एक सिस्टर है। 2017 के अंदर सर मुझे ये प्रॉब्लम है किडनी फेलियर का, वो फेस करना पड़ा। उससे पहले भी प्रॉब्लम थी, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। जब 2017 में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और मैंने चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी जो किडनी है दोनों वो श्रिंक हो गई है और बीपी भी उस समय हाई रहता था और सर कई तरह की और भी कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम मुझे देखनी पड़ रही थी। तो 2017 में फाइनली डॉक्टर ने बताया कि ट्रांसप्लांट के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। मेरे लिए ये शॉकिंग था कि सबसे जो एक नशा कह सकते हैं वो नशा मेरा था खेलने का
1: जी।
2: स्कूल टाइम से मैंने फुटबॉल नेशनल खेला है और कई ऐसे गेम्स है जो वॉलीबॉल, क्रिकेट भी मैं रेगुलर खेलता हूँ और अपनी फिटनेस पे खूब ध्यान रखता था। तो ये शॉकिंग था, लोग भी कहते हैं कि ये नशा करने से ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो इस तरह की व्यसन की मेरी कोई आदत नहीं थी, तो मुझे भी लगा कि ऐसे कैसे हो गया। फिर अलग अलग डॉक्टर से राय लेने के बाद गुजरात अहमदाबाद अपोलो हॉस्पिटल के अंदर मैंने मेरा ट्रांसप्लांट करवाया और उसमें मेरे फादर है, उन्होंने मुझे किडनी डोनेट किया।
1: कोई डॉक्टर ने कोई स्पेशल वजह बताई कि बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन फिजिकल एक्टिव रहने के आप जो बिना किसी
2: सर डॉक्टर से मैंने भी सलाह की तो उन्होंने बताया कोई ऐसा विशेष रीजन नहीं है। तो जब मैं मेरी प्रॉब्लम लेके गया तो मेरा बीपी है वो 180-190 रहता था, लेकिन सर 180-190 के अंदर भी मैं नॉर्मल फील करता था। तो फाइनली ये निष्कर्ष पे निकले कि डॉक्टर का कहना है कि आपकी बॉडी के अंदर बीपी है वो कम से कम 3-4 साल से रहा होगा। तो मैं भी ये अंदाजा लगाता हूँ कि सर 3-4 साल पहले, 2017 से पहले मेरे मदर है वो थोड़े बीमार रहे, साल भर मैंने उनको हैंडल किया, तो हो सकता है स्ट्रेस की वजह से वो बीपी बॉडी में आया और उसका कोई सिम्टम्स है वो मुझे देखने को नहीं मिला, लेकिन अंदर ही अंदर किडनी को डैमेज कर गया।
1: फैमिली में भी कोई हिस्ट्री नहीं थी?
2: नहीं सर, फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है।
1: श्रोताओं, मैं ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले कि बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन या फिजिकल एक्टिव रहने के बावजूद, सब चीजें सही करने के बावजूद भी कभी कभी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, तो ये कभी भी हो सकता है। इसीलिए हम ये शोज ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आपको हमारे बताने से शायद इतना फर्क ना पड़े, लेकिन जिसने ये सब कुछ सफर किया है उसके बताने से आपको जरूर फर्क पड़े। चलिए हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको ये बताया गया डॉक्टर के द्वारा, एंड ऑब्वियसली डाउट तो आया होगा कि हो सकता है कुछ रिपोर्ट में गलती हो, कहीं डॉक्टर की गलती हो या कुछ और।
2: मुझे लगा कि ऐसे नहीं हो सकता, कुछ मिराकल हो जाए या मेरी किडनियाँ ठीक हो जाए। वैसे एक पढ़ा लिखा होने के बाद और एक टीचर के बाद में थोड़ा बहुत नॉलेज रखने के बाद मुझे पता था कि ये चीज़ें जो है वो मेडिकली है और दवाइयाँ से ठीक हो सकती है। तो मैंने अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट किया और एक सबकी एक राय निकल के आई कि आपको ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ेगा। फाइनली सर फिर मैं ट्रांसप्लांट के लिए गया।
1: राजेंद्र जी, जब आपको फाइनली आपने डिसाइड कर लिया कि आप किडनी ट्रांसप्लांट ही करवाना है, तब क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ी उस टाइम पर?
2: सर ये फैमिली के लिए भी शॉकिंग था, बाकी मेंबर्स है वो नर्वस हो गए थे जब उन्होंने ये सुना कि किडनी डैमेज होना, उसका ट्रांसप्लांट होना। मतलब ट्रांसप्लांट क्या होता है सर, ये बेसिक ये डेफिनेशन भी किसी को पता नहीं थी। तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं मेंटली और फिजिकली काफ़ी मजबूत था और ये समझा कि जो भी प्रॉब्लम है वो भगवान ने दी है और उसको फेस करना ही है। तो मेंटली फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग रह के परिवार के जो बाकी मेंबर भी जो इमोशनली कमज़ोर पड़ रहे थे उनको भी मैंने मोटिवेट किया, ये जो पीड़ा है या इससे हम बाहर निकल जाएंगे, लेकिन एक बार इसको अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो इसका इलाज है वो लेना ही पड़ेगा। तो सर फाइनली मतलब मैंने अपने आप को खूब मजबूत बनाए रखा और परिवार का, मित्रों का, रिश्तेदारों का भी मुझे खूब सपोर्ट मिला और इस वजह से मेरा ट्रांसप्लांट है वो सक्सेस हुआ।
1: आपने कभी कैडेवर के बारे में नहीं सोचा, कैडेवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में?
2: इस कैडेवर के बारे में मुझे पता था और मैंने फाइनली जब ये तय किया काफ़ी लोगों से चर्चा के बाद कि मुझे गुजरात के अंदर ही ट्रांसप्लांट करवाना है, तो सर बॉडी है वो लगभग साल भर मेरा जो डायलिसिस चला तो उसमें डायलिसिस भी मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था। हर दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे बेहोशी हो जाती, तो ये डॉक्टर का भी कहना था कि आप जितना जल्दी हो सके ट्रांसप्लांट करवाएं। तो सर मुझे 2-3 डेट मिली ट्रांसप्लांट की, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे, इस तरह से डेट भी है वो आगे पोस्टपोन होती रही, क्योंकि जब भी ट्रांसप्लांट की डेट दी जाती कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता और मुझे दूसरे डॉक्टर के पास रेफर कर दिया जाता है। इस तरह से टीबी भी डिटेक्ट हुआ, के बाद दांत के अंदर, टीथ के अंदर कैविटी पाई गई, तो इस तरह से मेरा ट्रांसप्लांट है वो सर साल भर के लिए पोस्टपोन हो गया और मुझे लंबे समय तक हॉस्पिटल स्टे करना।
1: सर आपने बताया कि आपके फादर फाइनली रेडी हुए थे डोनेट करने के लिए, तो क्या एज थी फादर की उस टाइम?
2: उस समय सर फादर की एज लगभग 51-52 के आसपास थी और फादर का कोई वेशन नहीं है, वो फिजिकली फिट है, उनको शुगर बीपी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कि वो चाय भी नहीं पीते हैं, सुबह वॉकिंग करना वगैरह, फिजिकली फिट, योगा, उस हिसाब से बाकी मेंबर भी रेडी थे। लेकिन जब वो मैचिंग, ब्लड मैचिंग वगैरह ग्रुप के हिसाब से फाइनली ये तय हुआ कि फादर ने बोला कि नहीं, के लिए।
1: किस तरह का पेपर वर्क करना पड़ा आपको इसके लिए?
2: सर पेपर वर्क में काफी कठिनाई आती है आजकल फ्रॉड की ये चीजें देखते हुए। पहले कई खबरें देखने को मिलती थी कि किडनी है उसकी खरीद फरोख्त हो गई है, तो इस तरह के मामलों को रोकने के लिए विशेषकर मैंने जो गुजरात के अंदर से अनुभव किया है कि सारा काम है वो फेयरली होता है। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनाने में कम से कम 3 महीने लग जाते हैं, हाईकोर्ट के जज की कमेटी बैठती है, डॉक्टर्स बैठते हैं, साइकोलॉजिस्ट है वो डोनर रिसिपिएंट का अलग अलग उनका इंटरव्यूज लेते हैं और फाइनली डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, सबमिट होते हैं, तो इस प्रक्रिया में लगभग 3 महीने लग जाते हैं।
1: दोस्तों हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर फैमिली में से भी कोई डोनेट करने तैयार होता है तो भी आपको बहुत सारे परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और उसके बाद ही परमिशन दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और अंगों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा देते हैं, जो कि हमारे इंडिया में और लगभग सारी दुनिया में पूरी कानूनन जुर्म की श्रेणी में आता है, कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। तो जब भी कभी किसी को किडनी या लीवर की ज़रूरत होती है वो लोग सोचते हैं कि हम तो पैसे देकर किडनी या लीवर ले लेंगे, बट जो कि कानूनन जुर्म है और बिल्कुल गलत है, हमें इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऑनलाइन हम देखते हैं कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आपको देखने मिल सकते हैं, अगर कभी किसी को ज़रूरत ऐसी हो और वो ऑनलाइन सर्च करें तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आपको देखने मिल जाएंगे कि किडनी के इतने रुपए में मिल जाएगी किडनी, या फिर आप किडनी डोनेट करने की कोशिश कर रहे हो कोई लोन चुकाने के लिए या अपने परिवार की स्थिति सुधारने के लिए, तो आपको ऐसे 1000 एडवर्टाइजमेंट्स मिल जाएंगे, विज्ञापन मिल जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको इतना अमाउंट मिलेगा। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सब कुछ स्कैम है, फ्रॉड है, ऐसा कुछ एक्चुअली में नहीं होता है। आपसे रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंटेशन की फ़ीस के चार्ज पर, फीस के नाम पर कुछ चार्ज, अमाउंट चार्ज किया जाएगा और वो अमाउंट जब आप दे देंगे उन्हें तो वो लोग गायब हो जाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अल्टीमेटली आप और परेशानी में बढ़ जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करते हुए हमें अंगदान के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अंगदान के लिए आगे आएँ और ऐसे मरीजों की जान बचा सकें, उन लोगों को अंग जल्दी से जल्दी मिल सके, ताकि वो ऐसे इलीगल कामों के लिए आगे जाने की कोशिश ही ना करें। बात कर रहे थे उनके किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में और कई अच्छी चीज़ें हमें पता चली, जैसे कि लीगल वर्क क्या होता है और कितने महीने लगते हैं इसमें और कैसे किडनी खराब हो सकती है। तो चलिए हम इस चर्चा को जारी करते हैं आगे राजेंद्र जी के साथ। राजेंद्र जी, आप तो बहुत लकी थे कि आपको फैमिली में हमारे डोनर मिल गया और कैडेवर के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ा, लेकिन हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं अंगदान को लेकर, बहुत सारे कुप्रचार हो रखा है इस चीज़ के बारे में, जिसके कारण लोग अंगदान के लिए आगे नहीं आते। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी?
2: सर ऐसे लोगों के लिए मेरा मैसेज यही है कि जैसे मैं मेरा एग्जांपल दूँ तो मेरे फादर मेरे डोनर हैं, तो मेरा ट्रांसप्लांट होने के बाद मेरे गांव के आसपास 10-20 किलोमीटर की रेंज में ऐसे पेशेंट मिले जिनको किडनी फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। तो सर एज ए स्पोर्ट्स पर्सन और सोशल वर्कर भी हूँ मैं, तो आसपास के लोग मुझे जानते हैं, जब उनको पता लगा कि मेरा ये किडनी ट्रांसप्लांट हो रखा है तो आसपास, यहाँ तक कि सर 100 किलोमीटर के दायरे में भी किसी को प्रॉब्लम हुई है मेरे पास फोन आते हैं, और एज ए सोशल वर्कर मैं उनके साथ हॉस्पिटल भी जाता हूँ, कन्विंस भी करता हूँ। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा सर, मेरे एक फ्रेंड थे, पहले से मैं उनको जानता था और उन्हें किडनी फेलियर का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम है वो जो फ़ोन से मुझे शेयर की, बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ कि आगे क्या किया जाए, कैसे होगा। मैंने उनको बोला कि आप मुझे नहीं मिलिए, मैं आपके घर पे आता हूँ। सर मैं उनके घर पे गया और उनको सारी चीज़ें हैं वो क्लियर बताई कि आपको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, इसकी या ये प्रोसेस है, आप अपने घर से कोई डोनर तैयार कीजिए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उनकी फैमिली में उनके फादर है वो बिल्कुल स्वस्थ थे, किडनी दे भी सकते थे, लेकिन उनकी फैमिली में उनको एज ए डोनर कोई तैयार नहीं हुआ। मैं उनके फादर से 2-3 बार मिला तो फाइनली उन्होंने ये बोला कि मैं डोनेट करूंगा और मैं मर जाऊंगा। तो सर बड़े दुर्भाग्य से कहता हूं कि उसके 1-2 साल बाद दीपावली के दिन जो मेरे मित्र थे उनकी डेथ होगी डोनर नहीं मिलने की वजह से, पर जस्ट 27 ईयर ओल्ड। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अपने आसपास के जो डोनर हैं उनसे आप मिलिए, एज ए डोनर आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। भगवान ने हमारे को 2 किडनियां दी है, जितना 2 किडनियां काम करती है उतना ही काम 1 किडनी करती है। तो एज ए डोनर आप अगर किसी की जान बचा सकते हैं तो जरूर बचाएं, डोनर को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ रिसिपिएंट जो जिसने भी ऑर्गन लिया है उसको लाइफ टाइम कुछ मेडिसिन और प्रिकॉशन है वो रखने पड़ते हैं। दूसरा ये है कि इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट को भी जो डोनर है उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज लोगों को प्रेरित कर सके, इस तरह के आयोजन है वो अगर हम बढ़ाएं और लोगों के अंदर जागरूकता लेके आए तो अंगदान के प्रति है वो निश्चित रूप से जागरूकता है वो लोगों में आ सकती।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने हमें इतना समय दिया और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी। दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे शो ने आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में हेल्प जरूर की होगी और हम आशा करते हैं कि आप भी अंगदान के लिए जरूर आगे आएंगे। अगर आप अंगदान के लिए रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप www.organindia.org पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और एक डोनर कार्ड हासिल कर सकते हैं जो कि आपको बाद में आपकी फैमिली को अंगदान करने के लिए जो कोऑर्डिनेशन होता है उसमें बहुत हेल्प करेगा, बहुत इजी बना देगा प्रोसेस। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, अगले शो में जल्दी से हाजिर होंगे हम एक नई कहानी को लेकर, एक नई प्रेरणा लेकर। धन्यवाद।
0: फिर लौटेंगे ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में।
3: दोस्तों अंगदान से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप ऑर्गन इंडिया की वेबसाइट organindia.org पर जा सकते हैं या उनके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-120-3648 पर संपर्क कर सकते हैं। अंगदान के बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सबको प्रेरणा दें।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: धन्यवाद। नमस्कार।
2: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन, ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क, पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी, जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया की कड़ी संख्या 4 FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और आज इस कार्यक्रम को आपके साथ लेकर हाजिर है आपके बीच रेडियो ज्योतिष्मा। बहुत ही प्यारा सा नमस्कार स्वीकार करें ज्योतिष्मा की ओर से। और आज जो दोस्तों विषय लेकर आए हैं हम आपके लिए, वो है गर्मियों की छुट्टियों के आनंद। पहले और आज क्या है फर्क, क्या कुछ बदला है, वो सब बातें करेंगे आज इस कार्यक्रम में। कुछ बातें होंगी और कुछ गीत होंगी, तो कार्यक्रम को शुरू करें इस एक खूबसूरत सी चंचल से गीत के साथ।

0: तो दोस्तों, आज आपसे बातें कर रहे हैं उस दौर की जो पुराना है, यानी गर्मियों की छुट्टियों का ज़माना। आज बातें तो होंगी नए और पुराने दोनों ही वक्त की, लेकिन अभी जो जिक्र करेंगे वो होगा पिछले दौर का, यानी आज से करीब 20, 25, 30 या उससे भी पहले की बातें, उस दौर की बातें जब गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ छुट्टियां नहीं होती थी बल्कि साल का सबसे खूबसूरत इंतज़ार हुआ करती थी। हम सभी को इंतज़ार रहता था कि जैसे ही स्कूल में छुट्टियों की घंटी बजती थी, बच्चों के चेहरों पर अलग ही चमक आ जाती थी। किसी को नानी के घर जाना होता था तो किसी को दादी की कहानियों का इंतज़ार था। और उन दिनों ना मोबाइल थे ना इंटरनेट, फिर भी हर दिन कितना ही ख़ास होता था कि कैसे समय निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। दोपहर में आम के पेड़ों की छांव या नीम के पेड़ की छांव और हाथ वाले पंखे की हवा, मिट्टी के घड़े या सुराही का ठंडा पानी, और शाम होते ही गली मोहल्ले में बच्चों की चहल पहल, हा हू, यही तो असली छुट्टियाँ थी। कंचे, पिट्ठू, लंगड़ी टांग, छुपन छुपाई और साइकिल की लंबी सैर, इन खेलों में जो आनंद था वो शायद आज की स्क्रीन में कहीं खो गया है। रात को छत पे बिस्तर लगाना और उससे पहले छत पर पानी को बरसाना कि छत शायद ठंडी हो जाए, तारों को देखते हुए बातें करना, दादा दादी या नाने नानी से कहानियां सुनते सुनते नींद आ जाना, उन पलों में जो सुकून था, जो अपनापन था, उसको शायद आज आप ज़रूर मिस करते होंगे। तो उन्हीं सुनहरी यादों की बातें कर रहे हैं, महसूस कीजिए उन सब बातों को और बात करते रहिए साथ में ही कि गर्मियों की छुट्टियां और आज के बदलते दौर की जो जिक्र चल रहा है, अब बात करेंगे और आगे, लेकिन फ़िलहाल ये गीत।
1: जोड़ी है ये। अरे एक लो एक मुफ्त, अरे एक लो एक मुफ्त।
2: जोड़ी है।

जब गर्मियों की छुट्टियां सच में जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा आज भी है, तब कहीं ज्यादा ही खूबसूरत थी। और उस समय छुट्टियों का मतलब सिर्फ और सिर्फ आराम नहीं बल्कि खुलकर जीना होता था। सुबह होते ही बच्चे घर से बाहर निकल जाते, कोई पेड़ों पर चढ़कर तो कोई कच्चे आम तोड़कर तो कोई नहरों में छलांग लगाकर घंटों पानी में मस्ती करता। गाँव की गलियों में दौड़ते हुए कभी जानवरों के पीछे भागना, कभी खेतों में घूमना तो कभी ट्यूबवेल पर आनंद उठाना, और यही तो था असली आनंद। और फिर दोपहर में सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता था कुल्फ़ी और आइसक्रीम वाले की आवाज़ का। जैसे ही उसकी घंटी सुनाई देती, बच्चे पैसे लेकर भाग पड़ते थे। उसे कुल्फ़ी में जो खुशी मिलती थी वो शायद आज बड़ी बड़ी चीज़ों में भी नहीं मिलती। उन दिनों गाँव में खेती बाड़ी का सामान बेचने वाले लोग भी आया करते थे। दादा दादी और नाना नानी उन्हीं से कपड़ा खरीद कर बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवाते थे। त्योहारों और छुट्टियों में नए कपड़ों की खुशी ही कुछ और होती थी। ना बिजली की ज़्यादा चिंता और मोबाइल नाम की चीज़ का तो पता ही नहीं था। बस अपने लोग, अपने रिश्ते और ढेर सारी सादगी, ढेर सारे किस्से कहानियाँ। और शाम होते ही सब लोग छत या आंगन में इकट्ठा होते, बातें करते, हंसते और ज़िंदगी को महसूस करते। सच कहें तो पहले की गर्मियों की छुट्टियाँ सिर्फ मौसम नहीं बल्कि यादों का सबसे खूबसूरत खजाना थी।

पुराने दिनों की बातें करते शायद सचमुच ऐसा लगता है जैसे हम फिर से उसी बचपन में लौट गए हों। वही बेफिक्री हंसी, वही मिट्टी की खुशबू और छोटी छोटी खुशियों से भरे दिन। लेकिन समय शायद कहीं कि हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता, और आज का दौर भी अपने साथ बहुत कुछ लेकर आया है, नया नया, बदला बदला। आज बच्चों के पास नई तकनीक है, दुनिया को करीब से देखने के साधन हैं, ऑनलाइन सीखने के ढेरों अवसर हैं और मनोरंजन के रोज़ नए नए तरीके भी हैं। पहले चिट्ठियों का इंतज़ार होता था और आज वीडियो कॉल्स पर दूर बैठे अपनों को तुरंत देख लिया जाता है। पहले तस्वीरें एल्बम में सजती थीं, आज यादें मोबाइल की गैलरी में सुरक्षित रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस दौड़ती तेज़ गति से भागती सी जिंदगी में, इस दुनिया में वो सुकून, वो अपनापन और रिश्तों की गर्माहट थोड़ी कम ज़रूर महसूस होती है। पहले छुट्टियों में पूरा मोहल्ला एक परिवार जैसा लगता था, आज हर कोई अपनी स्क्रीन में व्यस्त दिखाई देता है। आपकी बेड पर, टेबल पर या आपके अपने घर के अंदर एक ही टेबल पर अगर आप दो जन बैठे हैं तो अपनी अपनी स्क्रीन्स में सब बिजी हैं, एक दूसरे को जी भर के देखते भी नहीं। शायद इसीलिए पुरानी यादें आज भी दिल को छू जाती हैं, क्योंकि उनमें दिखावा कम और अपनापन ज़्यादा था। और सच तो यह है कि अगर पुराने समय की सादगी और आज के समय की सुविधाएं एक साथ मिल जाएं तो ज़िंदगी और खूबसूरत बन सकती है। तो यादों, एहसासों और बदलते दौर की बातों के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: स्वागत है आपका फिर से एक बार कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। समय बदलता है और उसके साथ बदल जाते हैं हमारे जीने के तरीके, हमारी आदतें और छुट्टियां बिताने का अंदाज भी। पहले गर्मियों की छुट्टियां आते ही घरों में एक अलग सी रौनक दिखाई देती थी। सुबह सुबह रेडियो पर गीत बजते थे, आंगन में दादी अम्मा अचार और पापड़ सुखाती थी तो बच्चे बिना किसी चिंता के पूरा दिन मस्ती में खोए रहते थे। उस दौर में मनोरंजन के साधन कम थे लेकिन खुशियां बहुत ज्यादा थी। कभी मोहल्ले में रामायण या फिल्मों की बातें होती थी तो कभी रात को सब लोग एक साथ बैठकर पुराने किस्से सुनते और सुनाते थे। गांव में बैलगाड़ियों की आवाजें, कुएं से पानी निकालना, मिट्टी के घड़ों का ठंडा पानी और शाम को पेड़ों के नीचे बैठकर गपशप करना, यही जिंदगी की असली रौनक और दौलत थी। पहले लोग कम चीजों में भी संतुष्ट रहना जानते थे। जब रेडियो पूरे परिवार का साथी होता था और एक ही टीवी पर पूरा मोहल्ला कार्यक्रम देखने इकट्ठा होता था। बच्चों के लिए छुट्टियों का मतलब था सुबह से शाम तक दोस्तों के साथ खेलना और डांट खाने के बाद भी फिर बाहर घर से भाग जाना। और आज हर चीज पहले से तेज और बहुत तेज है, आधुनिक हो गई है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। अब जानकारी भी तुरंत मिल जाती है और मनोरंजन भी हर समय साथ रहता है, लेकिन इसी भागदौड़ में लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय थोड़ा कम हो गया है। फिर भी आज का दौर अपनी जगह खास है और पुराना दौर अपनी जगह अनमोल, क्योंकि पुरानी यादें हमें सादगी का महत्व सिखाती हैं और नया समय हमें आगे बढ़ना सिखाता है और शायद जिंदगी की खूबसूरती इसी संतुलन में छुपी हुई है।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

और दोस्तों, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे गर्मियों की छुट्टियों का रंग और ढंग भी बदलता जा रहा है। आज की छुट्टियां पहले जैसी भले ना हो, लेकिन अपने भीतर नई नई संभावनाएं और अनुभव जरूर लेकर आई हैं। आज के बच्चे दुनिया को सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि इंटरनेट और तकनीक के माध्यम से भी जान रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस, क्रिएटिव वर्कशॉप्स, कोडिंग, म्यूजिक, डांस और नई नई एक्टिविटीज़ ने छुट्टियों को सीखने का एक नया रूप दे दिया है। पहले जहां बच्चे गांव की गलियों तक सीमित रहते थे, वहीं आज का बच्चा घर बैठे पूरी दुनिया से जुड़ सकता है। पहले यादें जब आप संभाल रहे थे अपने लोगों के बीच बैठकर उनसे अपनी बातें साझा करते थे, वहीं अब हर पल आप मोबाइल में कैद कर सकते हैं। फैमिली ट्रिप्स, कैफेज, मॉल्स, वाटर पार्क्स और हिल स्टेशन आज की छुट्टियों का हिस्सा बन चुके हैं। बच्चे अब सिर्फ खेलते नहीं बल्कि अपनी हॉबीज को भी एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात आज भी उतनी ही जरूरी है, अपनों के साथ समय बिताना। तकनीक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन रिश्तों से ज्यादा जरूरी नहीं। कभी कभी मोबाइल और स्क्रीन से थोड़ा दूर जाकर परिवार के साथ बैठिए, पुरानी बातें सुनिए, दादा दादी के अनुभवों को समझिए और दोस्तों के साथ खुलकर हंसना भी जिंदगी को और कुछ नया रूप दे सकता है, इसको महसूस कीजिए। आज का समय तेज जरूर है, लेकिन अगर हम पुराने समय की सादगी और आज की सुविधाओं के बीच जो ये तालमेल बिठा रहे हैं, तो छुट्टियों का आनंद और बढ़ सकता है। क्योंकि असली खुशी सिर्फ जगहों या साधनों से नहीं बल्कि उन पलों में छुपी होती है जिन्हें हम दिल से जीने की कोशिश करते हैं। तो नई सोच और पुरानी यादों के इस खूबसूरत संगम के साथ कहेंगे कि चलिए अगला गीत सुनते हैं।

और दोस्तों, हर दौर अपने साथ कुछ कहानियां लेकर आता है। पुराने समय की यादें आज भी इसलिए खूबसूरत लगती हैं क्योंकि उनमें दिखावा कम और दिलों का जुड़ाव ज़्यादा था। और आज का समय इसलिए ख़ास है क्योंकि इसने हमें सपनों को सजाने के लिए, नई परवाज भरने के लिए जो ताकत दी है, वो इसे खूबसूरती बना रहा है। आज बच्चे मोबाइल चला लेते हैं, दुनिया की जानकारी एक पल में हासिल कर लेते हैं, नए नए हुनर को सीख रहे हैं और अपने विचार खुलकर रख भी रहे हैं। बदलाव ज़रूरी है, लेकिन शायद सबसे बड़ी ज़रूरत यही कि इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में थोड़ा ठहरना भी सीखें। कभी खुद के लिए समय निकालें, कभी बिना किसी वजह के अपनों के साथ बैठें, कभी बच्चों को सिर्फ मार्क्स नहीं, यादें बनाने का मौका दें। कहते हैं ना कि लेट देम मेक मेमोरीज, और कभी ज़िंदगी को कैमरे में नहीं, दिल में भी कैद करें, क्योंकि आने वाले वर्षों में लोगों को यही याद रहेगा कि आपने कौन सा मोबाइल इस्तेमाल किया था। ये याद नहीं रहेगा कितनी रील्स देखी थी, लेकिन ये ज़रूर याद रहेगा कि आपने उनके साथ कितना समय बताया, कितनी मुस्कान बांटी, कितनी यादें छोड़ी और कैसा उन्हें महसूस कराया। समय बदलना स्वाभाविक है, लेकिन इंसानियत, अपनापन और रिश्तों की गर्माहट कभी भी फीकी नहीं पड़नी चाहिए। नई पीढ़ी तकनीक के साथ संस्कारों को भी अगर साथ लेकर चले तो आने वाले कल को हम और भी सुंदर और खूबसूरत बना सकते हैं। और इसी सब के साथ, इस गीत के साथ आपको छोड़े जाते हैं। विचार कीजिएगा आज की बातों पर कि ये जो छुट्टियां आई हैं जून की, इनको आ रही हैं, तो इनको क्या ही कुछ किया जाए कि और भी ज़्यादा खूबसूरत हम बना सकें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब से थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप हिंदी समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से तत्पश्चात सुनिएगा अंग्रेजी समाचार और रात्रि 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया रैली की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण उत्तरी भारत के क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीटवेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में अब्दुल्ला फिल्म का गाना सुना, गीत आनंद बख्शी का था, संगीत आर डी बर्मन का। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और एनिट की आवाजों में सत्य पे सत्ता फिल्म का गाना, गीत गोशन बावरा ने लिखा है, संगीत दिया है आर डी।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनो कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत ये दिन में भर

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती है।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा, मुंबई की तरफ जाने के लिए इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थी और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा, पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे

गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इंप्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दाम नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहां से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलेन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म।

1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौश

ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने। उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

0: भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।
1: पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए।

0: मधुक छाई
1: तो घटा घिर के आई
0: हो हो हो
1: प्रेम की गागर लाए रे बागर पे कल मोरा किया है।

दिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को

आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चांदनी रातें।

दिन भर की तपिश के बाद इस रात में, जब दिन भर की गर्माहट हो और मौसम थोड़ा ठहर सा गया हो, लगता हो कि हाँ अब कब ये जो वक्त है वो गुजरेगा, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, चांदनी रातें कार्यक्रम में। और रात के ये सुकून भरे पल, हल्की हवा का एहसास और संगीत की मिठास थके हुए मन को और गर्मी से थोड़े से तने हुए मन को नई ताजगी ज़रूर देगा। तो बस कुछ देर के लिए सारी चिंताओं को भूलिए, थोड़ा गर्मी को दूर कीजिए और खूबसूरत से गीतों के साथ जुड़िए हमसे। आपकी ढेरों सारे जो मैसेज हैं, फरमाइशें हैं, वो हम तक पहुंच रही हैं और इस सफ़र में आज आपके साथ है आपके रेडियो दोस्त ज्योतिष्मा। स्वीकार करें बहुत ही प्यारा सा नमस्कार हमारी ओर से और आशा है कि आप सभी अब इंतज़ार में होंगे अपने अपने नाम सुनने के लिए। तो पढ़ना शुरू करते हैं आप सभी के नाम। पहला संदेश जो आज हमें मिला है वो है मजनू कटीला दिल्ली से हैं, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश के श्रोता हैं उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक। अगले फरमाइशकर्ता श्रोता हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और साथ हैं रिंकी शेखावत। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान के श्रोता हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित और बेबी गर्वी। अगला मैसेज है अनुराधा राजनंदगांव छत्तीसगढ़, ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनंदगांव से हैं। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। अगले मैसेज की ओर बढ़ें तो उसमें नजर आ रहे हैं जवानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल गम्हरिया जमशेदपुर से हैं, विपिन, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल, राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी की फरमाइश आई है गांव फ्रांसी हिसार से। अगले मैसेज को हम तलक पहुंचा है गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन और आर्य जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू और देवंती, बबूरी बाजार चंदौली से हैं विजय और सरोज, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर और सुमन जायसवाल। अगले फरमाइशकर्ता श्रोता हैं बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के श्रोता विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण और प्रतीक चौहान। और अगले फरमाइशकर्ता श्रोता हैं डाकघर गांव व निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। नथाना पंजाब के श्रोता हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी और सीता और गीता। अगले फरमाइशकर्ता श्रोता हैं पटेल नगर मलोड पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू जाजौरिया और साथ हैं गुड्डू। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से हैं सुभाष गोदारा, बिमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा। अगले श्रोता हैं हमारे ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और मेहराज जहां, आप सबने ये मैसेज भेजा है आज़ाद नगर लक्सा हरिद्वार से। अगले फरमाइशकर्ता श्रोता हैं मित्र नगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा और अदिति बंसोड़े साथ हैं, वैभव शिंदे, हिल स्टेशन खंडाला से फरमाइश आई है आकाश और प्रिया सरोदे की ओर से। छोटी बलिया मुंबई करजत से अहमद भाई फूलवाले, दुखना सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले। कॉपरसेडा बॉर्डर दिल्ली से हैं आमना नसरीन बागवान, आसमा परवी परी, राविया मंताशा, आशु अहमद फूलवाले, लखमीनिया जिला बेगूसराय से शमीम अहमद, राइन अखलाक अहमद और समस्त फूलवाले परिवार। और आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं लता मंगेशकर को, फिल्म है आशा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

अगले गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी। आर्यनगर कोहका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल, अजीत, आयुष और नंदिनी जंघेल। धमदा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित, शकुन, आरुषि, उषिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। अगले फरमाइशकर्ता श्रोता हैं आप सभी। टोरोवाल नवाशहर पंजाब से हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी थांदी। मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला और समीरा आजमीन गुड़िया का मैसेज पहुंचा है तेलंगाना भोंगीर से। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद के श्रोता हैं शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, हबीबुर रहमान। और अगले फरमाइशकर्ता श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश रॉय, उषा, अमित कुमार और हैप्पी रॉय। दुबिहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, रोशनी और प्रांजल रॉय। अगले फरमाइशकर्ता श्रोता हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना और राजेंद्र सिंह उबरॉय। छत्रपति संभाजी नगर से फरमाइश आई है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश की ओर से। पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर में राजस्थान से हैं मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। मोहल्ला हलवाइयन शेरकोट बिजनौर से हैं मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया साजरानी और साथ हैं हिना कौसर। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की फरमाइश पहुंची है। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से हैं शंकर कोलाम, संतोषी, संजय, संध्या और शिवम कोलाम। अगले फरमाइशकर्ता श्रोता हैं कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युधव कड़वासरा। जिला मुरादाबाद ग्राम धुलापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वे, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। जय चलेंद्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से हैं रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरा ही संघई परिवार। सल्लार पहलगाम कश्मीर से पीर ज़ादा मिराजुद्दीन का मैसेज मिला। अगला मैसेज है ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं उदय भानपाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश, बघेल और समस्त परिवार। गांव खरकड़ा 24 से हैं गोलू कांगड़ा, सागर सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोध और तमन्ना कांगड़ा। अगले फरमाइश करता श्रोता हैं आप सभी। गांव अंबाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और उनके परिवार के सभी सदस्यगण। कहरा मोहल्ला पटियाला से हैं बाता परिवार, मुकेश बाता, नीलम बाता, नितिन पालक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बाता। रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से सुनीता शिंदे, प्रशांत, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के। दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से हैं मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा और बेबी चाहत, साथ है सादिया। वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय

चौहान इंदुरकर, तेजस्विनी माई इंदुरकर, बेबी शौर्या, श्रेय अंकिता और अनिकेत चौहान। अगले फरमाइशकर्ता श्रोता हैं जिला खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा, अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर राज, आर्यन, आरोही, यशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा। अगले मैसेज में नजर आ रहे हैं आप सभी श्रोता हमारे, इन्होंने सिर्फ गीत के नाम लिख दिए हैं लेकिन अपना नाम नहीं लिखा, गीत की डिटेल्स भेज दिए हैं। तो मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गम्हाणकर, राही सरिता गम्हाणकर, प्रणीता, सिद्धांत, प्रिंस एकांश और अर्जुन गम्हाणकर, टुक टुक। गांव चौहदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया की फरमाइश मिली है। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चैतन्य मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना। और आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं मुकेश को फिल्म है फिर कब मिलोगी। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार और भानु प्रिया का संदेश मिला। अगले अनुरोध करता श्रोता है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी और साथ हैं पायल जोशी। मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से हैं यशपाल धीमान, कृष्णा धीमान, राहुल, शुभम धीमान, आंचल, कुंज, पर्व, प्रवीण, चिराग धीमान, रजत, राजेश धीमान। अगला मैसेज है हमारे पास, ये मैसेज देखिए पहले शामिल किया जा चुका है। दुर्गा कॉलोनी हांसी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और साथ हैं बब्बू और डब्बू। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से हैं विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमनपुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक और विनोदपुरी। जवाहर दुर्ग से फरमाइश पहुंची है आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विन और विपुल कामड़े की ओर से। अगले फरमाइश करता श्रोता है बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, अंजलि करवा, बाला साहिब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टाउल और पी वी कुल थे। गांव सिली किला सिली कला जिला यमुनानगर हरियाणा से जय सिंह काम्बोज, विजयन सिंह, रिदम, निश्चय सिंह काम्बोज, जयपाल धीमान और खुर्शीद चमरौड़ी। अगला मैसेज है श्याम शर्मा, मिली शर्मा, चिराग, राघव शर्मा, तनु शर्मा, पलक, मास्टर उद्देश्य। और जमशेदपुर झारखंड के श्रोता हैं सुपाही साही गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देवेंद्र जी। सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश, शिक्षा, शिखा, प्रतीशा संधू और मैक्स, आप सबका ये मैसेज आया है कुलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से। नलगोंडा तेलंगाना से है मोहम्मद अमजद, सलमा फिरदौस और मुनीरू निसा। अगले श्रोता हैं राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार। अगली फरमाइश है हमारे पास लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, वर्खा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार चिंडालिया। अगले मैसेज में नजर आ रहे हैं मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर, प्रदीप यमेकर। अगले श्रोता हैं आप सभी मुक्कम पोस्ट फूल चिंचोली पंढरपुर से हैं जाकिर मुलानी, सुमैया सुबान, समीर सलमा, मुमताज, दिलशाद मुलानी और नसीर मुलानी और साथ ही चाचा चाची और पूरा मुलानी परिवार। भावी निमगांव महाराष्ट्र से हैं श्रीराम गोंधली, उषा, हर्षदा, वैष्णवी, पूनम और युवराज गोंधली। मोहल्ला हलवाइन शेरकोट बिजनौर से हैं मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजा रानी और साथ हैं हिना कौसर। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना हैं लदावली जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुता सुवर्णवानंद और सत्यम आनंद। अगले मैसेज को हम तलक पहुंचाया है पोटिया करा दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक साहू और सीमा साहू ने। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से हैं मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाडी खेड़ा, शालिनी टिवानसी, वाणी खेड़ा और आरबी सिंह खेड़ा। और अगले फरमाइशकर्ता श्रोता हैं पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी और मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। और आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाया ये गीत जो कि है फिल्म पड़ोसन से, राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना और आर डी बर्मन का संगीत।

0: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अगले गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी। अनिल कुमार घोड़के, वैशाली, प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोड़के, आपका ये मैसेज है। सिल्लौर, छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। अगले फरमाइश करता श्रोता हैं मालियान सरधना मेरठ से हैं। अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जिव्यम जैन अगले मैसेज में नजर आ रहे हैं। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, जसपुर उत्तराखंड के हैं आप सभी श्रोता। खेल बाजार पानीपत से है नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी नगर, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल और डुगू भाविक सिक्का। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजकुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। अगले मैसेज में नजर आ रहे हैं तंत्री की भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। अगले मैसेज को हम तक पहुँचाया है मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरान और नरगिस खातून ने। फुलगांव निजामाबाद तेलंगाना से हैं मोहम्मद वाहिद रूमानी, मोहम्मद जमीर, फसी, जुनैद, जुबैर, मुकरम, नुमान, फुरकान, जाकिर, फाजिल। और अगले फरमाइश करता श्रोता हैं बागपत से ममता ढींगिया और साथ हैं कुणाल ढींगिया। शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी। पांडर कवड़ा से हैं अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे। बलहार शाह से हैं सूरज, प्राची और एकलव्य लोंढे। अगला मैसेज है हमारे पास लाल माता सुदामा नगर रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, मनोहर भाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मन भावन, शोभा, कपिल, नैना, सत्यनारायण, फुंदीबाई बागरी। और अगले मैसेज की ओर बढ़ें तो उसको भेजा उसे भेजा है गांव हरुड़ी चांडिल झारखंड से तुलसीदास महतो, कल्पना, मनोरमा, मनमोहिनी महतो और दीन बंधु महतो ने। महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के श्रोता है नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत और दर्श राजपूत। गंजवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख और अमन आफरीदी और साथ हैं राधा नामदेव। संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा गायकवाड़, दीपांजलि और दिशा बागमारे और साथ हैं शशांक। मोहाली पंजाब से हैं बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। गांव वडागर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा के श्रोता हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, तिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। और आप सभी ने सुनना चाहा है आशा भोसले को फिल्म है मेरे सनम और गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत है ओपी नैयर का।

और अगले गीत के सुनने की ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी। मुंदी चक भागलपुर से हैं दिलीप कुमार सोनी। अगला मैसेज है शास्त्री नगर बीर शहर से हैं किशन सबकाल, आशा सोनी और विशाल सबकाल, कनेरा मोहल्ला पटियाला जी। ये मैसेज हम पहले शामिल कर चुके हैं। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से ये मैसेज भी शामिल किया जा चुका है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी सौरभ, साइना और निवान शर्मा। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की फरमाइश पहुंची है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन अब्बासी, शहनाज शहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान अबान अब्बासी और पूरा ही अब्बासी परिवार है। कस्बा गुन्नौर यूपी से हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा और जो नाम हमने पहले पढ़े थे वो थे अपर कोट बुलंदशहर के श्रोता। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। अगले फरमाइश करता श्रोता है प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कर जोड़ा, करणवीर करण, दीपेंद्र वरिंदर, कुलदीप सीमू, एकम दमन और अभिजोत। आपका ये मैसेज है करणवीर हाउस भूचो कैचिया भटिंडा पंजाब से। सतीश मिगलानी, सीमा और विवान मिगलानी का मैसेज है मलोट पंजाब से। चौटाला हरियाणा से हैं दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। अगले मैसेज में हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, ईशप्रीत शर्मा, सुहानी शर्मा, पंकज शर्मा, रोहित, मीनाक्षी तिवारी और बिपाशा शर्मा, सोनिया, कालका, किरण। और अगले मैसेज में है जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, शमशेर, सुरेंद्र, मनोज भ्याण। और गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर के श्रोता हैं सैयद मसूर, शाइना।

अगले गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी। गांव पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार। अगले मैसेज में हैं आप सभी श्रोता। शिवाजी नगर वाली देशमुख से हैं राजेश खोबर खेड़े, शिवसागर इंदिराबाई और छकुली ताई खोबर खेड़े। खांडवी बुलढाणा से दीपाली राम धाड़े, स्वराज राम धाड़े। थिलौरी अमरावती से हैं सुनैना तनुज भोंडे। अगले फरमाइश करता श्रोता हैं आप सभी। मारहरा दरवाजा एटा से हैं नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी। सिकंदरा राव से हैं मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन। अगले मैसेज में हैं शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। अगले फरमाइशकर्ता श्रोता हैं भटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित लकी और तानिया नारंग। अगली ख्वाहिश आई है धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद बेबियालिया और आयन बाबू की ओर से। और आप सभी सुनना चाहते हैं इश्क पर जोर नहीं फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, आनंद बख्शी की शब्द रचना और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: और आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म दिल्ली का ठग का ये गीत, जिसमें आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले की, इस गीतकार शैलेंद्र और संगीत है रवि का। और गीत को सुनना चाहा है पिंड तेजा मोहरी अम्बाला से हैं बंसीलाल संधु। अगले फरमाइशकर्ता श्रोता हैं जलालाबाद शामली उत्तर प्रदेश से राशिद मंसूरी, आयन मंसूरी और सयान मंसूरी। बलकरण वर्मा, अंजनी, राजिम, ज्योति और प्रहलाद वर्मा की फरमाइश पहुंची है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दिशा दीक्षा कुश मुणत, पोरखेड़ा पितरामा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश के हैं आप सभी श्रोता। नगर नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिम्पल मीनाक्षी, निशा तुलसी और रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान की फरमाइश आई है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। सनाबत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना हैं। अगले फरमाइशकर्ता श्रोता हैं लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ, पंकज और तिरुपति साहू। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप कालका, ये सभी श्रोता हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत की फरमाइश आई है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से।
1: ये मौसम नदी का किनारा,

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें, यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र। अब से थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात सुनेंगे अंग्रेजी समाचार। कृपया रैली की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अभी ही संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:55 पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।